0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान का आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
2: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशा

0: नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजाम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। राष्ट्रपति आज कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। वे कल दक्षिणी ओडिशा में तप्त पानी के पास स्थित माँ कंधुनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी और उसके बाद अन्य आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होंगी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू होगी। भारत की अध्यक्षता में ये बैठक लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण के व्यापक विषय पर आधारित है। ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की उम्मीद है। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स संयुक्त सांख्यिकी प्रकाशन के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, सांख्यिकी प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान तथा सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को मतदान हुआ था। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षाकर्मियों सहित 14 लोग मारे गए। ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। फिलहाल किसी भी समूह या व्यक्ति ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। थलसेना, वायुसेना और नौसेना का 4था युद्ध पाठ्यक्रम आज नई दिल्ली में प्रारंभ हो रहा है। 4 सप्ताह का ये पाठ्यक्रम एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र इसका समन्वय कर रहा है। पाठ्यक्रम में तीनों सेनाओं के अधिकारियों के साथ साथ सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों, उद्योग और रणनीतिक विचारकों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पालकी का जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। भगवान महाकाल को चंद्रमौलेश्वर रूप में पारंपरिक पालकी जुलूस में ले जाया जाएगा, जिससे भक्तों को दर्शन का मौका मिलेगा। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह के साथ संपन्न हो गए। समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में 4थे स्थान पर रहा। राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप कल नई दिल्ली में संपन्न हो गई। मेजबान भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 7 में से 6 स्वर्ण पदक जीते। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विजेता खिलाड़ियों को पदक और पुरस्कार प्रदान किए और उनके प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि 25 राष्ट्रमंडल देशों की भागीदारी वाली खेल प्रतियोगिता की सफल मेजबानी दिल्ली सरकार के लिए गौरव की बात है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi said that as India moves towards becoming a Viksit Bharat, the nation's youth must be physically fit, mentally strong and full of self-confidence. Speaking on the launch of Nasha Mukti Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan virtually in New Delhi yesterday, Mr. Modi said young people should always stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle. He added that the launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse.
1: विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो मन से स्वस्थ हो आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर हो।

0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது சமஸ்கிருதத்தில் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: இயம் ஆகாஷவாணி. சம்பிரதி வார்த்தாஹ ஸ்ரூயந்தாம் பிரவாசகஹ புனித த்ரிபாடி. अथ वार्ताः. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवदत् यत् यथा भारतं विकसित भारत दिशि अग्रेसरति तथा देशस्य युवानः शारीरिक रूपेण सुदृढाः, मानसिक रूपेण सबलाः, आत्मविश्वासेन च परिपूर्णाः भवितुम् अर्हन्ति. ह्यः नवदिल्ल्यां विकसित भारत संकल्पाभियानस्यान्तर्गतं नशा मुक्त युवाभियानस्य दृश्य श्रव्य अन्तर्जालीय माध्यमेन शुभारम्भावसरे भाषमाणः प्रधानमन्त्री अवदत् यत् युवानः सर्वदा मादकद्रव्येभ्यः दूरं तिष्ठेयुः अथ स्वस्थजीवनचर्यां च अङ्गीकुर्युः. असौ एतदपि अवदत् यत् अस्य अभियानस्य शुभारम्भेण मादकद्रव्यदुरुपयोगस्य विरुद्धं शतसप्ताहकात्मकस्य राष्ट्रव्यापिनः जनभागीदारी इत्यस्य अभियानस्य आरम्भः जातः.
2: विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है. क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर हो. यही इस अभियान का उद्देश्य है.
1: अस्मिन् कार्यक्रमे देशस्य 28,000 स्थानेभ्यः 1 कोट्यधिकाः युवानः भागं गृहीतवन्तः. अत्र माय भारत इत्येतस्य राष्ट्रिय सेवा योजनायाः च स्वयंसेवकाः, महाविद्यालय विद्यालय विश्वविद्यालयानां प्रतिनिधयः, युवकमण्डलानाम् अशासकीय सङ्घटनानां च तथा आध्यात्मिक संस्थानां सदस्याश्च भागं गृहीतवन्तः. केंद्रीय युवा कार्य क्रीड़ा मंत्री

0: தொடர்வது ஆஜ் சவரே செய்தி தொகுப்பு டெல்லி அஞ்சல்.
1: समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।

0: सुप्रभात, एक नई सुबह और नई आशाओं के साथ कार्यक्रम आज सवेरे में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। प्रतिदिन की तरह हम एक बार फिर उपस्थित हैं लेकर न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम लाएंगे आप तक देश और दुनिया के समाचार और वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आज सवेरे के इस अंक के साथ मैं हूँ विशाल शर्मा और मेरे साथ है शगुन चोपड़ा। गुड मॉर्निंग शगुन।
1: गुड मॉर्निंग विशाल एंड टू आवर लिसनर्स, गुड मॉर्निंग, good day everybody, a brand new day, it's August the 3rd today and well I want to start begin with this very inspiring quote, or you can say this is what I was feeling in the morning, that we find ourselves waking up to new possibilities and inspired to achieve our goals every day because this is what life is about. Yeah. Our goals, our activities which make us happy. So on that very optimistic note, let's begin our program Aaj Savere. So first, we'll begin with the headlines.
0: जी शगुन, सबसे पहले मुख्य समाचारों पर नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान का शुभारंभ किया। 100 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और सपने पूरे करने नहीं देती। श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थ करियर, पारिवारिक जीवन और लोगों का भविष्य बर्बाद करते हैं।
1: The meeting of heads of national statistical offices of BRICS countries, Brazil, Russia, India, China, South Africa, Egypt, Ethiopia, Indonesia, Iran, Saudi Arabia and the United Arab Emirates will be held under the chairship of India from today till tomorrow in Lucknow. Our correspondent has the details.
2: India's BRICS chairship is guided by the overarching theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. Within the BRICS statistics track, India has adopted the theme Quality Statistics as Driver of Change, reflecting an unwavering commitment to data quality, innovation, effective dissemination and people-centric statistical systems. The meeting aims on strengthening core BRICS statistical products, innovation and reform in national statistical systems, data dissemination and accessibility, strengthening microeconomic and sectoral statistics. Sushil Chandra Tiwari,

0: आकाशवाणी न्यूज लखनऊ।
1: अखिल भारतीय कोटा के अंतर्गत MBBS और दूसरे अंडर ग्रेजुएट चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए काउंसलिंग का पहला दौर कल से शुरू होगा और 2026-27 बैच का शैक्षणिक सत्र 8 सितंबर से शुरू होगा। चिकित्सा काउंसलिंग कमेटी MCC के जारी कार्यक्रम के अनुसार डीम्ड और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए काउंसलिंग का पहला दौर 4 अगस्त से 17 अगस्त तक चलेगा। काउंसलिंग में शामिल होने की अंतिम तिथि 22 अगस्त होगी। काउंसलिंग का दूसरा दौर 24 अगस्त से 2 सितंबर तक होगा और इसके बाद तीसरा दौर 10 सितंबर से 18 सितंबर तक चलेगा। बची हुई सीटों को भरने का दौर 28 सितंबर से 3 अक्टूबर तक होगा।
2: Let us tell you about Tri-Services Warfare Course, the fourth edition of it. The Tri-Services Future Warfare Course will commence in New Delhi and this will begin today. This will commence today. The four-week course is being conducted under the aegis of the headquarters, integrated defense staff and coordinated by the Center for Joint Warfare Studies. The course brings together officers from the three services along with representatives from government organizations, industry and strategic think tanks. The curriculum of the course covers subjects including geopolitical developments, artificial intelligence as well, quantum technologies, cyber and cognitive warfare, information warfare, and technology-enabled warfare. So this was about Tri-Services Warfare Course.
1: घरेलू अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। SBI रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति की रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि का ये अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के पहले के अनुमानों से बेहतर है। रिपोर्ट में इस बेहतर दृष्टिकोण का श्रेय अप्रैल जून तिमाही के दौरान संकेतकों में व्यापक सुधार को दिया गया है। SBI रिसर्च ने यह भी कहा कि पश्चिम एशिया संकट के बीच वैश्विक माहौल अनिश्चित बना हुआ है, लेकिन घरेलू अर्थव्यवस्था ने लचीलापन दिखाया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मानसून की स्थिति में सुधार से आने वाले महीनों में आर्थिक गतिविधियों को और अधिक समर्थन मिल सकता है।
2: So, Rupakheda village in Dhar district is now known as the mini Holland of Madhya Pradesh. And there is a reason for that because of its flower cultivation. So, Rupakheda village, this is in Dhar district of Madhya Pradesh and it is becoming a new model of modern farming. Earlier, farmers here were dependent on traditional crops like wheat, gram, maize and soybean. Now they grow roses, lilies and other flowers as well along with high quality vegetables in poly houses and shade net houses. So the village has 44 poly houses and 13 shade net houses. Farming in a controlled environment has increased production and farmers' income as well. So under the Government of India's Mission for Integrated Development of Horticulture, farmers receive financial support to build poly houses and shade net houses.
1: जी शगुन, मध्य प्रदेश के धार में जो आपने बताई खबर और काफ़ी आधुनिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं किसान और फसल विविधीकरण की जो योजना है इससे मिट्टी का उपजाऊपन भी बना रहता है और किसानों की आय में भी बहुत वृद्धि होती है, जैसे कि फ्लावर की खेती के बारे में आपने इसमें बताया। बहरहाल रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने खाड़ी देशों के अपने सहयोगियों कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के कहने पर ईरान पर अमरीकी सेना के नए हमले करने के देश को टालने का फैसला किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सहित खाड़ी देशों के प्रमुख नेताओं और ईरान के कुछ अधिकारियों की बात सुनने के बाद उन्होंने इस योजना को रद्द करने और कूटनीति को समय देने का फैसला किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि जो समझौता हो रहा है उसमें हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने की बात शामिल होगी। समझौते से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर चिंताएं भी दूर होंगी।
2: And this is about the Glasgow Commonwealth Games 2026. And after 11 days of intense competition, so Commonwealth Games concluded with the flag and baton handed over to India. We will be the hosts of the centenary edition in a glittering ceremony at Glasgow. So this happened at Glasgow today. The 2030 Games will be held in Ahmedabad. And the Scotland officials handed over the Commonwealth Games flag and baton to Indian representatives, Olympic gold medalist Neeraj Chopra, Indian Olympic Association President P.T. Usha and Gujarat Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi. India will depart from Glasgow as a satisfied bunch after 39 medals at the 2026 Games. This includes 13 gold, 17 silver and 9 bronze. Such a great performance, and to end in fourth position on the standings.

0: कि यह अभियान केवल नशे के विरुद्ध जागरूकता का प्रयास नहीं बल्कि युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा और सामर्थ्य को राष्ट्र निर्माण की दिशा में समर्पित करने का एक व्यापक जन आंदोलन है। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने कल रोहिणी सेक्टर 15 स्थित श्री अपार्टमेंट हाउसिंग सोसाइटी में एरोबिन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर महापौर ने कहा कि एरोबिन की सहायता से एक बार में एक बिन में 10 किलो गीले कचरे को बायोकल्चर की सहायता से 40 दिनों के भीतर कंपोस्ट खाद में बदला जा सकेगा। इस तकनीक के माध्यम से स्रोत पर ही कचरे का पृथक्करण और निस्तारण करने में मदद मिलेगी। रुख करते हैं मुंबई का। बृहन्मुंबई नगर निगम BMC ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद शहर व्यापी स्वच्छता अभियान शुरू किया है। अभियान में कूड़ा कचरा जमा करने वाले प्रमुख स्थानों पर CCTV निगरानी, अवैध रूप से कूड़ा फेंकने पर सख्त जुर्माना और कूड़ा कचरा प्रदूषण वाले क्षेत्रों को स्थायी रूप से समाप्त करने के उपाय शामिल हैं। नगर आयुक्त अश्विनी भिड़े ने वार्ड अधिकारियों को नियमित निरीक्षण करने और बाजारों, सड़कों, फुटपाथ, समुद्र तटों, नालियों और सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुंबई नगर निगम के जल अभियंता विभाग के अनुसार शहर को पेयजल आपूर्ति करने वाली मुंबई की 7 झीलें अब 89.08% तक भर गई हैं। मोदक सागर, विहार, तुलसी और तानसा झीलें उफान पर हैं, जबकि ऊपरी वैतरणा झील में पिछले 24 घंटे में जलग्रहण क्षेत्र में सबसे अधिक 112 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। BMC ने कहा है कि वर्तमान जल भंडार पर्याप्त है और मानसून की बारिश के कारण जलाशयों में लगातार पर्याप्त पानी आ रहा है। और अब कोलकाता से एक खबर। राज्यपाल RN रवि ने कल कलकत्ता विश्वविद्यालय में आयोजित विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि युवा राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति हैं और उन्होंने युवाओं से मादक पदार्थों की लत और मादक पदार्थों से जुड़े आतंकवाद के खिलाफ जन आंदोलन का नेतृत्व करने का आग्रह किया। उन्होंने शिक्षा संस्थानों से नशा मुक्त वातावरण को बढ़ावा देने का भी आह्वान किया। और अब बात मौसम की कर ली जाए
1: जी,
0: तो राजधानी दिल्ली की बात करें। आमतौर पर आज बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई में भी आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता में आज आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहने और बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
2: So Chennai is likely to witness a generally cloudy sky with light rain or drizzle. The temperatures are expected to range between minimum 26 degrees Celsius and maximum 37 degrees Celsius. Bengaluru is forecast to experience a generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature is expected to be 21 degrees Celsius, while the maximum may reach 31 degrees Celsius. Hyderabad is likely to see a generally cloudy sky with again light rain or drizzle. Temperatures are expected to range from 24 degrees Celsius to 33 degrees Celsius. So now let's tell our listeners, Vishal, about the special day it is today. Today it's Indian Organ Donation Day, which is observed every year on 3rd of August to commemorate India's first successful deceased donor heart transplant. And this was performed on 3rd of August in the year 1994, right?
0: Yes.
2: So this day is dedicated to honoring the selfless individuals and families who have chosen to donate organs, giving countless patients a second chance at life. The day also serves as a beacon of hope for patients who are awaiting life-saving transplant and their families, reminding us that one organ donor can save multiple lives.
0: Yes, ek tarike se ye jeevan daan dena hai.
2: True, Vishal.
0: और भारतीय रेलवे ने चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में एक नया इतिहास रच दिया है। पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस की मदद से दान किए गए हृदय को सूरत से अहमदाबाद तक लगभग 250 किलोमीटर की दूरी बहुत कम समय में पहुंचाया गया। इसके लिए रेलवे सुरक्षा बल, RPF, गुजरात पुलिस और डॉक्टरों ने मिलकर एक विशेष ग्रीन कॉरिडोर बनाया। ग्रीन कॉरिडोर ऐसी विशेष यातायात व्यवस्था होती है जिसमें एम्बुलेंस या अंग ले जा रहे वाहन को बिना किसी रुकावट के तेजी से अस्पताल तक पहुंचाने का रास्ता दिया जाता है। सभी ट्रैफिक सिग्नल और रास्तों को पहले से

0: डेली कराया जाता है ताकि अंग समय पर मरीज तक पहुंच सके। इस विशेष व्यवस्था की मदद से हृदय सुरक्षित और समय पर अहमदाबाद के यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर पहुंचा, जहां उसका सफल प्रत्यारोपण किया गया और मरीज को नया जीवन मिला। ये अभियान भारतीय रेलवे, पुलिस और चिकित्सा टीम के बेहतरीन तालमेल का उदाहरण है और अंगदान के महत्व को भी उजागर करता है। एक व्यक्ति का अंगदान कई लोगों को नया जीवन दे सकता है।
1: राइट विशाल, एंड इट इज एन इनवैल्यूएबल गिफ्ट, राइट? ऑर्गन डोनेशन इज एन इनवैल्यूएबल गिफ्ट, एंड सो ऑन दिस ओकेजन लेट अस रिकॉग्नाइज एंड इंस्पायर मोर पीपल टू प्लेज देयर ऑर्गन्स, हेल्प बिल्ड अ हेल्थियर एंड मोर कंपैशनेट सोसाइटी, राइट?
0: जी शगुन, यहाँ पर मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि जब हम अपने आज के दिन इतिहास में क्या क्या घटा था, तो उसमें यहाँ पर एक 3 अगस्त 1994 को आज ही के दिन दिल्ली एम्स अस्पताल में डॉक्टर पी वेणुगोपाल ने भारत का पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था।
1: एग्जैक्टली, इन द ईयर 1994।
0: जी, और तारीख, आज की तारीख पर कौन कौन सी इतिहास की घटनाएं दर्ज हैं?
1: Let's tell our listeners about that.
0: जी, 3 अगस्त 1914 को जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की, जिसने इस संघर्ष को प्रथम विश्व युद्ध में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: सो अगेन वी आर गोइंग वे बैक विशाल। क्रिस्टोफर कोलंबस सेट सेल फ्रॉम पैलेस स्पेन ऑन हिज फर्स्ट वॉयज अक्रॉस द अटलांटिक ओशन इन सर्च ऑफ अ वेस्टवर्ड रूट टू एशिया, एंड दिस एक्सपेडिशन इवेंचुअली लेड टू यूरोपियन अवेयरनेस ऑफ द अमेरिकास। In 1936, Jesse Owens won the first of his 4 gold medals at the 1936 Summer Olympics in Berlin, establishing himself as one of the greatest athletes in Olympic history. In 1958, the nuclear-powered submarine USS Nautilus became the first vessel to travel beneath the North Pole. In 1960 now, Niger gained independence from France, bringing an end to decades of colonial rule. Hamani Diori became the country's first president and led the newly established republic.
0: और 1977 में आज के दिन दुनिया का पहला होम कंप्यूटर TRS-80 मार्केट में लॉन्च हुआ था। इसकी कीमत उस समय $599 थी, यानी कि $600 से $1 कम। और इस कंप्यूटर को उम्मीद से ज्यादा रेस्पॉन्स मिला और पहले ही महीने में अनुमान से 10 गुना ज्यादा 5,000 कंप्यूटर की बिक्री हुई थी।
1: In the first month itself,
0: जी।
1: wow.
0: और 1985 में आज ही के दिन भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता बाबा आमटे को कुष्ठ रोगियों तथा अन्य उपेक्षित और दिव्यांग लोगों के पुनर्वास के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सार्वजनिक सेवा श्रेणी में रेमन मैक्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
1: How great.
0: तो ये तो बात हुई इतिहास में आज के दिन दर्ज प्रमुख घटनाओं की, और अब रुक करते हैं अपने प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ।
1: और जब हम,
0: जी हाँ, जब हम बात करते हैं उन विशिष्ट व्यक्तित्वों के बारे में जिनकी आज जन्मतिथि है और या फिर जिनकी आज पुण्यतिथि है, और यहाँ मैं कुछ एक पंक्तियाँ पढ़ना चाहूँगा। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।
1: यहाँ
0: देश प्रेम और देशभक्ति से जुड़ी हुई ये पंक्तियां हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि मैथिली शरण गुप्त की हैं, और राष्ट्र कवि की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया। इन्होंने खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य के ऐसे महान कवि थे जिन्होंने कविता को केवल सौंदर्य का माध्यम नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण और समाज सुधार का साधन बनाया। उनकी रचनाओं में देशभक्ति, संस्कृति, नारी सम्मान, मानवता और नैतिक आदर्शों का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। आज भी भारत भारती, साकेत, यशोधरा जैसी कृतियां हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर मानी जाती हैं और नई पीढ़ी को प्रेरित करती हैं। इनका लेखन ऐसे समय में आया जब देश स्वतंत्रता आंदोलन से गुजर रहा था। इनकी रचनाओं ने जनता में राष्ट्रीय चेतना और आत्मगौरव की भावना जगाई। भाषा बहुत सहल थी, सरल थी, संस्कृत निष्ठ थी और प्रभावशाली रही। वे मानते थे कि साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं है बल्कि समाज को दिशा देने का भी माध्यम है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की एक ऐसी रचना रही है, प्रसिद्ध कृति रही है, जिसमें भारत के गौरवशाली अतीत, वर्तमान की चुनौतियों और उज्जवल भविष्य की कल्पना का चित्रण किया गया है। इस कृति ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लोगों में देशभक्ति की भावना को प्रबल किया था।
1: So exactly, Maithili

0: Charan Gupta gave Hindi literature a powerful voice of culture, national awakening as well. His literary legacy continues to inspire generations with its message of patriotism, social reform and cultural pride. And celebrated as Kavi Divas, Poet's Day in his honor, author of timeless works like you also told Saket, Yashodhara, Panchvati, and honored with the title Rashtra Kavi as well. He was awarded the Padma Bhushan in 1954.
1: जी, और आज के दिन हुआ जन्म हुआ था शकील बदायूनी का, महान शायर और गीतकार. अपनी शायरी की बेपनाह कामयाबी से उत्साहित होकर इन्होंने आपूर्ति विभाग की सरकारी नौकरी छोड़ दी थी और वर्ष 1946 में दिल्ली से मुंबई पहुंच गए थे. शकील बदायूनी ने करीब 3 दशक के फिल्मी जीवन में लगभग 90 फिल्मों के लिए गीत लिखे. और इनके फिल्मी सफ़र पर एक नज़र डालें तो पता चलता है कि सबसे ज़्यादा फिल्में संगीतकार नौशाद के साथ ही की थी इन्होंने. और वर्ष 1947 में पहली ही फिल्म दर्द के गीत अफसाना लिख रही हूँ कि अपार सफलता मिलने के बाद शकील बदायूनी कामयाबी के शिखर पर जा बैठे थे. और शकील बदायूनी की जोड़ी प्रसिद्ध संगीतकार नौशाद और हेमंत कुमार के साथ खूब जमी.
0: And yes, Shakil Badayuni, the one of the most famous Urdu poet and lyricist of the 50s and 60s. Well, we obviously remember him for his songs with music director Naushad.
1: और इनको जो है 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया जी गीतों के लिए इनको. और जो 14वीं का चांद फिल्म का एक गीत था और वर्ष 1960 में इसके लिए इनको फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था. ये सुनते हैं गीत.

और 1962 में एक फिल्म आई थी 20 साल बाद, उसका भी एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत नगमा ये सुनते हैं, जरा नजरों से कह दो।

आज ही के दिन जन्म हुआ था संगीतकार और बहुत ही प्रतिभाशाली संगीतकार और संवेदनशील संगीतकार जयदेव का। और इन्होंने अपनी भावपूर्ण धुनों से भारतीय सिनेमा को कई यादगार गीत दिए। जयदेव हिंदी फिल्म संगीत के उन विरल संगीतकारों में थे जिन्होंने लोकप्रियता से अधिक संगीत की गुणवत्ता को महत्व दिया। उनकी धुनों में भारतीय शास्त्रीय संगीत, कविता और भावनाओं का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। और जयदेव का संगीतबद्ध एक ये गीत फिल्म हम दोनों से, आइए सुनते हैं।

0: तो श्रोताओं, आज सवेर में आज बस इतना ही। अगर आप आज सवेरे कार्यक्रम दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newzoneair.gov.in पर।
1: Well, we thank you so much listeners for tuning in and we hope you have a wonderful day ahead.
0: Namaskar.

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प के लिए 100 सप्ताह का नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। कहा, विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक आज से लखनऊ में शुरू। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ नए दौर की वार्ता आज। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शांति रैली के दौरान आत्मघाती हमले में 14 लोग मारे गए और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को औपचारिक रूप से 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के अधिकार सौंपे गए। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देशभर में हर रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
3: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय

0: ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम को कटक के पास बनारा में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। कल राष्ट्रपति भुवनेश्वर से ब्रह्मपुर तक एक विशेष ट्रेन से यात्रा करेंगी और फिर सड़क मार्ग से गंजाम जिले के तप्तपाणी जाएंगी, जहां वो मां कांधुनी देवी मंदिर और शिव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। वो रात में गोलाबंध स्थित आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज में रुकेंगी। भुवनेश्वर और कटक में पुलिस की लगभग 40 प्लाटून तैनात करके सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान निर्धारित स्थलों के ऊपर नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना शुरू हो गई है। पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जा रही है, उसके बाद 8:30 बजे से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में दर्ज वोटों की गिनती शुरू होगी। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को मतदान हुआ था। लोकसभा में आज सर्वोच्च न्यायालय, न्यायाधीशों की संख्या, संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होने की संभावना है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस विधेयक को पेश कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश कर सकती हैं। इसका उद्देश्य बैंकों के रिकॉर्ड से जुड़े सबूतों के लिए कानून बनाना और इसे आजकल के डिजिटल बैंकिंग तौर तरीकों के अनुरूप बनाना है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा में आज सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स के सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है।
2: इस वर्ष भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है। ब्रिक्स सांख्यिकी ट्रैक के अंतर्गत भारत ने परिवर्तन के प्रेरक के रूप में गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकी इस विषय को अपनाया है। इसका उद्देश्य ब्रिक्स के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान एवं सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। बैठक में सांख्यिकी उत्पादों को मजबूत करने, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणालियों में सुधार, डेटा की पहुंच बढ़ाने और आर्थिक व क्षेत्रीय सांख्यिकी को सुदृढ़ बनाने पर चर्चा होगी। इसके साथ ही विकसित होते डेटा पारिस्थितिकी तंत्र में एआई की तैयारी विषय पर 2 विशेष सह कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत आज होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। इस हमले की योजना पहले से बनाई गई थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन को लेकर कोई समझौता हो सकता है। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि

0: ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर भी समझौता किया जाएगा। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर एक आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षा कर्मियों सहित 14 लोग मारे गए। ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। फिलहाल किसी भी समूह या व्यक्ति ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। 9 लोग मौके पर ही मारे गए जबकि 5 और लोगों की मौत की पुष्टि काबल अस्पताल में हुई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पाल की जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार को निकाले जाने की परंपरा है। भगवान महाकाल को चंद्रमौलेश्वर रूप में पारंपरिक पाल की जुलूस में ले जाया जाएगा जिससे भक्तों को दर्शन का अवसर मिलेगा।
1: मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर से आज श्रावण मास की पहली सवारी निकलेगी। इस दौरान भगवान महाकाल चंद्रमौली

0: विश्व रूप में पारंपरिक पालकी जुलूस में ले जाया जाएगा, जिससे भक्तों को दर्शन का अवसर मिलेगा।
1: मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर से आज श्रावण मास की पहली सवारी निकलेगी। इस दौरान भगवान महाकाल चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में पालकी में विराजमान होकर नगर भ्रमण करेंगे और श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। दोपहर 3:30 बजे सभा मंडप में पूजन होगा, जबकि शाम 4 बजे सवारी मंदिर से रवाना होगी। सवारी गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार और कहारवाड़ी होते हुए रामघाट पहुँचेगी। यहाँ शिप्रा नदी के जल से भगवान महाकाल का अभिषेक और आरती की जाएगी। इसके बाद सवारी अलग अलग रास्तों से होते हुए शाम 7 बजे मंदिर लौटेगी। महाकाल मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में एक भव्य समारोह में संपन्न हो गए। समापन समारोह में वंदे मातरम के गान के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता और परंपरा का प्रदर्शन किया गया।

0: समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। खेल मंत्रालय के सचिव हरि रंजन ने कहा है कि देश के खिलाड़ियों ने अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन किया।
1: 2026 के ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में कई खेलों की विधाओं में कटौती होने के बावजूद भी देश की टीम ने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया है कि पहले से और हमारी अपेक्षाओं से कहीं गुना ज्यादा, तो ये हम सबके लिए एक बहुत सुखद संकेत है कि शायद वो जो एक टर्निंग पॉइंट स्पोर्ट्स की दिशा में देश में आना चाहिए उसका समय आ गया है। और 2030 में हम अगला कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में अहमदाबाद शहर में आयोजित करने वाले हैं, ये भी हमारे लिए बहुत ही सुखद संयोग है और प्रतिष्ठा का विषय भी है।
0: ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
2: धन्यवाद मुनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर नशे के खिलाफ 100 सप्ताह के अभियान, राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन और मानसून से जुड़ी खबरें सबसे ऊपर छाई हुई हैं। हिंदुस्तान का पहला शीर्ष समाचार है, नशे के खिलाफ देश ने 100 सप्ताह की जंग छेड़ी। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को सुर्खी बनाया है, ड्रग्स दुश्मन देशों की साजिश। नवभारत टाइम्स और दैनिक जागरण ने भी प्रधानमंत्री की कही इसी बात को शीर्ष समाचार बनाया है, जबकि जनसत्ता ने अमेरिका ईरान युद्ध के समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वक्तव्य को अपना शीर्ष समाचार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान पर हमले रोकें बशर्ते शीघ्र हो करार। दैनिक भास्कर ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की उपलब्धि के समाचार को शीर्षक दिया है, इस बार हमारे 54% गोल्ड बॉक्सिंग में आए, कुल मेडल में से 69% सिर्फ 3 खेलों में जीते। दैनिक ट्रिब्यून ने अपने संपादकीय लेख को शीर्षक दिया है, हादसों के हाईवे पत्र सड़क दुर्घटनाओं की गंभीरता को रेखांकित करते हुए सवाल करता है कि जब वैकल्पिक ईंधन और वाहनों की प्रदूषण जांच सरकार की प्राथमिकता है तो ऐसा ही अभियान सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए क्यों नहीं चलाया जाता। पत्र का कहना है कि बीते गुरुवार को लोकसभा में सड़क दुर्घटनाओं के जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए वो डराने वाले हैं। कश्मीर में हथियारों से लैस 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी के समाचार को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए इसे सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी बताया है। पुलवामा जिले में एक आतंकी से हैंड ग्रेनेड, राष्ट्र विरोधी पोस्टर और अन्य प्रतिबंधित सामग्री बरामद होने की खबर को पत्र ने बॉक्स में प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, बारामूला में आतंकियों का मददगार गिरफ्तार।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, डिजिटल नागरिक की सुरक्षा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प के लिए

0: ஆயுஷ்மான் பாரதம் திட்டத்துக்கு உட்பட்டு சுமார் 60 கோடி மக்கள் 5 லட்சம் ரூபாய் வரையிலான இலவச மருத்துவ சிகிச்சைக்கு உரிமையாளர்கள். 12 கோடிக்கும் அதிகமானவர்களுக்கு இதுவரை இலவச மருத்துவ சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதனால் ஏழை குடும்பங்களின் மருத்துவ செலவில் சுமார் 2 லட்சம் கோடி ரூபாய் வரை சேமிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆயுஷ்மான் செயலியை இன்றே பதிவிறக்கம் செய்து ஆயுஷ்மான் அட்டையை தயார் செய்து கொள்ளுங்கள். மேலும் தகவல்களுக்கு 1455 என்ற எண்ணோடு தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: அறிக்கைகள். அதனைத் தொடர்ந்து விஸ்வதர்பன் மற்றும் வேர்ல்ட் நியூஸ் டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जनभागीदारी अभियान के दौरान देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
2: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों के लिए मतगणना जारी है। पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जा रही है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में दर्ज वोटों की गिनती की जाएगी। बिहार के बांकीपुर से जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। गुजरात में मांजलपुर सीट से भाजपा के सत्येंद्र भाई पटेल बढ़त बनाए हुए हैं। मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीट के लिए मतगणना सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो रही है। लोकसभा में आज सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होने की संभावना है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस विधेयक को पेश कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश कर सकती हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा में आज सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होने की संभावना है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत आज होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने इस बड़े हमले को रोक दिया। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षाकर्मियों सहित 14 लोग मारे गए। ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पालकी का जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह के साथ संपन्न हो गए। समापन समारोह में वंदे मातरम के गान के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता और परंपरा का प्रदर्शन किया गया। समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में 4थे स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय दल के प्रदर्शन पर गर्व व्यक्त किया और भारत द्वारा 13 स्वर्ण पदकों सहित 39 पदक जीतने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने सभी पदक विजेताओं को उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रतिस्पर्धाओं के दौरान भारत के प्रतिभाशाली एथलीटों ने असाधारण कौशल, दृढ़ संकल्प और समर्पण का प्रदर्शन किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक आज लखनऊ में शुरू। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ नए दौर की वार्ता आज। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शांति रैली के दौरान आत्मघाती हमले में 14 लोग मारे गए। जापान और अमेरिका ने येन को मजबूत करने के लिए संयुक्त हस्तक्षेप की पुष्टि की। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को औपचारिक रूप से 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के अधिकार सौंपे गए।

0: गए। जापान और अमेरिका ने येन को मजबूत करने के लिए संयुक्त हस्तक्षेप की पुष्टि की और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को औपचारिक रूप से 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के अधिकार सौंपे गए। और अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की दो दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स के सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है।
1: इस वर्ष भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है। ब्रिक्स सांख्यिकी ट्रैक के अंतर्गत भारत ने परिवर्तन के प्रेरक के रूप में गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकी इस विषय को अपनाया है। इसका उद्देश्य ब्रिक्स के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान एवं सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। बैठक में सांख्यिकी उत्पादों को मजबूत करने, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणालियों में सुधार, डेटा की पहुंच बढ़ाने और आर्थिक व क्षेत्रीय सांख्यिकी को सुदृढ़ बनाने पर चर्चा होगी। इसके साथ ही विकसित होते डेटा पारिस्थितिकी तंत्र में एआई की तैयारी विषय पर दो विशेष सह कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुश्मन देश षड्यंत्र करके भारत के युवाओं को नशे की लत में खींचने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। मादक पदार्थों की तस्करी से कमाई करना और हमारे जैसे देश को तबाह करना, ये भी उनकी आतंकी साजिश का हिस्सा होता है और इसीलिए हमें प्रत्येक युवा को नशे के चंगुल से फंसने से बचाना है। उन्होंने कहा कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत होना और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देश भर में हर रविवार को विशेष गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और इससे परिवार, समाज तथा राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है।
2: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण समाचार में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता आज होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं।
3: सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही अमेरिका ने ईरान पर बड़े हमले को रोक दिया है। इस हमले की योजना पहले से ही बनाई गई थी। ये भी संकेत है कि होर्मुज जल डमरू मध्य के प्रबंधन के बारे में भी समझौता हो सकता है। ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण पर भी समझौता किया जाएगा। कूटनीति की ओर ये अचानक झुकाव ऐसे समय में आया है जब मध्यस्थ अमेरिका और ईरान के बीच एक सक्रिय ढांचे को फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। क्षेत्रीय मध्यस्थ पिछले महीने हस्ताक्षरित समझौते को फिर लागू करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि रणनीतिक जलमार्ग 60 दिनों तक बिना किसी शुल्क के खुला रहे। उधर समुद्री गलियारे के संचालन के लिए संयुक्त कार्यप्रणाली पर ईरान और ओमान के बीच बातचीत अंतिम चरण में है। विश्व दर्पण के लिए मैं मनोज।
0: पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षा कर्मियों सहित 14 लोग मारे गए।
4: ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। फिलहाल किसी भी समूह या व्यक्ति ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है।

0: 9 लोग मौके पर ही मारे गए जबकि 5 और लोगों की मौत की पुष्टि काबल अस्पताल में हुई। स्थानीय जनजातीय परिषद ने क्षेत्र में शांति की मांग करते हुए स्वात शांति रैली आयोजित की थी। परिषद ने आरोप लगाया कि पुलिस की निष्क्रियता से पिछले कुछ महीनों में क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति बदतर हो गई है। विश्व दर्पण के लिए विशाल शर्मा।
1: जापान और अमेरिका ने जापानी मुद्रा को 40 वर्षों के निचले स्तर पर गिरने से रोकने के लिए समन्वित येन खरीद हस्तक्षेप की पुष्टि की है। टोक्यो ने संकेत दिया है कि अगर आवश्यक हुआ तो वॉर कार्रवाई को तैयार है। जापान के वित्त मंत्रालय ने पिछले सप्ताह अमरीकी वित्त विभाग के समन्वय से जापानी येन की खरीद की। वित्त मंत्री कातायामा सात्सुकी ने आज एक बयान जारी कर संयुक्त हस्तक्षेप की पुष्टि की है।
2: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद जापानी मंत्रालय ने संयुक्त हस्तक्षेप की पुष्टि की है, जिसमें उन्होंने घोषणा की थी कि वॉशिंगटन मित्रता के प्रतीक के रूप में और वैश्विक अर्थव्यवस्था को सहयोग देने के लिए येन को मजबूत करने में मदद कर रहा है। ये कार्रवाई हाल के महीनों में येन की अत्यधिक अस्थिरता से निपटने के लिए की गई थी। अमरीकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भी जापान और अमरीका के समन्वित हस्तक्षेप की पुष्टि की है। इस कार्रवाई से येन के अनियंत्रित उतार चढ़ाव को रोकने के प्रयास किए गए हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारत के खिलाड़ियों की सराहना की है। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में एक भव्य समारोह में संपन्न हो गए। समापन समारोह में वंदे मातरम के गान के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता और परंपरा का प्रदर्शन किया गया।

0: समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। खेल मंत्रालय के सचिव हरिरंजन ने कहा है कि देश के खिलाड़ियों ने अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन किया।
1: 2026 के ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में कई खेलों की विधाओं में कटौती होने के बावजूद भी देश की टीम ने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया है कि पहले से और हमारी अपेक्षाओं से कहीं गुना ज्यादा, तो ये हम सबके लिए एक बहुत सुखद संकेत है कि शायद वो जो एक टर्निंग पॉइंट स्पोर्ट्स की दिशा में देश में आना चाहिए उसका समय आ गया है। और 2030 में हम अगला कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में अहमदाबाद शहर में आयोजित करने वाले हैं, ये भी हमारे लिए बहुत ही सुखद संयोग है और प्रतिष्ठा का विषय भी है।
0: मुख्य कोच सत्यनारायणन ने आशा व्यक्त की कि भारत 2030 के खेलों में अच्छा प्रदर्शन करेगा।
2: ओवरऑल इंडियन परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, आगे वाले वाला हम अच्छा करेगा। मेरा एथलीट बहुत खुश है, आप लोग देख सकते हैं क्लोजिंग सेरेमनी में, इवन स्कॉटलैंड ग्लासगो लोग को भी मैं धन्यवाद बोलता है। हमारा प्रिपरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ध्यान दिया है, इवन गुजरात गवर्नमेंट ऑल्सो बहुत अच्छा इंटरेस्ट ले रहा है।
0: राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। मेजबान भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 7 में से 6 स्वर्ण पदक जीते। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक आज लखनऊ में शुरू। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ नए दौर की वार्ता आज। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शांति रैली के दौरान आत्मघाती हमले में 14 लोगों की मौत। जापान और अमेरिका ने येन को मजबूत करने के लिए संयुक्त हस्तक्षेप की पुष्टि की। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को औपचारिक रूप से 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के अधिकार सौंपे गए। और इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good morning, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the World News. The headlines. Meeting of heads of national statistical offices of BRICS countries starts in Lucknow today. US President Donald Trump says new talks with Iran to take place today. 14 people killed in suicide attack during peace rally in Pakistan's Khyber Pakhtunkhwa. Japan and US confirmed joint intervention

0: தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே கனகலதா. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय ओडिशा दौरे पर रहेंगी. इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी. लोकसभा में आज सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होने की संभावना है. केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन

0: मेघवाल इस विधेयक को पेश कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैंकार बहिस्साक्ष्य विधेयक 2026 पेश कर सकती हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा में आज सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होने की संभावना है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की दो दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की तीन विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों की मतगणना जारी है। बिहार के बांकीपुर से जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। गुजरात के मांजलपुर सीट से भाजपा के सत्येंद्र भाई पटेल और दतिया सीट से भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीट के लिए मतगणना सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो रही है, जहां 20 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। त्रिसैन्य भविष्य युद्ध पाठ्यक्रम का चौथा आयोजन आज नई दिल्ली में हो रहा है। 4 सप्ताह का यह पाठ्यक्रम एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है और संयुक्त युद्ध अभ्यन केंद्र द्वारा समन्वित है। इस पाठ्यक्रम में तीनों सेनाओं के अधिकारियों के साथ साथ सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों, उद्योग और रणनीतिक विचारकों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन फिर शुरू हो गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि यह दावा फर्जी है और वायरल वीडियो पुराना है। लोगों से इस तरह की भ्रामक सामग्री से सावधान रहने का आग्रह किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत आज होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने इस बड़े हमले को रोक दिया। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान थाने पर आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षा कर्मियों सहित 14 लोग मारे गए। ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबुल कस्बे में थाने के सामने से गुजर रही थी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पालकी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह में संपन्न हो गए। समापन समारोह में वंदे मातरम गान के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता और परंपरा का प्रदर्शन किया गया। समारोह में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में 4th स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल तथा युवा कार्यक्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और झारखंड में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Lok Sabha is scheduled to take up the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026 today. Union Minister of Law and Justice Arjun Ram Meghwal is likely to move the bill further to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1956 for increasing the number of judges of the Apex Court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. Meanwhile, the Rajya Sabha is scheduled to

0: மெல்லிசை கேட்டீர்கள்.
1: என்னது, யாருமே இல்லாத ரூம்ல லைட்டு ஃபேனு எல்லாம் ஓடிட்டு இருக்கு. எங்க போயிட்டாங்க எல்லாரும்? பவித்ரா எங்க இருக்க?
2: கவிதா, நான் இங்க சமையல் அறையில தான் இருக்கேன். நீ எப்போ வந்த?
1: நான் இப்பதான் வந்தேன். அது சரி, ரூம்ல தான் யாருமே இல்லையே, ஃபேன் லைட் எல்லாம் எதுக்கு ஆன்ல இருக்கு?
2: ஐயோ மறந்துட்டேன், சரி விடு. இப்ப என்ன அதுக்கு?
1: என்ன இப்படி சொல்லிட்ட? எவ்வளவு மின்சாரம் வீணா செலவாது. நாம அந்த அறைய பயன்படுத்தாம வெளியில போகும்போதே அதை அணைச்சிட்டு போனா எவ்வளவு மின்சாரத்தை சேமிக்கலாம். அதே மாதிரி பணியிடங்கள்ல நாம இல்லாதப்ப லேப்டாப் கம்ப்யூட்டர் போன்ற சாதனங்கள்ல மானிட்டர் ஆஃப் பண்ணிட்டு போலாம். இப்படி நாம நம்மளால முடிஞ்ச அளவு மின்சாரத்தை சேமிக்கலாம்.
2: நல்ல விஷயம்தான் சொல்லியிருக்கேன், நான் இனிமேல் அப்படியே செய்யறேன்.
1: மின்சாரத்தை சேமிப்போம், நாட்டு நலன் காப்போம்.
0: நேர்களை, நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சிகளை நியூஸ் ஆன் ஏர் மொபைல் ஆப்பிலும் கேட்டு ரசிக்கலாம். தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
3: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே கனகலதா. संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई नीट पेपर लीक को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर गतिरोध के कारण आज बाधित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे। श्री राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया और कई सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी और हंगामा जारी रहने के कारण सभापति ने सदन को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। उधर लोकसभा की कार्यवाही भी बार बार बाधित हुई। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को पहले दोपहर 12 बजे तक और फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। लोकसभा अध्यक्ष ने कुछ विपक्षी सदस्यों द्वारा जानबूझकर किए जा रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त की और सदन की कार्यवाही जारी रखने का आग्रह किया, लेकिन गतिरोध जारी रहने पर सदन को पहले 12 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
4: विपक्ष से कई सदस्यों ने अपोज करने का नोटिस दिया है, अभी मैं उनके नाम भी पढ़ा हूँ। आप उनको मौका देंगे नहीं देंगे, आप सोचिएगा। इस तरह ये प्लेकार्ड लेके आना, पहली बार कई बार बोल चुके, इट इज अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द पार्लियामेंट, यू कैन नॉट डू दिस। अगर आप इसी तरह चलते हैं तो कैसे आगे चलेगा?
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज से 3 दिन की ओडिशा यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। विधानसभा की 3 सीटों पर 30 जुलाई को संपन्न हुए उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। बिहार के बांकीपुर से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नीरज कुमार से आगे चल रहे हैं। गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के सत्येंद्र पटेल अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भीखा भाई रबारी और मध्य प्रदेश के दतिया में कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह भाजपा के आशुतोष तिवारी से आगे चल रहे हैं। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। कर्नाटक में आज शाम लोकभवन में 20 नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। डीके शिवकुमार ने 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इस

0: के अलावा 13 मंत्रियों ने भी शपथ ली थी। आज 20 मंत्रियों के शामिल होने पर मंत्रिमंडल की अधिकतम क्षमता 34 हो जाएगी। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मानवाधिकार समूहों का आरोप है कि हताहतों की संख्या काफी बढ़ गई है। इस इलाके की मानवाधिकार परिषद की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 80 तक पहुंच गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ आज बातचीत होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह के साथ संपन्न हो गए। समापन समारोह में समवीर राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल तथा युवा कार्यक्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी। संसद के दोनों सदनों ने भी आज राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में उत्कल मणि पंडित गोप बंधु दास की प्रतिमा का अनावरण किया। गोप बंधु दास ओडिशा के एक प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने ओडिया दैनिक द समाज की भी स्थापना की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Both houses of parliament have been adjourned till 2 p.m. amid opposition ruckus over several issues, including alleged police action during students' protests over the NEET issue. When the Lok Sabha met after the first adjournment at 12 noon, Minister of Statistics and Programme Implementation Rao Inderjeet Singh introduced the Indian Statistical Institute Bill 2026. The bill seeks to provide for a comprehensive statutory framework to the Indian Statistical Institute to excel as a globally recognized centre in statistical sciences and allied fields. Finance Minister Nirmala Sitharaman introduced the Bankers Books Evidence Bill 2026. It aims to provide for law relating to evidence with respect to bankers' books and align it with contemporary digital banking practices. The opposition members came to the well demanding Union Home Minister Amit Shah's reply over the alleged police action during students' protest over the NEET issue. The presiding officer urged the members to go back to their seats as the pandemonium continued. The Lok Sabha was adjourned till 2 p.m. The Rajya Sabha has also been adjourned till 2 p.m. over the same issue. When the upper house assembled at 11 a.m., Chairman C.P. Radhakrishnan congratulated Team India for its outstanding performance at the Commonwealth Games held at Glasgow.
2: India secured an impressive fourth position in the Commonwealth Games medal tally, winning 39 medals overall. Scripted history by registering their best ever performance at the Commonwealth Para Games. The remarkable achievement has brought immense pride and honor to the nation and bear testimony to the growing excellence of Indian sportspersons.
1: Union Minister Sanjay Seth and an MP from Jharkhand has alleged serious irregularities in the recruitment process for the Jharkhand Public Service Commission examination, claiming that deserving candidates were denied selection while candidates with significantly lower marks were selected. Talking to Akashvani News, he criticized the Jharkhand government and said no state government representative had met the protesting students despite the ongoing situation. The counting of votes for the by-elections in three assembly constituencies is underway. In Bihar's Bankipur assembly constituency, Jan Suraj Party candidate Prashant Kishore is leading by 21,941 votes. In Gujarat's Manjalpur assembly constituency, BJP candidate Satyendra Bhai Patel is leading by 37,542 votes. In Madhya Pradesh's Datia assembly constituency, Congress Party candidate Ghanshyam Singh is leading by 1,780.

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। विपक्ष के कई मुद्दों पर विरोध के कारण बाधित लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना जारी। दिल्ली की एक अदालत ने कुछ महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को बरी किया। भारत ने आधार कार्ड से सत्यापित 5,00,000 से अधिक अंगदान प्रतिज्ञाएं पूरी की। अंग प्रत्यारोपण में वैश्विक स्तर पर भारत तीसरे स्थान पर। अमेरिका और ईरान के बीच आज अगले दौर की बातचीत संभावित। और अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों तथा सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की आशंका। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा की 3 सीटों पर 30 जुलाई को संपन्न हुए उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। बिहार के बांकीपुर से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नीरज कुमार से आगे चल रहे हैं। गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के सत्येंद्र पटेल अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भीखाभाई रबारी और मध्यप्रदेश के दतिया में कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह भाजपा के आशुतोष तिवारी से आगे चल रहे हैं। बिहार से हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
1: पिछले 30 सालों से भाजपा का गढ़ रही बांकीपुर विधानसभा सीट पर इस बार उपचुनाव में जनसुराज के प्रशांत किशोर ने शुरुआती बढ़त बना ली है। प्रशांत किशोर मतगणना की शुरुआत के साथ ही प्रत्येक राउंड की गिनती में लगातार आगे चल रहे हैं। वहीं दूसरे नंबर पर भाजपा के नीरज कुमार हैं, जिन्हें अब तक 15,000 से ज्यादा मत मिले हैं। वहीं आरजेडी की रेखा कुमारी 4,000 से अधिक मतों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। उपचुनाव में कुल 25 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के अप्रैल में राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद बांकीपुर विधानसभा सीट से इस्तीफा देने के कारण इस सीट पर उपचुनाव कराया गया था। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई, जिनमें नीट परीक्षा मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई भी शामिल है। लोकसभा की कार्यवाही आज पहले स्थगन के बाद जब दोपहर 12 बजे फिर से आरंभ हुई तो पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधायी कामकाज शुरू करने का प्रयास किया। इस बीच सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 संसद के समक्ष प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किया। इस दौरान विपक्षी सदस्य नीट परीक्षा के मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर सदन के बीचों बीच आ गए। पीठासीन अधिकारी ने सदस्यों से अपनी सीटों पर वापस जाने का आग्रह किया। इसके बावजूद गतिरोध जारी रहने के कारण लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
2: विपक्ष से कई सदस्यों ने अपोज करने का नोटिस दिया है, अभी मैं उनके नाम भी पढ़ा हूँ। आप उनको मौका देंगे नहीं देंगे, आप सोचिएगा। इस तरह ये प्लेकार्ड लेके आना, पहली बार कई बार बोल चुके हैं, इट इज अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द पार्लियामेंट, यू कैन नॉट डू दिस। अगर आप इसी तरह चलते हैं तो कैसे आगे चलेगा।
0: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही दिन में 11 बजे शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण अध्यक्ष सभापति सीपी राधाकृष्णन ने दोपहर 2 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी। इससे पहले दोनों सदनों की ओर से ग्लासगो में संपन्न हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी गई। राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत के पैरा एथलीटों ने भी 3 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित 7 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल पैरा खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए इतिहास रचा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि अगले राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2030 में गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होंगे।
2: कल संपन्न हुए समापन समारोह के उपरांत राष्ट्रमंडल खेलों का बैटन भारत को सौंप दिया गया है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन से देश के करोड़ों युवाओं और खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों, उनके कोच एवं टीम इंडिया को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।

0: मैं देता हूँ।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आज महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह और सह आरोपी विनोद तोमर को बरी कर दिया। इस मामले में मई 2024 में एक अदालत ने श्री सिंह के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप तय करने का आदेश दिया था। हालांकि 6 महिला पहलवानों में से एक के द्वारा दायर शिकायत में उन्हें बरी कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि प्रत्येक सड़क पर पैदल यात्रियों के लिए उचित रूप से सीमांकित और अतिक्रमण मुक्त स्थान फुटपाथ सुनिश्चित किया जाए। न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल KM नटराज को संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा, जिसमें पैदल यात्रियों के लिए निर्धारित स्थान को मोटर वाहनों के लेन से स्पष्ट रूप से अलग किया जा सके और उन्हें अतिक्रमण मुक्त रखा जा सके। पीठ ने कहा कि लक्ष्य बिना किसी बड़े निवेश या निर्माण के प्राप्त किया जा सकता है। भारत ने वर्ष 2023 में डिजिटल अंगदान पोर्टल के शुभारंभ के बाद से 3 वर्ष के भीतर आधार सत्यापित अंगदान प्रतिज्ञाओं का 5 लाख से अधिक का आंकड़ा पार कर लिया है। नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारतीय अंगदान दिवस समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि पिछले 12 वर्ष में भारत में अंग प्रत्यारोपण की संख्या प्रतिवर्ष 20,000 से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अंगदान को प्रोत्साहित करने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए उन्होंने राष्ट्र से अंगदान को सबसे बड़ा दान मानने की अपील की है।
2: आप एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं, किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें और भोजन आहार ऐसा लें जो आपके शरीर को बीमारियों से मुक्त रखे, और उसके बाद भी यदि ऐसी परिस्थितियां विकसित होती हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में कि उसे अंगों की आवश्यकता पड़े, तो समाज के बीच में से हमको इन प्रयासों को बढ़ाना होगा।
1: इस अवसर पर सुश्री अनुप्रिया पटेल ने एक साल तक चलने वाले जुग जुग जियो अभियान का शुभारंभ किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सशस्त्र बल मुख्यालय AFHQ की सेवाएं रक्षा मंत्रालय की संस्थागत धरोहर हैं। वे आज नई दिल्ली में AFHQ असैन्य सेवा दिवस के अवसर पर संबोधन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को निरंतरता, विशेषज्ञता और नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है। श्री सिंह ने AFHQ की सेवाओं को राष्ट्र के निर्णायक शक्तियों में से एक बताया।
3: किसी भी सेना को शक्ति केवल हथियारों और गोले बारूदों से ही नहीं मिलती है, बल्कि उन हजारों ऐसे अदृश्य लोगों के द्वारा भी मिलती है जो हमेशा उसके पीछे, उसके सपोर्ट में सदैव पूरी लगन के साथ खड़े रहते हैं। आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविलियन सर्विसेज उन्हीं अदृश्य लेकिन निर्णायक शक्तियों में से एक है।
1: केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत उज्बेकिस्तान आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया है और अगले 3 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य अधिक निवेश, व्यापार बाधाओं में कमी और स्वास्थ्य सेवा तथा फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में गहन सहयोग के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित भारत उज्बेकिस्तान व्यापार मंच में उन्होंने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान के व्यवसायों में उपलब्ध अवसरों में निवेश करने पर ध्यान देना चाहिए। इस अवसर पर उज्बेकिस्तान के निवेश, उद्योग और व्यापार मंत्री लाजीज कुदरतोव भी उपस्थित थे। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन फिर शुरू हो गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दावा फर्जी है और वायरल वीडियो पुराना है। लोगों से इस तरह की भ्रामक सामग्री से सावधान रहने का आग्रह किया गया है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में चल रही है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की ओडिशा यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक

0: भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। कर्नाटक में आज शाम 20 नए मंत्री शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह लोक भवन में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही डीके शिवकुमार मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 34 हो जाएगी। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: काफी निरीक्षा के बाद आज कर्नाटका में मंत्रिमंडल का विस्तार संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के करीबी माने वाले विधानसभा सदस्यों को मंत्रिमंडल में स्थान प्राप्त हुआ है और कुछ सदस्य जो सिद्धरामैया के करीबी माने जाते थे उनको बदला गया है। सिद्धरामैया और शिवकुमार के मंत्रिमंडल में 13 बदलाव देखे जा रहे हैं। कांग्रेस कमेटी द्वारा जीएस पाटिल को असेंबली स्पीकर और सलीम अहमद को काउंसिल के चेयरपर्सन के स्थान के लिए चुना गया है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ आज अगले दौर की शांति वार्ता हो सकती है। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मानवाधिकार समूहों का आरोप है कि हताहतों की संख्या काफी बढ़ गई है। इस इलाके की मानवाधिकार परिषद की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 80 तक पहुंच गई है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी कल तेज बारिश की संभावना है। अगले दो दिन तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भी इसी तरह का मौसम रहने की आशंका है। तटीय आंध्र प्रदेश, केरला, माहे, लक्षद्वीप, उत्तरी आंध्र कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेकाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कल तक बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है क्योंकि महानदी समेत सभी प्रमुख नदियों में पानी का स्तर कम हो गया है। राज्य सरकार ने बाढ़ से हुए नुकसान का विस्तृत आकलन शुरू कर दिया है और जिन परिवारों के घर पूरी तरह से नष्ट हो गया है उन्हें 1,20,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों और फसलों के नुकसान के लिए भी मुआवजा की घोषणा की गई है। हालांकि भद्रक और जाजपुर जिलों के किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि धान और सब्जियों की फसलें बह गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पाल की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के विभिन्न देवस्थानों में सुबह से विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। तमिलनाडु में आज आषाढ़ माह का 18वां दिन है। इसे आषाढ़ पेरुक्कू कहा जाता है और ये देवी अम्मन को समर्पित है। इस त्यौहार में कृषि का आधार रही नदियों में जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए प्रार्थना की जाती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विपक्ष के कई मुद्दों पर विरोध के कारण बाधित लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना जारी। दिल्ली की एक अदालत ने कुछ महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह को बरी किया। भारत ने आधार कार्ड से सत्यापित 5,00,000 से अधिक अंगदान प्रतिज्ञाएं पूरी की। अंग प्रत्यारोपण में वैश्विक स्तर पर भारत तीसरे स्थान पर। अमरीका और ईरान के बीच आज अगले दौर की शांति वार्ता संभावित। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: நேரம் 2:30, ஆகாஷ்வாணி சென்னை.

0: சமயம்
1: ఆకాశవాణి చెన్నై కేంద్రం సమయం 4 గంటలకు అవస్తోంది. కొద్ది క్షణాల్లో వార్తలు వింటారు.
2: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సమాచార్ కి సాత్ మే జాగృతి శర్మ. संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई. विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई के अलावा अन्य मुद्दों को लेकर संसद में गतिरोध उत्पन्न किया. लोकसभा में पहले स्थगन के बाद पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद ट्रिनिटी ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधायी कामकाज शुरू करने का प्रयास किया. इस बीच सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 संसद के समक्ष प्रस्तुत किया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किया. इस दौरान विपक्षी सदस्य नीट परीक्षा के मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर सदन के बीचों बीच आ गए. राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2000

0: 26 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में और संशोधन करना है। इसका लक्ष्य भुगतान में देरी को दूर करना और विवाद समाधान को सरल बनाना है। विधेयक में प्रावधान है कि प्रत्येक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को लघु और उद्यम मध्यम उद्यमों से वस्तुओं या सेवाओं की खरीद के लिए सभी बिलों का निपटान व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली के माध्यम से करना होगा। विधेयक के अनुसार यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता विफल हो जाती है तो मध्यस्थता समाप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर मध्यस्थता के लिए मामला भेजा जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि दलीलों के पूर्ण होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर निर्णय सुनाया जाना चाहिए। विधेयक पारित होने के बाद राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करना है। दूसरे स्थगन के बाद सदन की बैठक शुरू होने पर केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। उन्होंने कहा कि यह कदम न्यायिक क्षमता को और मजबूत करेगा, मामलों के प्रभावी निपटान में तेजी लाएगा और नागरिकों को समय पर न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। विधानसभा की 3 सीटों पर 30 जुलाई को संपन्न हुए उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। बिहार के बांकीपुर से जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी नीरज कुमार से आगे चल रहे हैं। गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के सत्येंद्र पटेल अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भीखा भाई रबारी और उधर मध्यप्रदेश के दतिया में कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह भारतीय जनता पार्टी के आशुतोष तिवारी से आगे चल रहे हैं। उज्बेकिस्तान गणराज्य के विदेश मंत्री सईदोब बख्तियार ओडिलोविच ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। श्री ओडिलोविच और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच गहरे ऐतिहासिक सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंध हैं। उन्होंने कहा कि वास्तुकला भाषा भोजन संगीत और धार्मिक परंपराओं में साझा विरासत ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत किया है। भारतीय नौसेना के नौकायन पोत त्रिवेणी के चालक दल ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि तीनों सेनाओं की महिला परिचारिका नौकायन यात्रा समुद्र प्रदक्षिणा ने ल्यूविन हॉर्न और गुड होप केपों का चक्कर लगाते हुए विश्व के सबसे चुनौतीपूर्ण समुद्रों को पार करते हुए 25,000 समुद्री मील से अधिक की दूरी सफलतापूर्वक तय की है। राष्ट्रपति ने इस अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करने में महिला चालक दल के साहस दृढ़ता और अनुकरणीय व्यावसायिकता की सराहना की। ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक कल हैदराबाद में शुरू होगी। 2 दिवसीय बैठक भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के विषय लचीलापन नवाचार सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण के अनुरूप आयोजित की जा रही है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव रचना शाह बैठक का उद्घाटन करेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Both houses of parliament have been adjourned till tomorrow. Earlier, the Lok Sabha today passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026. The bill aims to increase the number of judges of the Apex Court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. In May this year, President Draupadi Murmu had promulgated an ordinance in this regard. The Lok Sabha was adjourned several times today amid protests by opposition parties over several issues. When the House met after the second adjournment at 2 p.m., Union Minister of Law and Justice Arjun Ram Meghwal moved the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill. He said under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi, the mantra of reform, perform and transform is being effectively implemented. The minister said that the bill is an important step in that ongoing reform process within the judicial sector. Earlier, when the Lok Sabha met after the first adjournment at 12 noon, presiding officer Krishna Prasad Tenneti tried to take up the legislative business

0: ஆயுஷ்மான் பாரதம் திட்டத்துக்கு உட்பட்ட சுமார் 60 கோடி மக்கள் 5 லட்சம் ரூபாய் வரையிலான இலவச மருத்துவ சிகிச்சைக்கு உரிமையாளர்கள். 12 கோடிக்கும் அதிகமானவர்களுக்கு இதுவரை இலவச மருத்துவ சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதனால் ஏழை குடும்பங்களின் மருத்துவ செலவில் சுமார் 2 லட்சம் கோடி ரூபாய் வரை சேமிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆயுஷ்மான் செயலியை இன்றே பதிவிறக்கம் செய்து ஆயுஷ்மான் அட்டையை தயார் செய்து கொள்ளுங்கள். மேலும் தகவல்களுக்கு 1455 என்ற எண்ணோடு தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: upsc.gov.in before applying. The National Center for Polar and Ocean Research, NCPOR, an autonomous research institute under the Ministry of Earth Sciences, Government of India, has invited online applications from eligible Indian nationals for one post of a joint manager administration on direct recruitment basis. The position carries pay level 10 as per the 7 CPC and offers an opportunity to work with India's premier institution engaged in polar and ocean research. Applicants should possess the prescribed qualifications and experience as mentioned in the official notification. The last date for submission of online applications is 20th August 2026. Detailed eligibility criteria, selection procedure and application guidelines are available on the website, that is at www.ncpor.res.in. The Center for Development of Telematics, CDOT, has invited online applications from eligible candidates for recruitment on a fixed-term contractual basis. The vacancies include one specialist design and certification of strategic encryptors with a consolidated CTC of up to 42,000 lakhs per annum and two consultant vigilance posts, one each in Delhi and Bangalore, with remuneration as per government norms. Interested candidates must submit their applications online only. Detailed information regarding eligibility criteria, job descriptions, experience requirements, and the application process is available on the career section of the CDOT website. The last date for submitting applications is 30 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. For details, do look up the website at www.cdot.in. I repeat, the website is www.cdot.in. And now we have the Employment News in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण प्रतिनियुक्ति आधार पर उप महाप्रबंधक पर्यावरण के एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। पदों की संख्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की आवश्यकता के अनुसार बढ़ाई या घटाई भी जा सकती है। विस्तृत नियमों शर्तों के लिए देखिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की वेबसाइट www.nhai.gov.in। आवेदन 19 अगस्त 2026 तक भेजे जा सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक का मानव संसाधन प्रभाग द्वारका नई दिल्ली आमंत्रित कर रहा है स्थानीय बैंक अधिकारी LBO के 545 पदों के लिए आवेदन। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। अधिक जानकारी तथा ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए बैंक की वेबसाइट पर रिक्रूटमेंट के अंतर्गत ये लिंक देखिए pnb.bank.in/recruitments। अंतिम तिथि रहेगी 9 अगस्त 2026। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड यंग प्रोफेशनल लीगल के पद के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। विस्तृत पात्रता नियम और शर्तों के लिए देखिए नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट www.nmrcnoida.com। इस वेबसाइट पर जाकर आप करियर टैब के तहत आवश्यक जानकारी को देख सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार अपने आवेदन उचित माध्यम से इस प्रकार भेजें कि वे 14 अगस्त 2026 को साय 6 बजे तक कार्यालय के पते पर पहुंच जाएं। रेल मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इरकॉन नेशनल लिमिटेड में प्रबंधक विधि के 4 पद अनुबंध के आधार पर भरे जाने हैं और इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। अधिकतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। विस्तृत विज्ञापन और रूपरेखा के लिए देखिए वेबसाइट www.ircon.org।

0: energie. परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन स्वायत्त निकाय टाटा मेमोरियल सेंटर में इन पदों को भरे जाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। चिकित्सा अधिकारी जी एनेस्थीसियोलॉजी एक पद अनारक्षित, चिकित्सा अधिकारी एफ इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी एक पद, चिकित्सा अधिकारी ई इंटेंसिविस्ट यानी गहन चिकित्सा एक पद, चिकित्सा अधिकारी ई मेडिकल ऑन्कोलॉजी सॉलिड ट्यूमर एक पद, चिकित्सा अधिकारी ई नाभिकीय औषधि एक पद, चिकित्सा अधिकारी ई विकृति विज्ञान, चिकित्सा अधिकारी ई सर्जिकल ऑन्कोलॉजी प्रभारी अधिकारी डिस्पेंसरी एक पद जो EWS वर्ग के लिए आरक्षित है, सहायक आहार विशेषज्ञ खाद्य सेवा एक पद अनारक्षित और सहायक आहार विशेषज्ञ खाद्य सेवा एक पद, ये पद भी EWS वर्ग के लिए आरक्षित है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 10 अगस्त 2026 शाम 5:30 बजे तक है। अधिक जानकारी के लिए देखिए टाटा मेमोरियल सेंटर की वेबसाइट tmc.gov.in। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, विकास आयुक्त का कार्यालय, जयपुर विशेष आर्थिक क्षेत्र आमंत्रित कर रहा है निवारक अधिकारी समूह ख के एक पद के लिए आवेदन। इस संबंध में विज्ञापन पहले भी प्रकाशित हो चुका है और अब आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ाई जा रही है। रोजगार समाचार पत्र 1 से 7 अगस्त 2026 में प्रकाशन के बाद 45 दिन और आप इस पर आवेदन कर सकते हैं। नियम और शर्तों के लिए देखिए वेबसाइट www.jaipursez.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
2: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
3: नमस्कार। स्टूडियो घड़ी में 4:30 बजे हैं और ये समय है आपकी अपनी न्यूज मैगजीन परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारियां जिनका आपसे है सरोकार। श्रोतावाधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नज़र और उन विशिष्ट व्यक्तित्व को भी हम करेंगे याद जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिवस। श्रोता परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूँ अतहर सईद और मेरे साथ मेरी सहयोगी सायरा मुजतबा। सायरा, आपको भी मेरा नमस्कार, आदाब।
4: Adab Athar, and a very, very warm welcome to all our listeners. Namaskar, Adab. Welcome to this very, very fresh episode of Parikrama. And fresh is liye because, of course, it's the beginning of the week. It's also the first Monday of Sawan. Toh Sawan ka pehla somvar bhi hai. And after a long, long time, I think Athar and I, we are doing the show together.
3: Bilkul, aur mujhe lagta hai ki Sawan ke pehle somvar ki tarah, chunki aaj bada shubh din hai. Toh aaj hamara aur aapka jo is ank mein jo मुलाकात है वो भी शुभ होगी।
4: बेशक। सो लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस।
3: बिल्कुल सायरा, विपक्ष के कई मुद्दों पर विरोध के कारण बाधित लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित।
4: बीजेपी कैंडिडेट सत्येंद्र भाई पटेल विंस मंचलपुर असेंबली बाय पोल इन गुजरात, काउंटिंग ऑफ वोट्स फॉर बाय इलेक्शंस इन असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज ऑफ बिहार एंड मध्य प्रदेश ऑन द वे।
3: दिल्ली की एक अदालत ने कुछ महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह को बरी किया।
4: इंडिया अचीव्स ओवर 5 लाख आधार वेरिफाइड ऑर्गन डोनेशन प्लेजेस, स्टैंड्स थर्ड ग्लोबली इन नंबर ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स।
3: अमेरिका और ईरान के बीच आज अगले दौर की शांति वार्ता संभावित।
4: And weather department forecast heavy to very heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Bihar, sub-Himalayan West Bengal and Sikkim for today. And Athar, Hasbe Dastur, hum log start karenge parikrama with our special segment Dateline India. And today is even more special because we are not going to talk about any international day.

0: or some national day. You know, it's a bit different topic because I think that's the need of the hour.
1: कहीं ना कहीं हमारे जीवन शैली से जुड़ा आज का हमारा टॉपिक है जो कि कहीं ना कहीं हमें फायदा पहुंचाने वाला है. तो श्रोताओं से अनुरोध है कि वो बहुत ध्यान से आज के इस विषय पर हमारी चर्चा को सुने और उसमें जो सकारात्मक हो, जो बेहतर हो, वो उसको अपनाने की, अपनी जीवन शैली में शामिल करने की कोशिश करें.
0: Yes, the topic is the art of making space, which in Japanese there's one word called Yutori. As always, we are here with conversations that make your day a little brighter and maybe a little lighter as well.
1: बिल्कुल सायरा, आजकल हम हर समय भाग दौड़ में लगे रहते हैं, इधर से उधर भागते रहते हैं. एक ज़माना था कि हम बैठकर खाना खाया करते थे, ज़माने ने तरक्की की, हम डाइनिंग टेबल पर आ गए और तरक्की की तो हम और बुफे सिस्टम हमने अपना लिया और ज़्यादा तरक्की की. तो आज हाल ये है कि भागते जाते हैं, एक हाथ में फाउंटेन ग्लास है, दूसरे हाथ में हमारे बर्गर होता है, हम दौड़ते जाते हैं, भागते जाते हैं. डेडलाइन पूरी करना हमारे जहन में होता है, लंच करते हुए मैसेज का जवाब देना हमारी प्रायोरिटी होती है, सोने से पहले ईमेल चेक करना, या फिर ऐसा महसूस होता है इन सबको करने के बाद कि ये भी काफ़ी नहीं है. ऐसा लगता है जैसे व्यस्त रहना एक स्टेटस सिंबल बन गया है, खाली रहना स्टेटस सिंबल नहीं है, जबकि खाली रहना भी कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद होगा, जिसकी हम बात आगे करेंगे. अगर आप भाग दौड़ नहीं कर रहे हैं तो लोग ये मान लेते हैं कि आप प्रोडक्टिव नहीं हैं, आप एक्टिव नहीं हैं, या यूं कहें कि आप सफल नहीं हैं.
0: यस, दैट्स वेरी राइट अथर. इन फैक्ट नाउ पीपल आर रियलाइजिंग दैट स्टिलनेस इज एक्चुअली अ लग्जरी, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यू नो टेक लाइफ स्लो एट टाइम्स. एंड ऑफ कोर्स भाग दौड़ तो अपनी जगह रहेगी, बट इन द ब्लिंक blink of an eye the whole life will just pass through, and then when you are probably in the winters of your life you will wonder ki wo din aakhir gaye kahan. Tab aapse koi nahi puchega ki aapne kya achievement di apni company ko, apni organization ko, aap bas puchenge ki maine kya hasil kiya. And such bataye so nothing, only these are very shallow things. Of course at the moment they appear very important, but when we gain that maturity and when we step back from the busy life, then we realize that the real luxury is to spend good moments with yourself and with your loved ones, with your friends, making time for them. That is the real luxury of life. And in fact, जैसे आपने कहा कि अगर आप थोड़ा सा खाली रहते हैं तो लोग आपको जो है प्रोडक्टिव नहीं समझते. एंड दिस अ वेरी रिमार्केबल शिफ्ट ऑल्सो दैट हैज हैपेंड. आप पूछिए किसी से हाउ आर यू, तो लोगों का बहुत कम जवाब होता है अबाउट देयर फीलिंग्स. जैसे अरे मैं बहुत बिजी हूँ. सो यू हैव सीन यू नो द आंसर हैज चेंज्ड सो मच ओवर द इयर्स. नोबडी टॉक्स अबाउट देयर फीलिंग्स एनीमोर, दे जस्ट टेल यू हाउ बिजी दे आर. बट व्हाट हैव बीन, वी हैव बीन लुकिंग एट प्रोडक्टिविटी द रॉन्ग वे. टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट अ ब्यूटिफुल जापानीज फिलॉसफी कॉल्ड यूतोरी, अ सिंपल आइडिया दैट encourages us to create space in our lives instead of constantly filling every minute.
1: तो आखिर यूतोरी का मतलब क्या है सायरा?
0: वेल आथर, इट ट्रांसलेट्स टू स्पेस, एल्बो रूम, लीवे, रूम टू ब्रीद, रिजर्व, मार्जिन और इवन टाइम टू स्पेयर. बट इट्स मच मोर देन जस्ट हैविंग फ्री टाइम. इट्स रियली अबाउट हैविंग इनफ स्पेस मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली एंड इवन फिजिकली टू लिव कंफर्टेबली विदाउट कॉन्स्टेंटली फीलिंग रश्ड. यू वॉन्ट इमेजिन, लेट मी जस्ट शेयर अ फ्यू थिंग्स विद आवर लिसनर्स. फॉर एग्जाम्पल, देर इज समटाइम्स अ गैप ऑफ इवन वन आवर बिटवीन आर यू नो trains and between our shows. You won't believe us 1 ghante mein hi sahi hum apni gaadi mein sukoon se khamoshi se kitab ke sath ya music on karke baith jate hain. So that is how I create space for myself.
1: Us sukoon ke lamhat jo hote hain
0: ji bahut bahut zaruri
1: hai. Isko sahi hum aise bhi samajh sakte hain ki sochiye ki aapke phone ki storage jo hai wo lagbhag bhar gayi hai, apps dheeme

0: या फिर एक शेर में इसको कहूँ तो, ज़िंदगी के चंद लम्हे खुद की खातिर भी रखो, भीड़ में ज़्यादा रहे तो खुद भी गुम हो जाओगे।
1: बिल्कुल, क्या बात है अथर्व, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू जस्ट स्टेप बैक फ्रॉम द क्राउड, स्टेप बैक फ्रॉम द रश एंड एन्जॉय द स्टिलनेस। एंड वी ऑफ कोर्स हर्ड ऑल, वी ऑल हर्ड द फ्रेज दैट डू मोर इन लेस टाइम, बट यू थोड़ी जेंटली आस्क अनदर क्वेश्चन, व्हाट इफ डूइंग लेस एक्चुअली हेल्प्स अस डू बेटर? व्हेन वी आर कॉन्स्टेंटली रेसिंग फ्रॉम वन टास्क टू अनदर, आवर फोकस ड्रॉप्स, स्ट्रेस राइजेस एंड इवन स्मॉल डिसीजंस, यू नो, दे बिकम एग्जॉस्टिंग। नॉट जस्ट स्मॉल डिसीजंस, स्मॉल टास्क become exhausting, and I've seen that, you know, especially you know, I've seen mothers who are probably so overwhelmed with work, they are, you know, unko professional life bhi dekhna hai, bacche bhi dekhna hai, so sometimes I see, you know, some of my friends who don't really bikhar jate hain, they don't talk about their feelings, they don't talk about their children's feelings, to wo bas ek robot ki tarah task pure karna hote hain, bachcho ko tumhe khana kha lo, tum homework kar lo, tum ye kar lo, lekin chand lamhe baith ke apne spouse ke sath, apne bachchon sath hum log baith ke baatein karna bhul gaye hain। That is very important।
0: बिल्कुल, कई बार ऐसा नहीं होता कि हम चीज़ रखते हैं और भूल जाते हैं, ये फीलिंग्स आती है ना,
1: right.
0: ये होता है हमारे साथ। और कई बार क्या कभी आप किसी कमरे में गए हों और भूल गए हों कि वहाँ क्यों गए थे?
1: yes.
0: और बहुत ज़्यादा सोच विचार से भरे दिमाग का हाल कुछ ऐसा ही आजकल के ज़माने में होता है। और यूतोरी सायरा हमें याद दिलाता है कि बीच बीच में रुकना, समय की बर्बादी नहीं मानना चाहिए, बल्कि ये एक बेहतर सोच विचार के लिए एक तरह का डिपॉजिट है, निवेश है, कि अगर आप थोड़ा सा ठहरेंगे तो आपका जो दिमाग है वो एक बार फिर से एक्टिव हो जाएगा, उन तमाम तर चीज़ों को कलेक्ट करेगा और आपको एक तरह से कूल जिंदगी की तरफ आगे ले जाएगा।
1: That's so true, Athar, and that's why we say that sometimes the gap between two tasks is where our best ideas appear.
0: बिल्कुल, और यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे, जरूर सोच रहे होंगे कि असल में यूतोरी का अभ्यास हम करें तो कैसे करें? तो इसके लिए पूरी जीवन शैली बदलने की जरूरत नहीं है सायरा, इसकी शुरुआत महज छोटे छोटे बदलावों से भी हो सकती है।
1: That's right, instead of just planning every single minute, just leave a little room for unexpected moments, let life surprise you.
0: बिल्कुल सही कहा, खाना खाते समय फोन पर स्क्रॉल करने के बजाय किसी बगैर रुकावट के अपने खाने का मजा लें, या फिर उस समय टीवी देखने से गुरेज करें। और कहा तो ये जाता है कि जब खाना खाएं तो शांत भाव से खाएं, ईश्वर को याद करते हुए खाएं, उसका धन्यवाद करते हुए खाएं। इससे होगा क्या भाई? इससे होगा ये कि आपको मानसिक शांति मिलेगी और कहीं ना कहीं मानसिक विकास भी होगा सायरा।
1: यस एब्सोल्युटली, क्योंकि स्पेशली मोस्ट ऑफ द पीपल दे दीस डेज दे आइदर स्क्रॉल ऑन देयर फोन व्हाइल हैविंग फूड और आर वाचिंग टीवी, बट अगर आप देखिए तो आप इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी गिजा, यू नो, योर डाइट, बट यू आर जस्ट नॉट पेइंग इट्स ड्यू रिस्पेक्ट टू दैट, और यू आर नॉट इवन पेइंग अटेंशन, तो आपकी बॉडी इज ऑल्सो लिसनिंग, यू नो, सो इट्स नॉट जस्ट दैट यू आर फीडिंग फूड, बट यू आर फीडिंग द वे यू फीड योर सेल्फ ऑल्सो। So well, instead of filling every free evening with another commitment, allow yourself an hour where absolutely nothing is planned.
0: बिल्कुल ठीक कहा। और अगर हम अलग अलग देशों की बात करें तो डेनमार्क में इसको ह्यूगो कहते हैं या फिर हुगा कहा जाता है, और इसका मतलब है कि आरामदेह और सुकून भरा माहौल बनाना और अच्छा महसूस करना। ये सायरा मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ने, अपनों के साथ खाना खाने या फिर गर्म ड्रिंक के साथ आराम करने जैसी छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेने का समय होता है। कई बार आप होते हैं परिवार के साथ, आप होते हैं शांत भाव से डिनर करते हैं, तो वो डिनर कहीं बेहतर डिनर होता है, उसमें आपस में बात करते हैं, और वहाँ पर आपका जो मेंटल स्ट्रेस है, जो मानसिक दबाव है, जो अवसाद आपके मन मस्तिष्क में होता है, वो अवसाद कहीं ना कहीं बिखर जाता है और आप खुश होते हैं।
1: That's very right. And Athar, if you remember those days when आजकल तो हर घर में इन्वर्टर आ गया है, बट वो वक्त याद करिए जब बीच बीच में गर्मियों में लाइट चली जाती थी, तो सडनली जो घर की रफ्तार होती थी वो एकदम रुक जाती थी, बट उस रफ्तार जो धीमी होती थी उसमें कितना मजा आता था। आई मीन, आई रिमेंबर एज अ चाइल्ड आई यूज टू लुक फॉरवर्ड टू द टाइम व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी, देयर वुड बी नो इलेक्ट्रिसिटी एट नाइट, एंड देन एवरीबॉडी, ऑल द फैमिली
0: में होती थी, कहानियां होती थी, शांत भाव से सो जाया करते थे, तो उस जमाने में भी लोग बड़े शांत भाव से जीवन जीते थे। यही जीवन शैली को कहीं ना कहीं हमें अपने जीवन में शामिल करने की जरूरत है। प्रगति के मार्ग पर हम आगे बढ़ें जरूर, लेकिन शांति के साथ, और शांति के साथ जब आगे बढ़ेंगे तो वो प्रगति कहीं ना कहीं सकारात्मक रास्ते पर हमें ले जाएगी। और अब एक उद्घोषणा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112331 0481 और दूसरा नंबर है 0112371 7117। और इसके अलावा एक और नंबर है 0112371 7106 और 0112331 4444। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। इस पर भी प्रश्न भेजे जा सकते हैं। आप अपने सवाल हैशटैग आस्क EIR के साथ एक्स पर भी पोस्ट कर सकते हैं। और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं की ओर जाने का और उनसे ये जानने का कि क्या कुछ विशेष है उनके पास। और इस क्रम में पहले हम रुख करेंगे तमिलनाडु का। सायरा,
1: दैट्स राइट, वी आर स्टार्टिंग आवर जर्नी ऑफ परिक्रमा from Tamil Nadu. Well, Tamil Nadu is observing Adi Peruku today. It's a traditional festival dedicated to honoring water resources and expressing gratitude to nature. We have more from our correspondent.

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में मशहूर स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक उत्कलमणि पंडित गोप बंधु दास की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके संबंध में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
1: गोपबंधु दास, पॉपुलरली नोन एज उत्कलमणि, वॉज बोर्न ऑन 9th October 1877 इन पुरी। ही डेडिकेटेड इज लाइफ टू द फ्रीडम मूवमेंट, एजुकेशन, सोशल सर्विस, द वेलफेयर ऑफ द पोअर एंड अंडर प्रिविलेज। इंस्पायर्ड बाई गांधीजी, गोपबंधु ऑल्सो लेड रिलीफ एंड ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स ड्यूरिंग फ्लड्स, फेमिन्स एंड अदर नेचुरल कैलामिटीज। टॉकिंग टू आकाशवाणी न्यूज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपराजिता सरंगी सेड, गोपबंधु दास इज अ लेजेंडरी फिगर ऑफ ओडिशा।
2: दिस वॉज इंडीड अ ग्रेट मोमेंट फॉर अस, दैट ऑल ऑफ अस हैड बीन वेटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर इवेंट। उत्कल गोपबंधु दास इज अ लेजेंडरी फिगर ऑफ ओडिशा। ही डिड कमेंडेबल वर्क एज अ जर्नलिस्ट, एज अ पोएट, एज अ फ्रीडम फाइटर। ही डिड मार्वेलस वर्क फॉर द पीपल ऑफ ओडिशा एंड बियॉन्ड। ओडिशा ओज अ लॉट टू हिम।
1: ही वाज आल्सो अ प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट एंड फाउंडेड द ओडिया न्यूज़पेपर द समाज इन 1919। द स्टैच्यू वाज इंस्टॉल्ड इन दिल्ली बाय द लोक सेवक मंडल, एन ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय लाला लाजपत राय। द अनवेलिंग ऑफ हिज स्टैच्यू इन द नेशनल कैपिटल इज अ सिग्निफिकेंट ट्रिब्यूट टू हिज कंट्रीब्यूशन टू द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, एजुकेशन and nation building. Vishal Das for Parikrama.
3: And Athar, as we had mentioned that aaj to Sawan ka pehla Somvar hai, and we all know that many people they go to mandirs and jal chadhate hain Shivling pe.

और सबसे ज्यादा तो धूम आज होती है उज्जैन में. सो यस, इन उज्जैन द सिटी ऑफ महाकाल इट्स डेक्ड अप टुडे वेटिंग फॉर द पैलेंक्विन. द फर्स्ट प्रोसेशन ऑफ द सावन मंथ बिगिन्स टुडे फ्रॉम द वर्ल्ड फेमस महाकालेश्वर टेम्पल इन उज्जैन. एंड ड्यूरिंग दिस होल पीरियड लॉर्ड महाकाल सिट्स इन अ पैलेंक्विन इन हिज चंद्रामौलेश्वर फॉर्म. लेट्स हियर मोर फ्रॉम आवर कॉरेस्पॉन्डेंट.

0: मध्य प्रदेश के उज्जैन के बाद अब हम रुख करेंगे हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश में सीमावर्ती जिला किन्नौर के शिपकी लॉ से भारत और चीन के बीच पिछले 6 वर्षों से बंद पड़े आपसी व्यापार को फिर शुरू कर दिया गया है। गौरतलब है कि प्राचीन समय से चला आ रहा ये व्यापार वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के कारण बंद कर दिया गया था, जब पुनः शुरू हो गया है।
1: हिमाचल प्रदेश में जिला किन्नौर के शिपकिला से भारत और चीन के बीच आपसी व्यापार 6 वर्षों के अंतराल के बाद शुरू हो गया है। हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने 1 अगस्त को पूह उपमंडल की सीमावर्ती पंचायत नामग्या में सीमा पार व्यापार करने के लिए 16 व्यापारियों के एक दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर जगत सिंह नेगी ने कहा कि शिपकिला से सीमा पार व्यापार शुरू होने से सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
2: काफी लंबे समय के बाद ये शुरू हुआ है, तो इसलिए अभी वहाँ जाकर हमारे ट्रेडर्स देखेंगे कि भविष्य में किस किस्म के उत्पाद हमें वहाँ लेके जाना है और क्या उत्पाद हमें वहाँ से प्राप्त हो सकता है।
1: सीमा पार व्यापार के एक बार फिर शुरू होने से क्षेत्र के लोगों और व्यापारियों में उत्साह का माहौल है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि इससे दोनों तरफ के लोगों को फायदा पहुंचेगा, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और स्थानीय उत्पादों का बाजार भी विस्तृत होगा।
3: रोजगार भी खुल गया, इससे हमारा पब्लिक के लिए बहुत फायदा है, थोड़ा इनकम बढ़ जाता है, वो लोग जो नीचे सामान उनको मिल जाता है, हमारे को जो जरूरत है वो भी मिल जाता है। इससे हमारा मतलब दोनों परे वाला गांव और इधर वाला गांव को भी काफी सुविधा है सर।
1: निश्चित तौर पर इस प्राचीन व्यापार के एक बार फिर शुरू होने से क्षेत्र के लोगों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और उनकी आर्थिकी भी मजबूत होगी। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी शिमला से मैं रितेश कपूर।
0: और अब चलते हैं गुजरात के भुज में। क्रांति गुरु श्यामजी कृष्ण वर्मा कच्छ यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने खाद्य उद्योग में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए शुद्ध स्टीवियोल ग्लाइकोसाइड आधारित प्राकृतिक स्वीटनर के फार्मुलेशन के लिए भारतीय पेटेंट प्राप्त किया है। चीनी के इस स्वस्थ और सुरक्षित स्वदेशी विकल्प से आत्मनिर्भर भारत के सपने को नई मजबूती मिलेगी। आइए सुनते हैं भुज से हमारे संवाददाता परेश मारू की ये रिपोर्ट।
4: यह पेटेंट स्टीविया रेबाउनिया नाम बर्टोनी पौधे की पत्तियों से प्राप्त स्टीवियोल ग्लाइकोसाइड्स को अत्याधुनिक शुद्ध रूप में प्रस्तुत करता है। इस फॉर्मुलेशन में शुद्ध स्टीवियोल ग्लाइकोसाइड के जलीय अर्क और अन्य सक्रिय तत्वों का अनूठा संयोजन शामिल है, जो इसे चीनी का एक बेहतरीन और सुरक्षित विकल्प बनाता है। आज के समय में मधुमेह, मोटापा और हाई ब्लड प्रेशर जैसी जीवन शैलियों से जुड़ी बीमारियां तेजी से बढ़ रही है, जबकि कृत्रिम स्वीटनर्स के दुष्प्रभावों पर लगातार वैज्ञानिक चिंताएं जताई जाती है। यह उत्पाद रक्त में शुगर को स्तर को बढ़ाए बिना मिठास प्रदान करता है, जो विशेष रूप से मधुमेह के मरीजों के लिए एक वरदान साबित होगा। वैश्विक प्राकृतिक स्वीटनर बाजार का आकार वर्तमान में लगभग $31.5 अरब होने का अनुमान है, जो 2032 तक बढ़कर $48.4 अरब तक पहुँच सकता है। इसके अलावा भारत में स्टीविया का बाजार तेजी से विस्तार कर रहा है। यह पेटेंट वर्तमान में परीक्षण के चरण में है। इसे अंतिम मंजूरी मिलने के बाद इस तकनीक का व्यवसायिक उत्पादन शुरू किया जा सकेगा। यह उपलब्धि देश को स्वास्थ्य और विज्ञान के क्षेत्र में स्वावलंबी बनाने की दिशा में आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूती प्रदान करती है। परिक्रमा के लिए भुज से परेश मारू।
0: और अब चलते हैं खेल के मैदान और जानते हैं वहां की गतिविधियां।

0: दर्द प्रूव टू बी वेरी सक्सेसफुल स्पेशली टुनटुन्स अफसाना लिख रही हूँ.
1: अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का. तो ये गाना सुनने से पहले हम कुछ और बात कर लें. शकील बदायूनी की, शकील बदायूनी कोई ख़ास बात यह है कि 3 बार उनको फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया और एक से बढ़कर एक फिल्में हैं. दर्द की बात आपने की, चौदहवीं का चांद है, 20 साल बाद एक फिल्म है, सन ऑफ इंडिया है, मेला, दुलारी, बैजू बावरा, क्या ज़बरदस्त फिल्म है जिसमें उनके गीत एक से बढ़कर एक है, मदर इंडिया है ना, कल्ट मूवी, कोहिनूर, दिलीप कुमार साहब की एक कामयाब फिल्म, और इसके अलावा मुगले आज़म को कौन भूल सकता है, साहिब बीवी गुलाम, और इसके अलावा गंगा जमुना, किस किस की बात करें, सारा एक गीत सुन लेते हैं.
0: करते एक गीत सुनते हैं, सुहानी रात ढल चुकी, जो कि आई थिंक रफी इज एट हिज बेस्ट इन दिस सॉन्ग.
1: बिल्कुल सही कहा.

0: बेहद खूबसूरत गीत। बढ़ते हैं आगे, लोकप्रिय संगीतकार जयदेव की बात करते हैं जिनका आज है जन्मदिवस। उन्हें सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया। सायरा, कुछ आप कहना चाहती हैं जयदेव साहब के संगीत के बारे में?
1: उनके संगीत के बारे में क्या कह रहे हैं, यू नो द सॉन्ग्स ऑफ फिल्म्स लाइक हम दोनों, घर ऑन द गमन, दे स्टिल हॉन्ट अस। तो विदाउट मच अडू लेट्स लिसन टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग।

0: इसीलिए शख्स परेशान है क्योंकि हर कोई दौड़ भाग रहा है, तो इसलिए आज जो हमारा डेडलाइन टॉपिक था यूथोरी, वो जरूर अपनाए अपनी जिंदगी में।
1: बिल्कुल ठीक कहा श्रोताब, समय है चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दी जाए तो हर सही तो सायरा मुश्तबा को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करने की। नमस्कार,
0: नमस्कार।

0: भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मंजलपुर विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस के भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हराया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: मांजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की सभी 20 दौर की मतगणना पूरी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल उर्फ सतीश पटेल को कुल 55,481 मत मिले हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार भीखाभाई रबारी को 24,851 मत प्राप्त हुए हैं। भाजपा का गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर मुख्य मुकाबला इन्हीं दो उम्मीदवारों के बीच में था। वडोदरा नगर निगम के पूर्व पार्षद रह चुके सतीश पटेल ने लोगों को धन्यवाद दिया और कहा की जनता ने फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताया है। पूर्व वरिष्ठ भाजपा विधायक योगेश पटेल के निधन के कारण रिक्त हुई इस सीट पर शुक्रवार को लगभग 37% मतदान दर्ज किया गया था। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा सीट जीत ली है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक वोटों से हराया। उधर बिहार के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में भी उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है, जहां जनसुराज पार्टी उम्मीदवार प्रशांत किशोर भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा से 31वें चरण की मतगणना के बाद लगभग 19,000 वोटों से आगे हैं। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करना है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 पेश किया। इस दौरान विपक्षी सदस्य नीट परीक्षा के मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर सदन में हंगामा करने लगे। गतिरोध जारी रहने के कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया और कई सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया है कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की

रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और नागरिक विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में सशस्त्र बल मुख्यालय नागरिक सेवा दिवस समारोह को संबोधित किया। श्री सिंह ने कहा कि इससे सुरक्षा और तकनीकी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान होगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी उस समय हुई जब बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे प्रदर्शन में शामिल थे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद द्वारा कल तक जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदर्शन में 80 लोग मारे गए हैं। घरेलू शेयर बाजार का सेंसेक्स लगातार चौथे दिन बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 544 अंक बढ़कर 78,639 पर, जबकि निफ्टी 391 अंक की बढ़त के साथ 24,774 पर बंद हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது டெல்லி அஞ்சல்.
1: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण में आपका स्वागत है। मैं प्राची प्रिया। श्रोताओं, आज देश 16वां भारतीय अंगदान दिवस मना रहा है। इस अवसर पर केंद्र सरकार ने अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए जुग जुग जियो अभियान की शुरुआत की है। साथ ही अंग और ऊतक दान तथा प्रत्यारोपण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सरल और डिजिटल बनाने के उद्देश्य से ई प्रत्यारोपण नामक राष्ट्रीय डिजिटल मंच भी लॉन्च किया गया है। इसी वर्ष जून के महीने में भारत ने अंगदान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। अब देश में अंगदान का संकल्प लेने वाले लोगों की संख्या 5 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। आज के विश्लेषण में हम जानेंगे कि भारत में अंगदान की व्यवस्था किस तरह विकसित हो रही है, हाल के वर्षों में क्या परिवर्तन आए हैं और जुग जुग जियो अभियान तथा ई प्रत्यारोपण जैसी नई पहलें इस व्यवस्था को किस प्रकार और मजबूत बना सकती है। श्रोताओं, भारत में हर वर्ष 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। ये वर्ष 1994 में हुए पहले सफल मृत अंगदाता हृदय प्रत्यारोपण की उपलब्धि को याद करने का अवसर है। साथ ही ये दिवस लोगों को अंगदान के महत्व के प्रति जागरूक करने और इससे जुड़े भ्रम दूर करने का भी संदेश देता है। अंगदान का नाम सुनते ही कई लोगों के मन में अनेक सवाल आते हैं। कौन अंगदान कर सकता है? कौन कौन से अंग दान किए जा सकते हैं? क्या अंगदान केवल मृत्यु के बाद ही संभव है? ऐसे सवाल आपके भी मन में आए ये स्वाभाविक है। इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट।
3: अंगदान का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा अपने स्वस्थ अंगों या ऊतकों को ऐसे मरीज के उपचार के लिए दान करना जिसके अंग ठीक से काम नहीं कर रहे हों। अंगदान मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। पहला, जीवित अंगदान, जिसमें एक स्वस्थ व्यक्ति अपनी एक किडनी या लीवर का कुछ हिस्सा दान कर सकता है। दूसरा, मृत अंगदान, जिसमें किसी व्यक्ति की ब्रेन स्टेम डेथ घोषित होने के बाद उसके परिवार की सहमति से उसके अंग और ऊतक जरूरतमंद मरीजों को प्रत्यारोपित किए जा सकते हैं। अक्सर ब्रेन स्टेम डेथ को लेकर भी लोगों के मन में भ्रम रहता है। सरल शब्दों में कहें तो ये ऐसी स्थिति होती है जब मस्तिष्क हमेशा के लिए काम करना बंद कर देता है और चिकित्सीय दृष्टि से व्यक्ति को जीवित नहीं बचाया जा सकता। ऐसे मामलों में निर्धारित कानूनी और चिकित्सीय प्रक्रिया का पालन करते हुए अंगदान संभव होता है। भारत में पिछले कुछ वर्षों में अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। वर्ष 2013 की तुलना में आज देश में अंग प्रत्यारोपण की संख्या लगभग 4 गुना बढ़कर करीब 20,000 प्रतिवर्ष पहुंच गई है। इसके साथ ही देश में अंगदान के लिए संकल्प लेने वालों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। फिर भी अंगों की मांग और उपलब्धता के बीच अभी भी बड़ा अंतर बना हुआ है। यही कारण है कि अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना और लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना आज पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
2: श्रोताओं, अंगदान को लेकर लोगों के मन में कई तरह के प्रश्न होते हैं। इन सवालों पर आकाशवाणी समाचार

0: शनिवार के कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में चर्चा के दौरान राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार ने क्या बताया, आइए सुनते हैं।
1: जो जीवित रहते हुए अंगदान हो सकते हैं उसमें किडनी का दान है, हमारे पास दो किडनी होती हैं, तो एक किडनी हम जीवित रहते दान कर सकते हैं। लिवर भी हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जिसका एक हिस्सा हम जीवित रहते दान कर सकते हैं। लिवर में ये है कि लिवर कुछ दिनों बाद वापस ग्रो कर जाता है, तो लिवर दोबारा आपका पूरा रिकवर हो जाता है जो आपने दान किया है। मृत्यु उपरांत जो दान हो सकते हैं तो उसमें जो अंग है, छह तरह के अंग हैं जो कि जीवनदायी अंग हैं, उनके बिना जीवन संभव नहीं है। तो किडनी और लिवर मृत्यु उपरांत भी दान हो सकते हैं। उसके अलावा हार्ट है और हमारे लंग्स हैं, दोनों फेफड़े, इंटेस्टाइन और पैनक्रियाज होता है। तो छह तरह के अंग हो गए और इसमें से दो जुड़े हुए हैं, जैसे दो किडनी है वो अलग अलग मरीजों को लग सकती है और दो फेफड़े भी अलग अलग मरीजों को लग सकते हैं। तो टोटल 8 व्यक्तियों का जीवन इससे बचाया जा सकता है। और इसके अलावा मृत्यु उपरांत हम अंगों के अलावा टिश्यूज का भी दान कर सकते हैं, जिसमें कि कॉर्निया है जो सबसे कॉमन दान किया जाता है, आई भी बोलते हैं जिसको कॉमन भाषा में, और स्किन का, त्वचा का दान आजकल बहुत कॉमन हो गया है और जिससे जो जले हुए व्यक्ति हैं उनका जीवन बचाना संभव हो पा रहा है, बहुत ज्यादा जो जले हुए लोग होते हैं, और हड्डियों का दान भी। ये तीनों कॉमन दान है। उसके अलावा 70-75 तरह के टिश्यूज हैं जिनको दान किया जा सकता है।
0: श्रोताओं, इसके साथ ही लोगों के मन में एक और महत्वपूर्ण सवाल भी उठता है, अंगदान की पूरी प्रक्रिया कैसे होती है, ये कैसे सुनिश्चित किया जाता है कि अंगों का आवंटन निष्पक्ष, पारदर्शी और जरूरतमंद मरीजों तक सही समय पर हो। अंगदान की प्रक्रिया और इसमें अपनाई जाने वाली पारदर्शी व्यवस्था के बारे में डॉक्टर अनिल कुमार ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
1: जो दान किया जाता है उसके लिए आप एक शपथ ले सकते हैं जिसकी प्रक्रिया बहुत सरल है। भारत सरकार की वेबसाइट है noto.abdm.gov.in, इस पर जाकर अपना आधार नंबर डालकर और आप अपना OTP डालकर और वेरीफाई करके फिर फॉर्म खुल जाता है। आप उसको भर के प्रतिज्ञा ले सकते हैं कि मैं मृत्यु उपरांत अंग दान ये करना चाहता हूँ। तो वो आपके अंग एक कंप्यूटराइज सिस्टम के जरिए, भारत सरकार के संस्थाओं के जरिए, वो जरूरतमंद जो वेटिंग लिस्ट में है उन्हीं को दिए जाते हैं। इसमें कोई भी दुरुपयोग की कोई संभावना नहीं है। ये अंग जो है एक वेटिंग लिस्ट के आधार पर दिए जाते हैं, जो मरीज वेटिंग लिस्ट में जिनका नाम है। जो जिंदा व्यक्ति दान देना चाहता है तो उसमें दो तरह से दान होता है, या तो आप अपने नजदीक के रिश्तेदार को दान करते हैं जिसमें आपके परिवार का कोई व्यक्ति अगर बीमार है, जैसे पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, वाइफ है, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड चिल्ड्रन या भाई बहन है, तो इनको आप नियर रिलेशन में बोलते हैं। अगर इसके अलावा किसी को आप दान देना चाहते हैं जिंदा जो ऑर्गन है, तो उसके लिए एक अथोराइजेशन कमेटी होती है जो कि इसको अप्रूव करती है, तो उसमें आप दे सकते हैं। अगर उनको आपके कोई बीच में लेन देन का मामला नहीं होना चाहिए। और शपथ लेने का मतलब ये नहीं है कि आपके अंग निकाल लिए ही जाएंगे, उस समय भी आपका जो परिवार है, परिवार के लोग हैं, वो हाँ भरेंगे तो ही आपका अंग दान संभव है।
0: श्रोताओं, किसी भी देश में अंगदान की व्यवस्था केवल अस्पतालों या डॉक्टर्स तक सीमित नहीं होती। इसकी सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि लोगों में इसके प्रति कितनी जागरूकता है, व्यवस्था कितनी पारदर्शी है और जरूरतमंद मरीजों तक अंग समय पर कितनी प्रभावी ढंग से पहुंच पाते हैं। भारत में पिछले कुछ वर्षों में अंगदान को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की गई हैं। आइए इस अगली रिपोर्ट में इन्हीं प्रयासों के बारे में विस्तार से जानते हैं।
2: आज भी देश में अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता और उपलब्ध अंगदाताओं की संख्या के बीच बड़ा अंतर है। हजारों मरीज किडनी, लीवर, हृदय और अन्य जीवन रक्षक अंगों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे में मृत अंगदान को बढ़ावा देना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। एक मृत अंगदाता अपने अंगों के माध्यम से 8 लोगों को नया जीवन दे सकता है, जबकि ऊतक दान से कई अन्य लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। अंगदान की दिशा में सरकार लगातार जागरूकता अभियान चला रही है। वर्ष 2025 में अंगदान जीवन संजीवनी अभियान शुरू किया गया था। इसके बाद इस वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में भी अंगदान के महत्व का उल्लेख करते हुए लोगों से इस विषय पर परिवार के साथ चर्चा करने और जागरूकता बढ़ाने की अपील की थी। अब सोल में भारतीय अंगदान दिवस के अवसर पर सरकार ने वर्ष भर चलने वाले जुग जुग जियो अभियान की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य अंगदाताओं और उनके परिवारों को सम्मान देना, समाज में अंगदान को लेकर मौजूद झिझक और भ्रांतियों को दूर करना तथा गांवों से लेकर शहर

शहरों तक अधिक से अधिक लोगों को अंगदान के लिए प्रेरित करना है। इसी अवसर पर ई प्रत्यारोपण नामक राष्ट्रीय डिजिटल मंच भी शुरू किया गया। ये अंग और ऊतक दान तथा प्रत्यारोपण से जुड़ी पूरी प्रक्रिया को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये मंच राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के माध्यम से संचालित होगा। इसके जरिए अंगदाताओं का सुरक्षित डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, अंगों के मिलान और आवंटन की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाया जाएगा तथा राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ बेहतर

0: क्षमता रखता है, लेकिन ये भी तभी संभव है जब समाज भी इसमें भागीदार बने। इसलिए जरूरी है कि हम अंगदान के बारे में सही जानकारी प्राप्त करें, अपने परिवार के साथ इस विषय पर खुलकर चर्चा करें और यदि संभव हो तो अंगदान का संकल्प लें। श्रोताओं, आज के विश्लेषण में बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया हमारे सहयोगी अनिकेत ने, प्रस्तुति सहायक अरुणदीप सिंह।
1: इयम् आकाशवाणी। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। लोकसभाया सर्वोच्च न्यायालयस्य न्यायाधीशानां संख्यां 33 37 यावत् वर्धयितुं विधेयकः पारितंगतः। राज्यसभाया च लघु मध्यम उद्योग विकास विधेयकः स्वीकृतः। उपनिर्वाचने गुजरातस्य मंजलपुर आसनं भाजपेति दलेन रक्षितं। मध्यप्रदेशस्य दती आसने कांग्रेस दलस्य विजयः। बिहारस्य बांकीपुर आसने च जनसुराज दलस्य प्रशांत किशोरः अग्रेसरः। दिल्ली न्यायालयेन महिला मल्ल युद्ध क्रीडिकानां यौन उत्पीड़न प्रकरणे ब्रजभूषण शरण सिंहः दोषमुक्तः कृतः। भारते 5 लक्षाधिकैः जनैः अंगदानस्य संकल्पः गृहीतः। अंगप्रत्यारोपण संख्यायां भारतं विश्वे तृतीयं स्थानं भजते। अपि च अमेरिका ईरान च अद्य कूटनीतिक शांति वार्तायाः अग्रिम चरणम् आयोजयिष्यतः इति संभाव्यते। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। लोकसभया सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयकः 26,2000 पारितः। अस्य विधेयकस्य उद्देश्यं सर्वोच्च न्यायालयस्य अधिनियमे 50-29 संशोधनं विधाय उच्चतम न्यायालयस्य न्यायाधीशानां संख्या 33 वर्धयित्वा 37 यावत् करणीया इत्यस्ति। अस्मिन्नेव वर्षे मई मासे राष्ट्रपति पदासीनया द्रौपदी मुर्मू इत्यनया सर्वोच्च न्यायालयस्य न्यायाधीशानां संख्या 33 इत्यतः 37 यावद् वर्धयितुं कश्चन अध्यादेशः प्रख्यापितः। केन्द्रीय विधि न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवालः विधेयकं उपस्थापितवान्। मेघवालः प्रावोचत् यत् सर्वोच्च न्यायालये प्रतिलंबितानां प्रकरणानां वर्धमान संख्यां निध्याय सहैव न्याय व्यवस्थां च दृढीकर्तुं एषः विधेयकः आनीतः। ततः परं लोकसभा श्वः प्रातः 11 यावत् स्थगिता। राज्यसभया सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यम विकास संशोधन विधेयकः 26,2000 पारितंगतः। सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यम विकास अधिनियमे 26,000 अग्रिम संशोधनम् अस्य विधेयकस्य उद्देश्यं वर्तते, येन धन परिशोधन विलम्बनस्य समाधानम् अथ च विवाद निवारण प्रक्रियायाः सरलीकरणं कर्तुं शक्येत। विधेयकस्य अनुसारं प्रत्येक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र संस्थया सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमेभ्यः क्रीत वस्तूनां सेवानां वा सर्वाणि प्रदेयकानि ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम इत्यस्मिन् मंचे एव परिशोधनीयानि भविष्यन्ति। विधेयके प्रावधानमस्ति यत् विवादस्थले यदि मध्यस्थता विफला भवेत् तर्हि मध्यस्थता समाप्तेः दिनांकात् 30 दिनाभ्यन्तरे एव पंचायत प्रक्रियायै प्रेषणम् अनिवार्यं भविष्यति। अनेनैव सह पक्ष प्रतिपक्षयोः कथनानां पूर्तितः 90 दिनाभ्यन्तरे निर्णयः दातव्यः। विधेयके एतदपि उक्तं यत् यदि किञ्चित् प्रकरणं 6-मासाधिककालात् प्रतिलम्बितमस्ति तर्हि निर्णीतराशेः न्यूनातिन्यूनं 50% भागः आपूर्तिकर्त्रे अवश्यं प्रदातव्यः। इतः परं

तेलंगानायाः हैदराबाद स्थले श्वः ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्यदलस्य सहैव सम्पत्ति पुनर्प्राप्तेः ब्रिक्स एक्सपोर्ट नेटवर्क इत्यस्य द्वितीयम् उपवेशनं प्रारप्स्यते। इति वार्ताः।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Monday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on your market-related queries. But do remember that we do not address stock or company-specific queries. You can call us on 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, listeners, do remember to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. I am Anubha Rohatki with my co-anchor Prachi Priya.
1: Namaskar, Market Mantra mein aapka abhinandan. Har somvar ki tarah, aaj bhi hum aapke prashno ko seedha karyakram mein shamil karenge. व्यापार अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी सवाल पूछने के लिए आप हमें डायल कीजिए 2331-4444 2331-0481 और 2371-7106 पर। दिल्ली से जो बाहर के श्रोता हैं वो इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें, लेकिन याद रखें श्रोताओं कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे। चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं मार्केट विशेषज्ञ शरद कोहली। शरद जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन।
2: धन्यवाद प्राची, धन्यवाद अनुभव और सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन।
1: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां।
0: थैंक यू प्राची। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस राइज, सेंसेक्स एड्स नियरली 550 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स अबव 24,700। In Asian markets, South Korea's Kospi slips over 5% and global crude oil prices tumble.
1: देश के प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में बढ़त, सेंसेक्स 550 अंक से अधिक बढ़ा, निफ्टी 24,700 पर बंद हुआ। एशियाई शेयर सूचकांकों में दक्षिण कोरिया का Kospi 5% से अधिक फिसला और दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई।
0: And before we begin the program, an important announcement. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. Prachi.
1: और श्रोताओं, आइए अब जानते हैं कि दिन के अंतराल में हमारे प्रमुख शेयर सूचकांकों ने किस तरीके का व्यवहार किया। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख शेयर सूचकांक लगातार चौथे दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 544 अंक यानी 0.7% बढ़कर 78,639 पर बंद हुआ। निफ्टी 391 अंक यानी 1.6% की बढ़त के साथ 24,774 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप सूचकांक 1.2% और स्मॉल कैप सूचकांक 1.3% बढ़ा।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस एंडेड इन पॉजिटिव जोन फॉर द फोर्थ स्ट्रेट सेशन टुडे। द सेंसेक्स रोज 544 पॉइंट्स और 0.7% टू क्लोज एट 78,639। द निफ्टी सर्ज्ड 391 पॉइंट्स और 1.6% to settle at 24,774. In the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index jumped 1.2% and the small-cap 100 index gained 1.3%.
1: Sensex में शामिल 30 में से 21 कंपनियों के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में Indigo 4.2%, Tata Consultancy Services 3.5% से अधिक और Infosys में

0: 3.5% की बढ़ोतरी हुई। वहीं खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में सनफार्मा 2%, भारती एयरटेल और मारुति 1% और टाटा स्टील में लगभग 0.5% की गिरावट आई।
1: In the sectoral indices on the BSE, 26 out of 28 sectors ended in positive zone. Among the top gainers, IT, as well as focused IT, advanced 2.7%, services rose 2% and industrials gained 1.3%. In contrast, hospitals lost 0.6% and healthcare dipped 0.2%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,837 companies advanced, shares of 1,552 companies declined and shares of 206 companies remained unchanged.
0: और अब जान लेते हैं रुपए का हाल। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज 5 पैसे मजबूत होकर 1 अमरीकी डॉलर के मुकाबले 95.34 रुपए पर बंद हुआ। शरद जी, हमने हम अगर आगे की बात ना भी करें कि किस तरीके से आगे आने वाले समय में जो बाजार है उसकी चाल रहेगी, अगर हम तथापि आज की बात करें तो आज की परिदृश्य में आप किस तरीके से देखते हैं कि जो मार्केट है वो हमें क्या संदेश देना चाह रहा है, निवेशकों को खास करके जो नए तौर पर जुड़ना चाह रहे हैं?
2: देखिए, बहुत समय बाद मार्केट ने ये जो आज लेवल पे क्लोज हुआ है जिसका अभी आप जिक्र कर रही थी, तो वो लेवल बहुत समय से इंतजार था। 24,500 निफ्टी की बात करें तो 24,500 के आसपास घूम रहा था और उससे ऊपर जाने में स्ट्रगल कर रहा था जब जब वहाँ जाता था। तो मुझे लगता है मिडिल ईस्ट से जो संदेश आया है, वॉर से ये जो एक तरह से विराम लगा है
0: जी।
2: मैं इसको ऐसे कहूंगा कि विराम की एक उम्मीद बनी है, क्योंकि पिछले 5 महीनों में ना जाने कितनी बार हम ये लगता था कि अब समझौता हो गया, अब अटैक नहीं होगा, अब होगा फिर नहीं होगा, फिर इधर से कुछ थ्रेट आता था, उधर से कोई धमकी आती थी। तो मुझे लग रहा है कि उम्मीद ये करते हैं कि थोड़ी वॉर फटीग अब जैसे आ रही है, तो अगर वॉर फटीक आ रही है तो ये वहाँ पर थोड़ा सा मामला ठंडा पड़ेगा और मार्केट इसी का इंतजार कर रहा है। मार्केट को देखिए, मार्केट में एक जो अनिश्चितता का माहौल बना था, और मुझे लगता है सभी लोगों को इसको जानना चाहिए, मार्केट अच्छी खबर को सेलिब्रेट करता है, बुरी खबर को भी हजम कर जाता है, पर एक चीज जो नहीं हजम होती है वो है अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी। तो ये जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है, पता नहीं युद्ध कब तक चलेगा, रुकेगा कि नहीं रुकेगा और कहां तक फैलेगा, इसको लेके मार्केट अभी भी मैं कहूंगा कि थोड़ा सा सोच समझ के चलने की जरूरत है। इसमें बहुत ज्यादा इमोशनल हमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले भी पिछले 5 महीनों में ऐसा कई बार हुआ है कि युद्ध रुकने की घोषणा हुई, रुका भी रहा, पर फिर उसके बाद कुछ हो गया। तो आई थिंक अभी भी फूंक फूंक के पग धरने की जरूरत है, पर एक खुशखबरी जैसा आप कह रही हैं, आज बात करें तो जरूर है।
1: Of course, we will continue with this discussion, Sharad ji. But before that, let me repeat the numbers. Prachi, if you'll just repeat the numbers for our listeners, where they can call us with their queries.
0: बिल्कुल श्रोताओं, आप हमें कॉल करिए, कोई भी सवाल आपके मन में हो, व्यापार, अर्थव्यवस्था या शेयर बाजार से जुड़ा हुआ, तो आप हमें कॉल करिए इन नंबरों पर। ये नंबर्स हैं 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106 पर। मार्केट मंत्र है ये प्रोग्राम और हमारे समक्ष जो मार्केट विशेषज्ञ हैं शरद कोहली जी, वो विराजमान हैं। तो अपना कोई भी सवाल बेधड़क पूछिए।
1: शरद जी, लेट्स गेट बैक टू द मार्केट। इफ यू लुक एट द वे द सेंसेक्स एंड द निफ्टी टुडे बिहेव्ड, सेंसेक्स रोज अबाउट 0.7%। इन कॉन्ट्रास्ट वी सॉ निफ्टी सर्जिंग 1.6%। डू यू थिंक इट हैज, एंड इनफैक्ट इफ यू लुक एट इट, द निफ्टी 50 जंप्ड नियरली 200 पॉइंट्स इन जस्ट 2 मिनट्स टुडे। So is it something to do with the new, that rule that has come out regarding the closure of a business? If you can just explain to our listeners.
2: Yes, I think the additional 10 minutes added to the derivatives market in NSE did contribute its bit. Because let us try and understand this. Yeah. So what happens is that there is a weighted average which is calculated for half an hour, the last half an hour on the cash section. So what used to happen is that the F&O traders, had to ultimately close their deals on the basis of the price final determination which happened. Now what happened was cash and F&O used to happen together. So that used to lead to a panic. So F&O traders did not get any time, sometimes they never used to get that time to settle down the prices. Now these additional 10 minutes has allowed the F&O traders to allow the cash section to close down so they can know what the price discovery is and then take a call on whether they want to carry forward the deal or they want to square it up. Yes. So because this was the first day.
1: Happened only on the NSE.
2: Only on the NSE. Yes. So because this was the first day, Anubhav, so what has happened is that, the traders were excited. They wanted to test waters. I think with the flux of time, as the days progress, you will see normalcy will return. You will

0: not see this last minute splurges which happened today.
1: Right. Delhi se hamare saath pehle caller jud rahe hain. Inka naam hai Idris. Ji, karyakram mein. Ji, Idris. Idris ji, karyakram mein aapka abhinandan. Kripya apna sawal poochiye.
2: Namaskar.
1: Namaskar.
2: मैं बैंक में गया था वो नंबर लिंक करवाने खाते से.
0: हाँ जी.
2: तो मैडम का अंगूठा लिखा हुआ लगा हुआ है तो वो कह रहे हैं ये नहीं नंबर लिंक नहीं होगा.
3: इद्रीस जी आप यहाँ पर मोबाइल नंबर की बात कर रहे हैं और एक आपसे हम एक रिक्वेस्ट करेंगे अपना रेडियो प्लीज आप पीछे से बंद कर दीजिए.
2: अच्छा
3: जी. हाँ हाँ अब आप बताएं आप किस नंबर की बात कर रहे हैं.
2: खाते से नंबर लिंक करवाने गया था.
3: अच्छा जी ओके.
0: तो उन्होंने आपको कहा कि आपका मैडम का नंबर लिंक्ड है आपकी मतलब आपकी वाइफ
2: मैडम का खाता है उनका अंगूठा लगा हुआ है तो वो कह रहे हैं अंगूठे वालों का नंबर लिंक नहीं होगा.
0: अंगूठे वालों का नंबर लिंक नहीं होगा इसका मतलब बैंक वाले ने सिग्नेचर्स के लिए शायद इंसिस्ट किया होगा.
3: जी
2: हाँ जी हाँ.
0: तो आप तो खाता आपकी वाइफ का शायद था शायद आपका
2: हाँ,
0: नहीं होगा.
2: वाइफ का है और उन्हीं का
0: नहीं नंबर तो उनको अगर अगर थंब इंप्रेशन भी है तो नंबर तो उनको लिंक करना ही पड़ेगा क्योंकि ये तो मैंडेटरी आजकल. तो इसमें इदरीस जी मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप बैंक के किसी सीनियर ऑफिसर से मिलें. आपकी हमारी आवाज वापस आ रही है फोन से तो आप प्लीज रेडियो सेट की आवाज कम करें. तो उससे आपको किसी सीनियर मैनेजर से मिलना चाहिए क्योंकि खाली थंब इंप्रेशन होने का यह मतलब नहीं है कि मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा. क्योंकि इवन यू नो आपको मैं अनुभा और प्राची को भी बताऊं कि जो बायोमेट्रिक तो आधार में भी होता
3: जी,
0: है
3: जी.
0: और बायोमेट्रिक आजकल फोन में भी चाहिए होता है. तो इसलिए देयर इज नो रीजन मुझे लगता है बैंक वालों को पूरी जानकारी नहीं है. इदरीस जी आप किसी सीनियर मैनेजर से मिलिए और उनको नंबर लिंक करना ही पड़ेगा ये मैंडेटरी आज की. जी
3: लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉल अगेन कमिंग इन फ्रॉम दिल्ली. अनिल इज ऑनलाइन विद अस. अनिल वेलकम टू मार्केट मंत्रा प्लीज आस्क योर क्वेश्चन.
4: यस मैम.
3: जी
4: कोली साहब आई हैव अ स्मॉल क्वेश्चन रिगार्डिंग द एफएनओ पीएनएल टू बी सबमिटेड इन अलोंग विद द रिटर्न.
0: श्योर.
4: व्हेन वी सबमिट वी टेक द नेट डेबिट्स एंड नेट क्रेडिट्स एज सेल्स.
0: या
4: एंड देन टेक आउट द प्रॉफिट.
0: या
4: इजंट इट.
0: या एब्सोल्युटली.
4: बट द टर्नओवर इज it is high but we are not supposed to take the actual figures of the derivative.
0: Yeah.
4: Right.
0: Yeah.
4: Only loss and profit is to be taken.
0: Absolutely. Absolutely, Anandji. You are spot on. If you take the total, then it will be very, very high. So the net profits and losses or net debits and credits are to be taken. You need not take, to make our other listeners understand with your permission, Anubha and Prachi. Because what happens is when you take a lot, suppose you're taking it in futures. So the lot size turnover may be very, very high. So that way, you know, somebody who's made probably 30,000-40,000 rupees, he may end up showing a turnover of 60-70 crores. Yes, Anilji, your understanding is absolutely spot on and I don't need to elaborate any further because you're perfectly on track.
1: Jaipur se hamare saath Jitendra jud rahe hain. Jitendra ji, karyakram mein aapka abhinandan.
5: Thank you. Aapne jaise ICICI ka Nifty 50 ka mein karyakram
3: जितेंद्र जी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है आपसे. जी आपसे दोबारा हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप दोबारा अपना सवाल पूछें आराम से. जी
1: लगता है हमारा संपर्क टूट गया है. कोई बात नहीं अनुभव हम आगे बढ़ते हैं.
3: जी
1: रुक करते हैं एशिया और यूरोप के शेयर सूचकांकों की तरफ. एशियाई शेयर बाजार में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स 5% से अधिक और जापान का निकेई सूचकांक लगभग 1% नीचे आया. बात यूरोपियन शेयर सूचकांकों की करें तो आज ये मिश्रित रुझान के साथ कारोबार कर रहे थे. अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक जर्मनी का डैक्स 1.5% बढ़ा जबकि लंदन का फुटसी 0.3% नीचे कारोबार करता नजर आया. जापान और अमेरिका ने जापानी मुद्रा को 40 वर्षों के निचले स्तर पर गिरने से रोकने के लिए एक समन्वित येन खरीद हस्तक्षेप की पुष्टि की है. टोक्यो ने संकेत दिया है कि यदि आवश्यक हुआ तो वह आगे भी कार्यवाही करने को तैयार हैं. जापान के वित्त मंत्री ने कहा कि मंत्रालय ने पिछले सप्ताह अमेरिका वित्त विभाग के समन्वय से जापानी येन की खरीद की. वित्त मंत्री कातायामा यात्सुकी ने आज एक बयान जारी कर संयुक्त हस्तक्षेप की पुष्टि की.
3: शरद जी आई लाइक टू यू नो अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग दैट इज हैपेंड दैट वेयर जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स हैव कंफर्म्ड अ कोऑर्डिनेटेड येन बाइंग इंटरवेंशन टू हॉल्ट एज प्राची जस्ट रेड टू हॉल्ट द जापानीज करेंसी स्लाइड टू 40 ईयर्स लो. व्हाट डज इट मीन एग्जैक्टली व्हेन यू नो टू कंट्रीज कम टुगेदर एंड डू दिस काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट लाइक दिस.
0: वी नीड टू अंडरस्टैंड अनुभव दैट जापान

0: Japan is a very close ally of the US, and it is true that the Japanese yen was collapsing, it was falling, it was sliding like anything. Although I must point out here that when a currency slides, because Japan is primarily an export driven market, so the exporters were gaining, but because of the interest rate hikes in Japan, the currency was losing value. So US, as a true ally, came to the rescue, and they started buying yen and selling dollars to stabilize the yen. But you know, for how long this will go on is a question mark, because if they sell too many dollars, you know, it will start impacting US dollar as a currency. But for now, this has been intervened. Let's see. I'm very closely watching this particular event, because we monitor forex currency management, you know, very, very closely. And it's a very interesting alliance. You know, I wish this kind of alliance could be there with the rupee as well. But because Japanese yen is amongst the dollar index currencies, so that is why US is intervening in it.
1: So is it the first time we're looking at something like this, or this is a practice, you know, which has been around?
0: No, it has happened earlier as well, because there were a few years ago when Japanese yen, in fact, then Japan had deliberately devaluated it. We've seen China has devaluated its yuan in the past. So sometimes when you are export driven economy and your currency becomes weak, it becomes beneficial for exporters for that matter.
2: मुंबई से हमारे साथ इस बीच रत्नाकर जुड़ रहे हैं. रत्नाकर जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन. कृपया अपना सवाल पूछिए.
3: हेलो, गुड इवनिंग मैडम. मेरा सवाल है कि फार्मा सेक्टर के बारे में 100% ड्यूटी लगाने की बात सुनी थी
0: जी.
3: तो वो फार्मा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना कैसा उचित रहेगा क्या? वैसा भी अभी आईटी सेक्टर स्ट्रांग हो रहा है, आईटी सेक्टर भी बढ़ रहा है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना कितना अच्छा रहेगा? और दूसरा एक छोटा सवाल है कि मैंने 2023 में एक मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट रखा था स्टेट बैंक में, वो 26 को 1 अगस्त को अभी ड्यू होने वाला था, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो 26 का डिपॉजिट और 29 तक उन्होंने रिन्यू कर दिया, जो मैंने दिया ही नहीं था. तो ऐसे हालत में वो ऑटोमेटिक कैसे रिन्यू हो गया, उसके लिए
0: रत्नाकर जी, पहले आपके पहले वाले सवाल पर आते हैं. देखिए, फार्मा सेक्टर पे जो 100% टैरिफ की प्रेसिडेंट ट्रंप ने बात करी है, वो 2 साल बात करी है पहले, तो अभी नहीं लगने वाले हैं. तो अभी मुझे कोई फार्मा सेक्टर में कोई खामी नहीं नजर आती, कोई कमी नहीं नजर आती. आप बहुत आराम से उसमें कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी प्रेसिडेंट ट्रंप की जब बात आती है तो दुनिया भर में अब ये चर्चा है कि वो अपने निर्णय बदल भी देते हैं, और अभी तो 2 साल बहुत दूर है. दूसरा ये भी देखना होगा कि 2028 में तो उनका टर्म ही पूरा हो रहा है, तो इसलिए उसमें फार्मा सेक्टर मुझे कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही. आप अच्छी कंपनीज का चयन करके, ऐसे ही आईटी सेक्टर में भी है जो कंपनीज अच्छी हैं, यहाँ हम कंपनीज का नाम नहीं लेते, पर जिन कंपनीज के नतीजे अभी अच्छे आए हैं, मुनाफा अच्छा आया है, मार्जिन अच्छे आए हैं, उनमें आप निवेश कर सकते हैं. आपका दूसरा सवाल मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट का, ये हुआ क्या होगा, जब आपने डिपॉजिट किया होगा तो उस समय इसमें ऑटोमेटिक रिन्यूअल की ऑप्शन उसमें टिक हो गई होगी, इसीलिए बैंक से वो रिन्यूअल हो गया है. अब आप इसमें से निकलना चाहते हैं तो आप कभी भी निकल सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है. आप जब बैंक को बोलेंगे कि मैंने तो नहीं कराया था, तो आप उसमें से एग्जिट कर सकते हैं. इसमें प्रीमेच्योर एनकैशमेंट पूरी तरह से अलाउड है. आपने को मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट बोला है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई लॉक इन पीरियड, बैंक का कोई भी जो प्रोडक्ट होता है उसमें लॉक इन नहीं होता. ये पोस्ट ऑफिस में देखा जाता है जहाँ लॉक इन होते हैं, जहाँ पर आपने एक बार कर दिया तो बहुत जल्दी आप निकल नहीं सकते. तो बिल्कुल रत्नाकर जी, बैंक जाइए, और अगर आप निकालना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते, आप इसको बिल्कुल निकाल सकते हैं. कोई दिक्कत हो तो आप मार्केट मंत्रा को बताइएगा, हम आपको इसको और स्पष्ट करेंगे.
1: और जो भी इनकी लास्ट डेट थी, उससे जब ये निकालेंगे तो शरद जी, जैसे कि एक कॉमन प्रैक्टिस है, उनको उतने दिन का इंटरेस्ट उनको और मिल जाएगा.
0: हाँ, पर उसमें कुछ कटौती
1: भी होगी, पर
0: उसमें थोड़ा सा पेनल्टी वो लगाते हैं, क्योंकि प्री मेच्योर माना जाता है. पर क्योंकि आप पैसा चाहते हैं, आप तो पैसा यूज करना चाहते होंगे, या कुछ और विकल्प आप ढूंढ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई परेशानी होनी चाहिए.
2: देखते हैं अगला सवाल क्या है. भोपाल से शंकर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं. शंकर जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन. कृपया अपना सवाल पूछिए.
4: नमस्ते शरद कॉलेज जी. सर, मेरा सवाल है कि थोड़ी सी मार्केट में रौनक आई है, क्योंकि ये एफआईआई का आने का सिलसिला शुरू हो गया है
0: जी.
4: तो ये अब डू यू थिंक कि अब ये ट्रंप की, और नवंबर आने वाला है, ट्रंप को थोड़ा सा वहां पे भी थोड़ा सा डर रहेगा इनके इलेक्शन का, तो थोड़ा स्टिमुलेट होगी हमारी मार्केट, and this will be the last time we will be seeing these levels, and we should see higher levels. Kya aapki Nifty ke bare mein guess hai for next say 2 years before Trump retires? Thank you sir.
0: नहीं, ट्रंप शंकर, पहले तो ट्रंप रिटायर नहीं हो रहे हैं. ये जो इलेक्शन होता है नवंबर में, ये मिड टर्म पोल्स कहलाते हैं. ये अमेरिका में दो, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा होता है, वहाँ पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव

0: हेड्स और उसको सेनेट कहते हैं, और ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव 2 साल का होता है, उनका टर्म पूरा हो रहा है, सेनेट्स में भी कुछ सीट खाली हो रही हैं, तो वहाँ उसके बाद अगर मान लीजिए मेजॉरिटी रिपब्लिकन्स की नहीं रहती है तो फिर उसको लेम डक प्रेसिडेंट कहते हैं कि भाई वो अप्रूवल नहीं ले सकते। पर आपका मूल मुद्दा ये था, मैं यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस में चला गया, आपका मूल मुद्दा था कि क्या ये रौनक रहेगी। देखिए ये अभी हम थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे कि पिछले 5 महीने से ऐसा कई दफे मौका आया जब ऐसा लगा, ये जो रौनक शब्द आपने इस्तेमाल किया कि रौनक आ रही है वापस, पर जब भी रौनक आने लगती है तो फिर अब रौनक का उल्टा कुछ होता होगा तो मैं शब्द नहीं बोलना चाहता, वो होने लग जाता है वहां पर। मैं बहुत निराशावादी बात करना नहीं चाहता हूं कि कुछ ना कुछ हमला हो जाता है, कहीं से कोई धमकी आ जाती है, क्रूड ऑयल की प्राइसेस बिगड़ जाती है। तो शंकर, उम्मीद तो यही करते हैं कि अब ये जो रौनक है ये टिके। वाकई हमने शुरू में बात किया 24,700 आज छुआ है, बहुत दिनों बाद ये छुआ है, 25,000 की तरफ निफ्टी की हम उम्मीद करते हैं बड़े, पर अभी बहुत फूंक फूंक कर पग रखने की जरूरत है, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि 5 महीने का अनुभव ये कहता है कि अनुभव ये कहता है अनुभव
1: जी
0: कि ये जो है अभी इस पर पूरी तरह से यकीन करना सोच समझ के
1: जी, थोड़ा जल्दी होगी, थोड़ी जल्दबाजी होगी।
2: बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और दिल्ली से हमारे साथ रवि जुड़ रहे हैं। रवि जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए। रवि जी, आप अगर हमें सुन पा रहे हैं तो कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: मार्केट मंत्री को नमस्कार, मैं जानना चाहता हूँ जैसे जो ईरान और अमेरिका का
1: जी सवाल पूछिए प्लीज।
3: अमेरिका और ईरान का जो युद्ध ड्राम लग रहा है ये कब तक क्लियर होगा?
0: अमेरिका और ईरान का युद्ध विराम लग रहा है कब तक क्लियर होगा? क्लियर होगा मतलब चलता रहेगा, उम्मीद करता हूँ यही पूछ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं सर, उम्मीद पे रवि जी दुनिया कायम है, हम भी कायम है और सारी दुनिया ही ये कोशिश कर रही है, युद्ध किसी के हक में नहीं है। अभी इसी पे चर्चा चल रही है लगातार के उम्मीद करते हैं कि ये चलता रहे, हम तो यही कहेंगे। इस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ रवि जी ने अगर जवाब नहीं भी सुना तो बाद में मार्केट मंत्रा यूट्यूब पे भी डल जाता है, आप उस पर जवाब को कर सकते हैं, तो मैं उसको रिपीट करने से बच रहा
1: हूँ। शहनाज इज ऑनलाइन with us from Mumbai. Shehnaz, welcome to Market Mantra. Please ask your question.
4: Hi, good evening to all of you.
1: Good evening. Please.
4: Sharad ji, मुझे ये पूछना है कि मैंने आप बहुत थोड़े दिन पहले रेडियो आपको बताया था कि मेरे इनकम टैक्स के जो पैन कार्ड है उसमें 18 लाख की कार दिखा रही है 26 AS में, और उसका जो 18,000 भरा भी है वो लोग ने टैक्स, राइट? इफ यू रिमेम्बर, पता नहीं, एनीवेज, तो वो हिसाब से मैंने ये बार जो टैक्स किया भर दिया मैंने ऑलरेडी, तो क्या हुआ विद इन 24 आवर्स मेरे अकाउंट में 18,000 आ गए, विच इज ऑफकोर्स आई एम नॉट एलिजिबल फॉर दैट, मैंने तो पैसे भरे भी नहीं है, तो क्या आगे चल के उसकी रिकवरी आ सकती है, तो मुझे क्या करना चाहिए आगे?
0: अगर मैं ठीक समझ
4: में दिखा रहा था इसलिए मैं वो तो कुछ भी नहीं हुआ, फाइनेंशियल लॉस तो मुझे है ही नहीं, लेकिन जब रिटर्न फाइल किया तो दूसरे ही दिन विद इन 24 आवर्स आई रियली अप्रिशिएट द एफिशिएंसी ऑफ द टैक्स डिपार्टमेंट, मुझे रिफंड आ गया। अभी दूसरी बात ये बतानी है, उसका जवाब आप देना मुझे
0: जी। शहनाज देखिए, ये ऐसा लगता है कि शहनाज यू डिड नॉट डू दैट ट्रांजैक्शन, आपने वो 18 लाख की गाड़ी नहीं खरीदी, तो ऐसा अक्सर हो जाता है कि गलती से पैन नंबर आपका कोट हो गया और गाड़ी आपके उसमें दिखने लगी, उसमें 1% TDS होता है 10 लाख से ऊपर की, TCS बोलते हैं उसको, टैक्स कलेक्टेबल एट सोर्स, तो 1% का वो जमा करा, आपने रिफंड भी ले लिया। मुझे लगता है शहनाज आपको इसको वापस करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि आपका ट्रांजैक्शन ही नहीं है अब, क्योंकि आपके उसमें आया और आपने रिफंड, वैसे आपको कायदे से क्या करना चाहिए था कि आपको अपनी रिटर्न फाइल करते टाइम उसको क्लेम नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आपका था नहीं, तो अब हो गया है, तो अब इसको वापस देने के लिए आप तैयार रहिए। मुझे उम्मीद है कि आएगा, क्योंकि आजकल सब डिजिटल प्रोसेस है, वो कभी ना कभी जिसका असल में है वो व्यक्ति जब देखेगा कि मेरे में दिख नहीं रहे कहाँ चला गया, तो पता लग जाएगा कहीं ना कहीं गया। तो शहनाज जब तक के लिए पैसे आपके पास हैं आप एंजॉय करिए, पर आप वापस देने के लिए तैयार रहिए।
1: Yes, let's move on to the next story. India's manufacturing sector continued to expand in July, although the pace of growth slowed to its weakest level in nearly 5 years. According to the HSBC India Manufacturing Purchasing Managers Index PMI, released today, the seasonally adjusted manufacturing PMI eased to 53.5 in July from 54.2 in June, its lowest reading since August 2021. Despite the slowdown, the index remained above the crucial 50-point threshold that separates expansion from contraction, indicating that manufacturing activity continued to improve. The report said manufacturers continued to benefit from resilient demand, although growth in new orders, input purchases, and employment moderated.

इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अतहर सईद। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस के भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हराया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: मांजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की सभी 20 दौर की मतगणना पूरी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल उर्फ सतीश पटेल को कुल 55,481 मत मिले हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार भीखाभाई रबारी को 24,851 मत प्राप्त हुए हैं। भाजपा का गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर मुख्य मुकाबला इन्हीं दो उम्मीदवारों के बीच में था। वडोदरा नगर निगम के पूर्व पार्षद रह चुके सतीश पटेल ने लोगों को धन्यवाद दिया और कहा कि जनता ने फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताया है। पूर्व वरिष्ठ भाजपा विधायक योगेश पटेल के निधन के कारण रिक्त हुई इस सीट पर शुक्रवार को लगभग 37% मतदान दर्ज किया गया था। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट जीत ली है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक वोटों से हराया। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करना है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ये विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि विधेयक न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
0: राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में और संशोधन करना है। इसका लक्ष्य भुगतान में देरी को दूर करना और विवाद समाधान को सरल बनाना है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 पेश किया। इस दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा से के मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर सदन में हंगामा किया। गतिरोध जारी रहने के कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया और कई सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में सुरक्षा बलों के कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी उस समय हुई जब बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे प्रदर्शन में शामिल थे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद द्वारा कल तक जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदर्शन में 80 लोग मारे गए हैं। घरेलू शेयर बाजार का सेंसेक्स लगातार चौथे दिन बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 554 अंक बढ़कर 78,600

0: படிச்சிட்டுமா சார்?
1: திரும்ப

चढ़ावे की कथित चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों को लेकर कांग्रेस समाजवादी पार्टी समेत विभिन्न विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बाधित रही और दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2:10 पर ही बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद 2 शुरू हुई तो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। सदन ने विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच ही ध्वनिमत से बिना चर्चा के विधेयक को पारित किया। इससे पहले सदन ने इस संबंध में राष्ट्रपति द्वारा मई में लागू किए गए अध्यादेश को नामंजूर करने के तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय के संकल्प को अस्वीकृत कर दिया। सदन ने विधेयक पर कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधन को भी खारिज कर दिया। विधेयक को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश करते हुए मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायिक क्षेत्र में सुधार श्रृंखला की कड़ी है, जिसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। मेघवाल ने मानसून सत्र के पहले दिन 20 जुलाई को सदन में ये विधेयक पेश किया था। इसी साल मई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से संबंधित विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके तुरंत बाद सरकार अध्यादेश लेकर आई थी। अध्यादेश के बाद बढ़ाई गई स्वीकृत संख्या के आधार पर उच्चतम न्यायालय में 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या इससे पहले 2019 में बढ़ाई गई थी। उस समय प्रधान न्यायाधीश को छोड़कर न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 30 से बढ़ाकर 33 की गई थी। मेघवाल ने कहा कि स्वतंत्र भारत में शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई और अगस्त 1956 में पारित विधेयक के माध्यम से प्रधान न्यायाधीश समेत कुल न्यायाधीशों की संख्या 11 की गई। उन्होंने कहा कि उसी मूल भावना को देखते हुए और लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या अब 34 से बढ़ाकर 38 की गई है। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक में भारतीय सांख्यिकी संस्थान को नया वैधानिक ढांचा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। ये विधेयक वर्ष 1959 के पुराने अधिनियम का स्थान लेगा ताकि आधुनिक शैक्षणिक और शोध जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसके तहत संस्थान को एक कॉरपोरेट निकाय के रूप में स्थापित करने और उसके प्रशासनिक एवं अकादमिक ढांचे को मजबूत करने का प्रावधान है। विधेयक में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति संस्थान के विजिटर होंगे और इसमें एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लिए प्रावधान है जो इसका प्रमुख नीतिगत कार्यकारी निकाय होगा। पिछले बजट सत्र के दौरान राव इंद्रजीत सिंह ने संसद को सूचित किया था कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI को एक निगमित निकाय के रूप में शामिल करने और इसके प्रभावी संचालन के लिए एक ढांचा प्रदान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किया, जिसका उद्देश्य अदालतों में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रक्रिया को आधुनिक तथा पहले से अधिक स्पष्ट बनाना है। ये विधेयक औपनिवेशिक काल के 125 वर्ष पुराने बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम 1891 का स्थान लेगा। प्रस्तावित कानून में बैंककार बही की परिभाषा का दायरा बढ़ाकर डिजिटल क्लाउड आधारित और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी शामिल किया गया है। विधेयक में अदालतों के समक्ष डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में पेश करने तथा उनके प्रमाणन के लिए स्पष्ट और एक समान नियम निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बैंक अधिकारियों को बिना ठोस आधार के बार बार अदालतों में तलब किए जाने से बचाने के लिए विशेष कारण परीक्षण का प्रावधान भी किया गया है। लोकसभा की आज सुबह बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता को उद्देश्य उल्लेख किया और उन्हें बधाई दी। इसके बाद जब उन्होंने प्रश्नकाल शुरू कराया तो विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे बिरला ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि आप नियोजित तरीके से सदन नहीं चलाना चाहते। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है, कृपया प्रश्नकाल चलने दें। शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने बैठक दोपहर 12 तक स्थगित कर दी। इसके बाद दोपहर 12

और फिर अपराह्न 2 बजे भी सदन में हंगामे की स्थिति बनी रही और कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई की हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे की स्थिति के कारण आज लगातार 11वें दिन भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज नीट प्रश्न पत्र लीक होने के विरोध में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। हंगामे के बीच सदन ने संक्षिप्त चर्चा के बाद एमएसएमई क्षेत्र से जुड़े एक महत्वपूर्ण विधेयक को पारित कर दिया। सदन की बैठक सुबह 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने ग्लासगो में संपन्न राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता का उल्लेख किया और उन्हें बधाई दी। इन खेलों में भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य जीतकर चौथा स्थान हासिल किया। सभापति ने उम्मीद जताई कि ये खिलाड़ी आगे भी अपनी मेधा से देश को गौरवान्वित करेंगे। इसके बाद सभापति ने शून्यकाल शुरू करते हुए मुद्दे उठाने के लिए सदस्यों के नाम पुकारे। इसी दौरान विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। हंगामे के कारण कुछ सदस्यों ने तख्तियां दिखाई, जिस पर आपत्ति जताते हुए सभापति ने कहा कि सदन में तख्तियां नहीं दिखाई जा सकती। इसके बाद हंगामे के बीच सभापति की अनुमति से भाजपा की दर्शना सिंह ने स्वीप एपनिया का मुद्दा उठाते हुए कहा कि एक अनुमान के अनुसार भारत में करीब 90 करोड़ लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, लेकिन जागरूकता के अभाव में लोग इसके खतरों से अनजान हैं। उन्होंने कहा कि स्लीप एपनिया नींद से जुड़ी एक गंभीर समस्या है, जिसमें सोते समय बार बार सांस रुकती और शुरू होती है। भाजपा सदस्य ने इस बीमारी को लेकर जागरूकता फैलाने की मांग की। इसी पार्टी की अलका गुर्जर ने राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के आसींद के पास स्थित भगवान देव नारायण की पवित्र जन्म और प्राकाट्य स्थली मालासिरी डोंगरी के विकास का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि स्थान देश के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है, जहां हर साल दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए कई सुझाव दिए। मनोनीत सदस्य उज्ज्वल निकम ने अदालतों में लंबित मामलों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मामलों की सुनवाई में विलंब का एक कारण उनकी अधिक संख्या भी है। इस बीच सदन में हंगामा जारी रहा, जिसके कारण सभापति ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। बैठक दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर उप सभापति हरिवंश ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू करने के लिए कहा। इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने फिर से नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। उपसभापति की अनुमति से नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोलते हुए राम मंदिर अयोध्या में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाना चाहा, लेकिन इसकी अनुमति नहीं मिली। सदन के नेता जेपी नड्डा ने भी आसन से अनुरोध किया कि विधेयक पर चर्चा शुरू हो चुकी है तथा किसी अन्य विषय पर बोलने की अनुमति नहीं दी जाए। इसके बाद उपसभापति ने कांग्रेस के अजय माकन से अपनी बात रखने के लिए कहा, किंतु माकन विधेयक के बजाय अन्य विषयों पर बोलने लगे। सदन में मौजूद संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि आसन की ओर से बार बार विधेयक पर बोलने के लिए कहा गया, लेकिन विपक्षी सदस्य विषय को भटकाते हैं। उन्होंने माकन के संबोधन को कार्यवाही से निकालने की मांग की। हंगामे के बीच एमएसएमई विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा की सुमित्रा वाल्मीकि ने कहा कि समाज के वंचित वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये विधेयक लाया गया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों का हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है और ये विधेयक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बेहद उपयोगी है। तृणमूल कांग्रेस की डोला सेन ने कहा कि एमएसएमई की मदद से बेरोजगारी दूर की जा सकती है। बीजत के डॉक्टर संतृप्त मिश्रा ने कहा कि जीडीपी में एमएसएमई का 35% योगदान रहता है, लेकिन इसकी राह आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि मूल विधेयक 2026 में आया था और 20 साल बाद इसका संशोधन आया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान एमएसएमई क्षेत्र में बहुत बदलाव हो चुका है। विधेयक में बड़ी चुनौतियों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोल्ला बाबू राव ने कहा कि विधेयक में मध्यस्थता और फैसलों के त्वरित निपटारे के लिए नए नियम तय किए गए हैं, जो सराहनीय कदम है, लेकिन इन नियमों का पालन भी जरूरी है, अन्यथा न्याय मिलने में देरी होगी। अन्नाद्रमुक के एम थंबीदुरई ने कहा कि देश के विकास के लिए एमएसएमई जरूरी है। उन्होंने केंद्र से मांग की कि वह तमिलनाडु में एम

सैमी कार्यक्रम को सहयोग दें। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीरालाल जैन ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि एमएसएमई हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और ये विधेयक उसे शक्ति प्रदान करेगा। तेलुगु देशम पार्टी के मस्तान राव यादव वीड़ा ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि इसके प्रावधान दर्शाते हैं कि लघु कंपनियों के लिए सुचारू व्यावसायिक संचालन को बढ़ाने पर सरकार निरंतर ध्यान दे रही है। बीआरएस के रविचंद्र बद्दी राजू ने कहा कि विधेयक मध्यस्थता और मध्यस्थता कार्यवाही को ऑनलाइन माध्यमों से संचालित करने की अनुमति देता है, जिससे विवादों का समाधान तेजी से अधिक सुलभ और कुशल तरीके से हो सकेगा। बहुजन समाज पार्टी के रामजी ने कहा कि विधेयक में उन बच्चों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है जो एमएसएमई सेक्टर में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कमजोर वर्ग के लोगों को निजी क्षेत्र में भी आरक्षण देने पर विचार करे। चर्चा में यूपीएलएल के प्रमोद बोरो, भाजपा के संजय सेठ, कांग्रेस के नीरज डांगे, प्रवीण चक्रवर्ती और बीजू जनता दल की सुलता देव ने भी हिस्सा लिया। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र को दिए जाने वाला ऋण वर्ष 2014 से कई गुना बढ़ा है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र की मौजूदा चुनौतियों का समाधान करना, प्रशासनिक ढांचे में सुधार करना, व्यापार भुगतान में सुधार करना और नियमों के अनुपालन को बढ़ावा देने का उद्देश्य है। श्री मांझी ने कहा कि इस विधेयक में न केवल एमएसएमई की परिभाषा में सुधार किया गया है बल्कि इसके टर्नओवर की सीमा को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर 39% हो गई है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसी के साथ विधेयक पर लाए गए विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को सदन ने ध्वनिमत से खारिज कर दिया। इस दौरान विपक्षी सदस्य लगातार हंगामा एवं नारेबाजी करते रहे। सदन में व्यवस्था बनते न देख उप सभापति हरिवंश ने करीब 3:30 बजे बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। सरकार ने लोकसभा में कई लिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 उच्च शिक्षा में पहुंच, समानता, किफ़ायती शिक्षा और समावेशन पर विशेष बल देती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार सभी विद्यार्थियों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आने वाले छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक समान पहुँच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से पात्र विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं जिनका क्रियान्वयन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किया जाता है। इनका प्रशासन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इन छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित अभिभावकीय आय सीमा तथा योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार SC ST और OBC वर्ग के सभी पात्र विद्यार्थियों को लाभ प्रदान किया जाता है। उच्च शिक्षा विभाग प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन PM USP योजना का संचालन करता है। इन योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के पात्र विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है, जैसा कि योजना के दिशा निर्देशों में निर्धारित है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

0: प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
1: राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं हो सका। हालांकि शोर शराबे के बीच लोकसभा ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। इस विधेयक के तहत उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं हैं। वहीं राज्यसभा में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया गया। यह विधेयक सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन कर भुगतान में होने वाली देरी की समस्या का समाधान कर विवाद निपटान प्रक्रिया को सरल बनाना है। इसके अलावा भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 और बैंक कर बहिसाक्ष्य विधेयक 2026 आज लोकसभा में पेश किया गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग न लेने का आरोप लगाया है। संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने कहा कि विपक्षी सदस्यों को जब मौका दिया जाता है तब वे बोलना नहीं चाहते।
3: सुप्रीम कोर्ट में जजेस को संख्या बढ़ाने के लिए और राज्यसभा में एमएसएमई का बिल पास किया। विपक्ष में कोई भी ऐसा नहीं बचा जो हिस्सा लेना चाहते थे। हमने सबसे आग्रह किया था कम से कम बिल में हिस्सा तो ले, बाहर जाके कहते हैं कि बोलने के लिए मौका नहीं मिलता है।
1: कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के संबंध में सदन में सरकार से बयान की मांग की।
4: लोकतंत्र में बहस होती है और हम जब बहस छेड़ते हैं तो आपका दायित्व होता है या आपका अधिकार होता है कि उसको रिप्लाई दे। अगर मेरी आर्गुमेंट ठीक नहीं है तो आप कहिए कि तुम्हारा गलत है, मेरा सही है।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं।
5: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एफआईआर बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। समाचार कक्ष से अतहर सईद।
1: भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर से जीत ली है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हराया।
6: मांजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की सभी 20 दौर की मतगणना पूरी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल उर्फ सतीश पटेल को कुल 55,481 मत मिले हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार भीखाभाई रबारी को 24,851 मत प्राप्त हुए हैं। वडोदरा नगर निगम के पूर्व पार्षद रह चुके सतीश पटेल ने कहा कि जनता ने फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताया है। पूर्व वरिष्ठ भाजपा विधायक योगेश पटेल के निधन के कारण रिक्त हुई इस सीट पर शुक्रवार को लगभग 37% मतदान दर्ज किया गया था। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: उधर बिहार में पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में जन सुराज पार्टी उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने जीत हासिल की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार नीरज कुमार को 19,324 वोटों के अंतर से हराया। प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले, जबकि नीरज कुमार को 44,827 मत प्राप्त हुए। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा कुमारी 14,273 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उपचुनाव में पार्टी

0: के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक वोटों से हराया।
1: दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को हराते हुए सीट अपने नाम कर ली है। मतगणना के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने हार स्वीकार करते हुए कहा कि पार्टी इस परिणाम की समीक्षा करेगी। उन्होंने चुनाव में भीतरघात का भी आरोप लगाया और कहा कि कार्यकर्ताओं को पार्टी की भावना के साथ काम करना चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने कहा कि जनता ने विकास और भरोसे के पक्ष में मतदान किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक में आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बेंगलुरु के लोकभवन में एक सादे समारोह में 19 विधायकों को पद की शपथ दिलाई। अब राज्य मंत्रिमंडल में 33 सदस्य हो गए हैं। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 3 जून को 13 अन्य मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया था। कांग्रेस द्वारा घोषित एकमात्र महिला विधायक गायत्री शांतिगौड़ा ने आज शपथ नहीं ली। एक अन्य विधायक मनकला वैद्य की जगह अंतिम समय में एसएस मल्लिकार्जुन को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा चरित्र निर्माण, सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण की नींव है। ओडिशा के कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने विश्वविद्यालयों से नैतिक, कुशल और सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक बनाने का आह्वान किया।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम उड़ीसा के कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शिक्षा सिर्फ ज्ञान हासिल करने का जरिया नहीं है, बल्कि ये चरित्र निर्माण, सामाजिक बदलाव और राष्ट्र निर्माण की नींव है। राष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय से लड़कियों, आदिवासी छात्रों और समाज के पिछड़े वर्गों की शिक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2047 तक विकसित भारत और 2036 तक विकसित ओडिशा के लक्ष्यों को हासिल करने में शिक्षण संस्थान अहम भूमिका निभाते हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और नागरिक विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय नागरिक सेवा दिवस समारोह को संबोधित किया। श्री सिंह ने कहा कि इससे सुरक्षा और तकनीकी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान होगा।
3: आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विस दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब उद्देश्य एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
0: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि AFHQ कैडर एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को निरंतरता, विशेषज्ञता और नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है।
3: AFHQ कैडर एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को कंटिन्यूटी, डोमेन स्पेशलिटी और पॉलिसी स्टेबिलिटी भी प्रदान करती है, और इसके साथ ही सिविल मिलिट्री सिनर्जी को सुदृढ़ करने में भी AFHQ एक इम्पॉर्टेंट ब्रिज की भूमिका का निर्वाह करता है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में उज्बेकिस्तान के निवेश, उद्योग तथा व्यापार मंत्री लाजीज कुदरतोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि व्यापार, निवेश, दवाइयों, कनेक्टिविटी, डिजिटल प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्रों में बातचीत हुई है। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी व्यवसायों के लिए नए अवसर खोलेगी और साझा समृद्धि में योगदान देगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंध वर्षों पुराने हैं और ये संबंध निर्माण, ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित विविध क्षेत्रों में फैले हुए हैं। दिल्ली में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सईदोव के साथ बैठक के दौरान डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों, विशेष रूप से आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में समान विचार हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस फर्जी खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चेतावनी दी है कि यदि दूध में मिलावट को तेजी से नहीं रोका गया तो इससे भारत की 87% आबादी को कैंसर हो जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि WHO द्वारा ऐसी कोई परामर्श जारी नहीं किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट

0: www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में सुरक्षा बलों द्वारा कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। पीओजेके से मिली रिपोर्टों के अनुसार सुरक्षा बलों ने आधी रात को प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करते हुए रावलकोट में गोलीबारी की। एक रिपोर्ट।
1: खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी उस समय हुई जब बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे प्रदर्शन में शामिल थे। कई महिलाएं और बच्चे पिछले 50 दिन से प्रदर्शन स्थल पर मौजूद हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों से लोग इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं और अब ये प्रदर्शन पूरे क्षेत्र में तेजी से फैल रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद द्वारा कल तक जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदर्शन में 80 लोग मारे गए हैं। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और राजनीतिक मिशनों से उपलब्ध फुटेज की जांच करने और हिंसा की तत्काल स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए दबाव डालने की अपील की है। ये प्रदर्शन क्षेत्र के लोगों द्वारा बेहतर सुविधाओं और अधिक विकास की मांग के साथ शुरू हुए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ उसकी कोई बातचीत नहीं चल रही है और न ही किसी बैठक की तैयारी है। ये बयान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान के साथ मध्यस्थों के जरिए बातचीत होने वाली है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने इस दावे को गलत बताया है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले दो दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। युवा साइकिलिंग खिलाड़ी हर्षिता जाखड़ ने स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में भाग लिया। हर्षिता इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित। राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के भुगतान में देरी की समस्या को दूर करने और मध्यस्थता को सरल बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने गुजरात के वडोदरा में मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीती। जन स्वराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर बिहार के बांकीपुर से विजयी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 19 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कल रात प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की गोलीबारी के कारण स्थिति और बिगड़ी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Lok Sabha passes bill to increase the strength of Supreme Court judges from 33 to 37. Rajya Sabha clears legislation to simplify dispute resolution and address payment delays faced by MSMEs. In assembly by polls, Jan Suraj leader Prashant Kishore wins Bankipur seat in Bihar, BJP retains Manjalpur in Gujarat, Congress keeps Datia in Madhya Pradesh. Karnataka Chief Minister DK Shivkumar expands cabinet, inducting 19 new ministers. Red alert issued for very heavy rainfall in Assam, Meghalaya, sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till tomorrow. In POJK, situation worsens overnight as security forces open fire on protesters refusing to disperse. Young cyclist Harshita Jhakar becomes first Indian woman to feature at Tour de France Fama in Switzerland. And now the news in detail. The Lok Sabha today passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill. The bill aims to increase the number of judges of the Apex Court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. In May this year, President Draupadi Murmu had promulgated an ordinance in this regard. Union Minister of Law and Justice Arjun Ram Meghwal moved the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill. He said the bill is an important step in that ongoing

0: नमस्कार श्रोताओं, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं। आज का विषय है साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, डिजिटल नागरिक की सुरक्षा। इस विषय पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ पवन दुग्गल जी। पवन जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मुकेश, बहुत अच्छा लग रहा है आपके प्रोग्राम पर आकर।
0: जी दोस्तों, आज फोन हर हाथ में है। UPI, ऑनलाइन शॉपिंग, सरकारी योजनाएं, सब डिजिटल हो गया है। सुविधा के साथ खतरा भी बढ़ गया है। फर्जी कॉल, नकली लिंक, OTP का झांसा, डीप फेक वीडियो, ठग नए नए तरीके अपनाकर हर दिन ला रहे हैं। लेकिन डरिए मत, जागरूक रहिए। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे साइबर फ्रॉड कैसे होता है, उससे बचें कैसे, और धोखा हो जाए तो सहायता कहां मिलेगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस विशेष चर्चा में और जानिए कि साइबर फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। श्रोताओं, आपके मन में इस विषय से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के फोन नंबर 2331-0481-2371-2371-7106 और 2331-4444 पर फोन कर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता दिल्ली का STD कोड 011 लगाना ना भूलें। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289-094-044 पर भी भेज सकते हैं। इस पर केवल संदेश भेजें, कॉल ना करें। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और दूरदर्शन की DTS सेवा पर भी उपलब्ध है। तो सबसे पहले पवन जी, आपसे जानना चाहेंगे आज भारत में सबसे आम तीन तरह की साइबर धोखाधड़ी कौन सी हैं? डिजिटल अरेस्ट, OTP फ्रॉड, इन्वेस्टमेंट स्कैम, इनमें नया ट्रेंड क्या है?
1: आज जो नया ट्रेंड है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तड़का लगाकर आता है।
0: जी
1: आजकल आप जो भी कार्यक्रम या जो भी आप ये साइबर फेंसेस देख रहे हैं
0: जी,
1: उन सब में कहीं ना कहीं मिश्रण हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। उदाहरण के तौर पर आजकल डिजिटल अरेस्ट जो होता है, उसमें भी जितने भी साइबर क्रिमिनल्स हैं वो डिजिटल अरेस्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं। जिस व्यक्ति को आप ऑनलाइन वीडियो पर देखते हैं वो रियल नहीं होता, वो AI द्वारा जनरेटेड होता है। जो आवाज़ होती है वो AI द्वारा जनरेटेड होती है। अल्टीमेट उद्देश्य बहुत क्लियर है कि आपने लोगों को ठगना है,

0: और अब जो ठगाई करनी है
1: जी,
0: वो आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इस तरीके से करनी है कि अगर पुलिस तफ्तीश भी करना चाहेगी
1: तो
0: आप तक पहुंच नहीं पाएगी, और साइबर क्रिमिनल मजे से अपना साइबर क्राइम भी करेगा, पैसे भी उड़ाएगा और तमाशा देखेगा। तो ये आजकल नया ट्रेंड नजर आ रहा है, इसी की रेप्लिकेशन मुझे और प्रकार के जो फ्रॉड्स हैं उसमें नजर आती है।
1: जी बिल्कुल। तो एक आम आदमी को कैसे पता चले कि उसके साथ साइबर फ्रॉड होने वाला है, उसके लिए तीन रेड फ्लैग क्या हो सकते हैं?
0: तीन रेड फ्लैग। पहला, अगर कोई व्यक्ति आपको बहुत जल्दी निर्णय लेने के लिए विवश कर रहा है तो ये पहला इंडिकेशन है कि साहब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। दूसरा, अगर कोई आपको डरा रहा है, धमका रहा है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सेकंड रेड फ्लैग है कि साहब ये कहीं ना कहीं एक स्कैम का हिस्सा है। और तीसरा, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं आपको अर्जेंसी के माध्यम से आपको पुश कर रहा है कि आप एक अर्जेंट इमीडिएट एक्शन लीजिए
1: जी,
0: क्योंकि आपके परिवार में कोई बंदा प्रॉब्लम में आ गया है, किसी को एक्सीडेंट हो गया है, किसी का अरेस्ट हो गया है। बॉटम लाइन ये है कि आज हमारा जो ना कोविड-19 के बाद जीवन इसलिए परिवर्तित हो चुका है क्योंकि दो चीजें कोविड-19 सदैव के लिए हमारे जीवन में छोड़ चुका है
1: जी।
0: एक है डर और दूसरा है पैनिक। साइबर क्रिमिनल्स ने आज इसी डर, इसी पैनिक को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है, और यही कारणवश है कि आज अधिकांश लोग, चाहे आप बहुत प्रशिक्षित हो, चाहे आप पढ़े लिखे ना भी हो, लेकिन आप डिजिटल रिस्क के और अन्य और प्रकार के ऑनलाइन फ्रॉड्स के शिकार होते जा रहे हैं।
1: बिल्कुल। और एक श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं मथुरा से, महेंद्र सिंह। महेंद्र जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है हमारे विशेषज्ञ से।
2: आमंत्रित विशेषज्ञ आदरणीय, नमस्कार।
0: नमस्कार
2: महोदय, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कोई फ्रॉड हम पर कॉल करता है कि आपकी OTP दे दो, ये दे दो, वो दे दो, तो इनकी शिकायत कहाँ दर्ज की जाए, इनका नंबर क्या है?
0: देखिए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। आजकल कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी तरीके से आपको टारगेट करने का प्रयास करता है। तो द मोमेंट आपको लगे कि आप साइबर क्राइम के शिकार होने वाले हैं या कोई आपको शिकार बनाने वाला है, तो आपके पास दो विकल्प हैं जो केंद्रीय सरकार ने आपको दिए हैं। पहला, कुछ हो या ना हो, अपने फोन नंबर से एक नंबर घुमाइए। नंबर है 1930
1: जी,
0: 1930। ये राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है। अगर आप फोन करते हैं और फोन उठता है तो फोन कोई नॉर्मल टेलीकॉम ऑपरेटर नहीं उठाता, फोन उठाते हैं पुलिस अधिकारी। अब इन लोगों का डायरेक्ट टाई अप आपके बैंक्स के साथ है, ताकि अगर आपके यहाँ कोई फ्रॉड हुआ है, कुछ हुआ है, आप तुरंत कॉल करेंगे, ये तुरंत ही अपने फोन के नेटवर्क पर, अपने कंप्यूटर के नेटवर्क पर देख लेंगे कि साहब आपके जो बैंक का जो चैनल है उसके अंदर पैसा है या नहीं है
1: जी।
0: अगर पैसा है तो उसको ब्लॉक करेंगे, और ब्लॉक करने का मतलब यह है कि 2-3 हफ्ते में पैसा खुद ब खुद आपके अकाउंट में आ जाएगा
1: जी।
0: और अगर उन्हें कुछ और पता लगेगा तो आपको भी बताएंगे। लेकिन दूसरा जो आपको और बहुत इफेक्टिव रेमेडी सरकार ने दी है वो ये है कि आप एक वेबसाइट पर जा सकते हैं, उसका नाम है cybercrime.gov.in, यानी कि ये राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है। अपने घर बैठे हुए, बिना थाने जाए हुए, आप इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं मोबाइल फोन से, कंप्यूटर से, और आपकी रिपोर्ट दर्ज होते ही आपको ऑनलाइन ही एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है जो गृह मंत्रालय आपको प्रदान करता है। ये नंबर आपके लिए एक परमानेंट नंबर बन जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से आप कॉन्स्टेंटली अपने केस की जो प्रगति है, प्रोग्रेस है,
1: उसके बारे में
0: आप लगातार जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ हो या ना हो, ये दो चीजें आप याद रखिए, 1930 1930 और cybercrime.gov.in। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में मैं मानता हूं कि दो प्रकार के लोग दुनिया में हैं। एक वो जिन्हें मालूम है कि वो साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं
1: जी,
0: और दूसरे वो जिन्हें नहीं मालूम कि वो साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं। तो चाहे आप को मालूम हो या ना हो, आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि अगर मुझे अटैक हुआ है, या जब मुझे होश आया कि साहब मैं टारगेट बन गया हूं, विक्टिम बन गया हूं साइबर क्राइम का, तो ये दो विकल्पों को तुरंत इस्तेमाल करिए, बहुत इफेक्टिव हैं, और मोर इम्पोर्टेंट, सरकार द्वारा नागरिकों के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का एक नया अप्रोच है जो सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, विपिन। विपिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, पूछे क्या सवाल है आपका?
3: जी नमस्कार सर, मैं विपिन बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश सागर से।
1: जी
3: सर, मेरा सवाल ये था कि सोशल मीडिया पे आजकल देखा जाता है बहुत सारे ऐप्स हैं जिसमें बहुत इजी लोन मिल सकता है, ऐसा दावा करते हैं, तो सर ये हम कैसे समझें कि फ्रॉड है जो ऐप्स हैं, या फिर इसमें सच में लोन मिल सकता है, या फिर धोखाधड़ी भी हो सकती है?
0: विपिन जी, आज

0: एक चीज समझनी है, वो ये कि दुनिया में ना फ्री लंच नाम की चीज नहीं होती, कुछ चीज मुफ्त नहीं मिलती। दूसरी चीज ये समझनी है कि अगर आपको कुछ ऐसा मन लुभावना ऑफर ऑनलाइन आ रहा है तो, और वो बहुत अट्रैक्टिव नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी खतरे की घंटी बज जानी चाहिए, क्योंकि जो टू गुड टू बी ट्रू ऑफर होता है वो एक्चुअली वास्तविक तौर में कहीं ना कहीं झोल लेकर आता है। तो आजकल ये जितने भी ये तुरंत लोन ऐप्स वाली कहानियां हैं, कोशिश करें कि इनसे आप मीलों दूर रहें तो अच्छी बात है। क्यों? अगर आप इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ें
1: जी,
0: इनकी प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ें, ये स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि साहब आपका मैं पूरा डेटा लूंगा, उस डेटा का दुरुपयोग करूंगा, आपकी निजता के अधिकार का हनन होगा और आप चुपचाप बैठेंगे, कुछ नहीं कर सकते। दूसरा, उनके फाइन प्रिंट में कहा जाता है, बोलते कुछ और हैं, जब आप टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ते हैं तो वो बहुत ही तगड़े और बहुत ही मोटे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं
1: जी।
0: और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर वीक लगाते हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो पर डे लगाते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो पर मंथ लगाते हैं। अब आज आपको जब एफडी 7% देती है और वो अगर आपसे 3% प्रति माह या 3% 2% प्रति वीक लेना शुरू कर दें तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो जल्दबाजी में मत करिए, एक तो जल्दबाजी में कोई लोन लेना नहीं, दूसरा लोन लेना है तो आप अधिकृत बैंक के पास जाइए, नेशनलाइज बैंक के पास जाइए, उनसे लोन लीजिए। ये ऑनलाइन लोन कहीं ना कहीं फ्रॉड के नए स्वरूप हैं, और जितनी जल्दी आप समझ लीजिए कि वो मछुआरे हैं जिन्होंने आपको जाल फेंक रखा है, अगर आपको पकड़ने के लिए, अगर आप केयरफुल ना हुए तो आप इस जाल में फंस जाएंगे। एक बार आप फंस गए तो फिर आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। मेरे पास केस आया जहां पर एक क्लाइंट ने केवल 15,000 रुपए लोन लिए
1: जी,
0: क्योंकि उसको एक हफ्ते के लिए चाहिए थे। अब उन्होंने लोन तो तुरंत अप्रूव कर दिया, लेकिन हुआ क्या कि जब पैसे आए तो पैसे आए करीबन 12,300, तो भैया
1: पहले ही काट लिया।
0: पहले उन्होंने कहा जी मैंने प्रोसेसिंग फी भी काट ली, मैंने ये भी काट ली, और फिर उन्होंने कहा कि साहब हम पर वीक जो है 3% इंटरेस्ट लगाएंगे, यानी कि आप समझ लीजिए महीने में 12%
1: इंटरेस्ट।
0: तो जितना आपने लिया नहीं उससे लगातार आपका इंटरेस्ट आता रहा, और उसके बाद आप नहीं दे पाए तो गुंडों का आपको धमकी आने लग गई, आपको प्रताड़ित करना लग गया, आपकी फैमिली को टारगेट करने लग गए। तो बॉटम लाइन ये है, छोटे लालच में नहीं पड़ना। अगर किसी से पैसा मांगना है अधिकृत बैंक से मांगिए, किसी अधिकृत एजेंसी से मांगिए। ऑनलाइन तो सारे झोल हैं, सारे साइबर क्राइम के नए स्वरूप हैं, प्लीज अपने आप को केयरफुल रखिए।
1: एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं हरिद्वार से, रवि। रवि आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है आपका।
2: नमस्कार सर।
0: नमस्कार।
2: और सभी विशेषज्ञों को नमस्कार, और आने वाले स्वतंत्रता दिवस तथा सभी त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ
1: जी। सवाल पूछिए।
2: हाँ जी सर, मैं जानना चाहता हूँ साइबर क्राइम जब हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, और इसे आम इंसान कैसे समझे कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है।
0: मुझे लगता है ये सवाल हर आज भारतवासी के हृदय में है कि कैसे पता लगे कि साइबर क्राइम होने वाला है
1: जी।
0: मुझे लगता है कि आप समझ लीजिए कि आप डिजिटल कुरुक्षेत्र के मैदान के केंद्र बिंदु पर आकर खड़े हो गए हैं, और आपको चारों दिशाओं से अटैक किया जा सकता है। अटैक करने वाले कौन है? साइबर क्रिमिनल्स हैं, अलग अलग पैंतरे अपनाते हैं, अलग अलग तरीकों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि आप कुछ करें या ना करें, अपने रोजमर्रा के जीवन में दो आदतें जरूर आप इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। पहली आदत, शक्की हो जाइए। दूसरी आदत, कंजूस हो जाइए। शक्की, हर प्रकार की जानकारी जो आपके सामने आ रही है, जिसको आप सुन देख रहे हैं, उस पर शक दृष्टिकोण से देखें जब तक कि आप उसकी पुष्टि स्वयं ना कर पाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आप कंजूस हो जाइए अपने डेटा के संदर्भ में। आज हो क्या रहा है कि भारतवर्ष में एक नई क्रांति चल रही है, मैं से बोलता हूं भारत की उल्टी की क्रांति, द ग्रेट इंडियन वॉमिटिंग रेवोल्यूशन, जहां पर सारे भारतवासी उल्टी कर रहे हैं अपने डेटा की, चाहे वो इंटरनेट पर हो, सोशल मीडिया पर हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हो। कृपया अपने डेटा की उल्टी ना करें, अपने डेटा को किसी भी व्यक्ति के साथ अनावश्यक तरीके पर शेयर ना करें, बिकॉज ये डेटा आधार बन जाता है आपको टारगेट बनाने के लिए। फिर अब ये दो चीजें अब आपने दिमाग में रख ली, अब सवाल उठता है कि आपको कैसे पता लगेगा कि आप साइबर क्राइम के शिकार हुए। अगर कोई ना कोई बंदा आपको ऑनलाइन मिलता है और वो पैसे की दिशा में आपको लेके जाता है कि आपने पैसे देने हैं, या आपको डराता है, धमकाता है, और या कहता है कि साहब आपकी नग्न तस्वीरें हम भेज देंगे, आपकी प्रतिष्ठा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे, जहां जहां जो जो व्यक्ति आपको डराता है, धमकाता है, आपको पैनिक के मोड पे लाता है, वो तमाम सारे इंडिकेशंस होते हैं कि साहब ये साइबर क्राइम फ्रॉड में आप फंसने वाले हैं। और दूसरी बात, बहुत ज्यादा ट्रस्टिंग होने की जरूरत नहीं है, आज वो यकीन वाला जमाना चला गया है,
1: हो चुका है
0: ऑनलाइन। आपको ऑनलाइन पता ही नहीं कि आप राम श्याम जादू से बात कर रहे हैं या किसी और व्यक्ति

0: से बात कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में मुझे लगता है कि जागरूकता और सावधानी एकमात्र आपके मूल मंत्र हैं, आपकी सुरक्षा कवच हैं, जो आपको बचाते हैं इस तरह के साइबर क्राइम के शिकार होने से।
1: बिल्कुल। एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, बिहार से अमित उपाध्याय। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है आपका।
2: जी नमस्कार विशेषज्ञ जो भी हमारा टीम है। मैं ये सवाल है अभी कि अभी हाल ही फिलहाल में सरकार इजी जो पीएफ का जो पैसा है उसको इजी लूप में उसको सर्कुलेट करके बना दिया था, निकालने का प्रावधान कर दिया है। इसमें तो अभी मामला आया था कि ओटीपी के माध्यम से कुछ पैसा का हेर फेर उसमें भी हो जा रहा है, जिसको लेकर हम लोग कैसे सिक्योर कर सकते हैं कि मान के चलिए वो जमा पूंजी जिंदगी भर का रहता है, हम लोग को पीएफ कटता है और वो पैसा इनसिक्योर हो जाए, तो उसको लेकर थोड़ा सा।
0: देखिए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा, क्योंकि देखिए पीएफ के साथ कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी की गाड़ी कमाई, आपकी मेहनत और उस मेहनत का पसीना जुड़ा हुआ है जी। तो आप कोशिश करें कि अगर आपके पीएफ कट रहे हैं तो ऑफिशियल सोर्सेज या ऑफिशियल कंपनी या ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर ही देखें। आजकल ना गवर्नमेंट ने पीएफ की विभिन्न वेबसाइट्स दे रखी हैं, तो अच्छी बात रहती है कि ऑलवेज इन गवर्नमेंटल वेबसाइट्स पर जाकर चेक कर लीजिए कि आपकी पीएफ की कंट्रीब्यूशन जमा हुई हैं नहीं हुई हैं। अगर आपके एम्प्लॉयर ने नहीं जमा कराई हैं तो उन्हें निवेदन करिए कि जमा कराएं, आपकी कितना टोटल अमाउंट आया है, कितना आगे बढ़ने वाला है। थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। देखिए, अगर आप सो जाएंगे तो बिल्ली तो आपके सिराने पे जो दूध है आके पी जाएगी
1: ही जाएगी
0: जी। तो इसलिए आपको तो सतर्क रहना ही पड़ेगा। अगर ना सतर्क रहे तब संभावित तौर पर साइबर क्रिमिनल्स इसको हड़प सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे ये मैं केसेस देख रहा हूँ कि लोग अपनी आइडेंटिटी को भूल जाते हैं, छुपा देते हैं, दूसरे व्यक्ति की आइडेंटिटी को इम्पर्सोनेट कर लेते हैं और उसके माध्यम से ऑफिशियल अकाउंट से पैसा निकालने की प्रयास भी करते हैं। तो कुछ हो या ना हो, अपने पीएफ डिपार्टमेंट में लिख के दे दीजिए कि साहब मेरे अकाउंट से कोई पैसा ना निकाला जाए जब तक कि मेरे हस्ताक्षर ना हो और तब तक मैं हाजिर ना हूं। इसके अलावा सावधानी सूझबूझ ही एकमात्र आपके लिए मूल मंत्र रहेगा।
1: बिल्कुल। तो जो श्रोता अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, डिजिटल नागरिक की सुरक्षा विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ पवन दुग्गल जी। तो पवन जी, एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से, संजय। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है आपका हमारे विशेषज्ञ से।
3: नमस्कार मुकेश सर, एक्सपर्ट सर, बहुत बहुत नमस्कार
1: जी। नमस्कार जी।
3: और सर, मेरा सवाल ये है कि हम क्यों हमेशा डायरेक्ट बातें ही समझने की कोशिश करते हैं, इनडायरेक्ट बातें नहीं समझते, जबकि डायरेक्ट कटरे बहुत कम ही होते हैं इनडायरेक्ट के अपेक्षा। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम छोटे मोटे जब ऐसी घटनाएं होती हैं, हम राजनयिक संबंध तोड़ने लगते हैं दूसरे देशों से या और भी व्यापारिक वो गतिविधियां करने लग जाते हैं, है ना, रोक टोक की। तो ये साइबर अपराध तो हर देश की समस्या बनती जा रही, केवल भारत की या एक देश की तो है नहीं, क्यों नहीं सभी देश मिल करके इसके लिए कड़ाई से जो है नियम कायदे बनाते हैं और इसके लिए बड़े दंडात्मक व्यवस्था करते हैं, ताकि किसी भी देश में कोई भी हो, क्योंकि हजारों करोड़ रुपए हर साल नुकसान होते, कितने मौतें हो रही है इसकी वजह से, क्या कर रहे हैं ये लोग ये अपराधी, तो इसके लिए क्या कोई ये किसी युद्ध से कम है क्या ये?
0: देखिए, बहुत ही महीन और महत्वपूर्ण सवाल है आपका। आज देखिए, इंटरनेट ने भूगोल को इतिहास बना दिया है। तो आप एक राष्ट्र में बैठे हुए इंटरनेट के माध्यम से किसी और राष्ट्र में विद्यमान नागरिकों को टारगेट कर सकते हैं, साइबर फ्रॉड का शिकार बना सकते हैं। इसलिए राष्ट्रीय कानून एक तौर पर अपने आप ही सफिशिएंट नहीं होते इस प्रकार के साइबर फ्रॉड्स को डील करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आपको सूझबूझ और कोऑपरेशन की आवश्यकता होती है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज की तारीख में भी कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून आज साइबर लॉ का नहीं है जो मौजूद है। 2015 में जब मैं संयुक्त राष्ट्र को संबोधित कर रहा था, तब मैंने प्रस्ताव दिया था कि आज आवश्यकता है दुनिया को एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन की ऑन साइबर लॉ एंड साइबर सिक्योरिटी। लेकिन वो सन था 2015 और शायद वो समय से बहुत एडवांस वाला आइडिया आया था, तो राष्ट्र उसको बाइट करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अब देखिए, ठीक उसी दिशा में अब संयुक्त राष्ट्र ने अब एक नई संधि को ओपन किया है, इट्स कॉल्ड द यूनाइटेड नेशंस आईसीटी कन्वेंशन टू प्रिवेंट द मिसयूज फॉर क्रिमिनल और इलीगल पर्पसेस। अब वो एक नई प्रकार की संधि आ गई है, उसके लिए हस्ताक्षर के लिए रेटिफिकेशन के लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं। बाय द टाइम कंट्रीज उसको अडॉप्ट करेंगी थोड़ा समय लग जाएगा, बट शायद ये दुनिया की पहली ऐसी अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी हो जाएगी जो एक साइबर लॉ इंटरनेशनल लॉ का काम कर सके। इससे पहले केवल

0: बुदापेस्ट कन्वेंशन रही थी 2001 में, लेकिन वो केवल एक स्थानीय ट्रीटी थी और यूरोपियन यूनियन की ट्रीटी थी, बहुत से राष्ट्र इसका हिस्सा नहीं थे, भारत भी उसका हिस्सा नहीं था। तो आवश्यकता तो ये है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि आजकल राष्ट्र और उनकी सरकारें इतनी ज़्यादा संकीर्णता से देश सोचती हैं कि उन्हें ब्रॉडर पिक्चर अक्सर नज़र नहीं आता। हर सरकार कहती है, हर राष्ट्र कहता है कि भैया मुझे आज की अपनी वर्तमान स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को देखना है, मुझे ग्लोबल कोऑपरेशन को नहीं देखना। यही कारणवश है कि हम अभी तक कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून इस पर बनाकर नहीं लेकर आ पाए हैं, लेकिन अब मुझे लगता है और समय की तुलना में और ज्यादा आवश्यकता हो गई है इस प्रकार के कानून को लाने की,
1: और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इस तरह का कानून बन जाएगा।
0: जी,
1: एक और श्रोता जुड़ गए हैं हमारे साथ महाराष्ट्र से, विजय कुमार। विजय जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: मुकेश कुमार जी नमस्कार।
1: जी नमस्कार जी, पूछिए क्या सवाल है।
2: नमस्कार
1: जी।
0: जी नमस्कार,
2: मैं विजय कुमार स्वामी, गांव बस्तवार, छत्तीसगढ़, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ।
1: जी
2: जी सर, मैं ब्लाइंड हूँ 100%।
1: जी,
2: मेरा बटन का फोन है।
1: वेरी गुड।
2: और ये बटन के फोन में तो धोखाधड़ी हो सकती है, ये सवाल मेरा है।
0: देखिए, धोखाधड़ी तो कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहाँ नहीं हो सकते।
1: बिल्कुल,
0: तो धोखाधड़ी तो हर जगह हो सकती है, लेकिन आपका बटन वाला फोन है तो संभावित तौर पर स्मार्टफोन की तुलना में ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि वो वही काम कर रहा है जिसको जिसका उद्देश्य बनाया गया है इसको काम करने के लिए। तो आप सुरक्षित तो हैं, लेकिन कोशिश करें अपना फोन किसी के हाथ में ना दें, क्योंकि अगर वो उसका दुरुपयोग कर पाएगा तो हो सकता है आप फ्रॉड के शिकार हो पाए। बॉटम लाइन आज ये है कि हमें जो कुछ करना है खुद करना है, अपना हाथ जगन्नाथ, किसी पर विश्वास, किसी पर आश्रित रहना नहीं है। और ये स्मार्टफोन्स तो इसलिए आजकल सरदर्दी का सबब बन गए हैं क्योंकि स्मार्टफोन्स केवल आपसे फोन नहीं करते, कैमरे नहीं है, ये सिटिंग टाइम बॉम्ब्स हैं, लगातार हमारी हर प्रकार की जानकारी को सुनते रहते हैं और फिर डेटा आपकी इजाजत के बगैर आपके सिस्टम से बाहर निकाल के बाहर भेजते हैं, बेचते हैं। और फिर यही कारणवश है, देखिए मैं आज स्टूडियो में बैठ के मुकेश जी से बात कर रहा हूँ, उन्हें कह रहा हूँ कल सुबह मुझे बॉम्बे जाना है, मेरा फोन सुन रहा है, अगले 5 मिनट बाद मेरे फोन पर ये एडवर्टाइजमेंट आनी शुरू हो जाएगी कि साहब बॉम्बे की चीप फ्लाइट्स ले लीजिए या ये यहाँ पर चीप होटल मिल जाएंगे। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बातें हमारी कॉन्स्टेंटली सुन रहे हैं। तो अब जब आप बटन वाला फोन इस्तेमाल करते हैं तो वो फीचर फोन होता है, फीचर फोन आज की तारीख में सबसे ज्यादा सुरक्षित है क्योंकि वो केवल फोन का काम करता है, कोई और नहीं करता। फिर भी जागरूकता सूझबूझ ही एकमात्र आपके लिए मंत्र रहता है।
1: पवन जी, अगर पैसे चले गए हैं तो सबसे पहले 3 काम क्या करने होते हैं? 1930 पे हेल्पलाइन नंबर पे फोन करते हैं, cybercrime.gov.in पर हम दर्ज कराते हैं, और बैंक को कब कॉल करें?
0: देखिए, जब सबसे पहले जब आपको पता लगे कि आपके पैसे गए
1: जी,
0: तो पैनिक नहीं करना, घबराना नहीं है, हताश नहीं होना, पहली चीज। दूसरी चीज, वो कहते हैं ना कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, कि आपका कर्म प्रधान जीवन है, तो इस संदर्भ में आपको तुरंत सबसे पहले 1930 कॉल करना है। कॉल करना इसलिए है क्योंकि द मोमेंट आपके पैसे गए हैं, आपके पैसे अभी भी शायद बैंकिंग चैनल में होंगे, तो अगर आपने उन्हें कॉल कर दिया और फोन उन्होंने उठा लिया और उन्होंने देखा कि उनके सिस्टम में नजर आ रहा है कि आपके पैसे बैंकिंग चैनल में हैं, तो आपके बैंक के पैसों को फ्रीज कर देंगे और 2-3 हफ्ते में पैसा वापस आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो कुछ करें या ना करें, द मोमेंट पता लगे फ्रॉड हो, पानी भी नहीं पीना है, आपने तुरंत 1930 कॉल करना है। अगर वहां फोन नहीं लग रहा है तो दूसरा विकल्प है, आप तुरंत cybercrime.gov.in पर जाना है। अक्सर बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि चलो भैया बैंक से पैसा निकला, बैंक में जाना चाहिए। भाई बैंक जाते जाते आधा पौना घंटा लग जाएगा, तब तक तो चिड़िया चुग गई खेत वाली कहानी हो जाती है। आज की तारीख में ना, पहले हम कहते थे गोल्डन आवर होता है 60 मिनट, जब आपको पता लगता है कि आप क्या फ्रॉड हुआ है। अब हम कहते हैं कि गोल्डन आवर श्रिंक हो गया है 10 मिनट में। अगर आपने पहले 10 मिनट में शिकायत कर दी, एक्शन ले लिया, तो हो सकता है आपका पैसा बच जाए, क्योंकि आज साइबर क्रिमिनल्स 10 मिनटों में ही आपके पैसे को आपके अकाउंट से बाहर ले जाते हैं, सलामी ट्रांजैक्शंस करते हैं और फिर म्यूल अकाउंट्स के माध्यम से कैश विड्रॉल कर लेते हैं। और एक बार आपके अकाउंट से कैश विड्रॉल हो गया तो फिर पैसा वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है।
1: एक और श्रोता जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, राजेश। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है।
3: जी, मैं आपका और उपस्थित विशेषज्ञ का बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ।
1: जी नमस्कार।
3: और मेरा सवाल ये है, मैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो बुजुर्ग रहते हैं और महिलाएं होती हैं, यदि किसी कारणवश उनके साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है तो कहाँ पर अपना बयान दें और कहाँ पर अपनी शिकायत लेकर जाएं, थोड़ा सा बताइएगा।
0: देखिए, अगर आप ग्रामीण इलाकों में हैं, महिलाएं हैं, तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आज केंद्रीय सरकार आपको कहती है कि साहब कुछ ना करिए, आप

0: घर बैठे अपने ही फोन से तुरंत नंबर कॉल करिए 1930। कहीं धक्के खाने की आवश्यकता नहीं, वहां आपका केस दर्ज भी हो जाएगा ऑनलाइन, आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगी। ना करना चाहें और वो फोन ना उठे तो आप cybercrime.gov.in पे जा सकते हैं और वहां पर भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि साहब हमें कहीं ना कहीं थाने जाना है
1: जी,
0: और भाई थाने जाने में करीबन आधा पौना घंटा घंटा लग जाएगा, तब तक जितने पैसे हैं सब निकल चुके होंगे। तो थाने जाने की जल्दबाजी ना करें, अपना बयान देने की जल्दबाजी ना करें। भाई जब आग लगी है तो सबसे पहले आग को बुझाना है। आज जब पैसे गए हैं तो सबसे पहले दायित्व बनता है कि हम कैप्चर करें क्या वो बैंकिंग चैनल में है। अगर कहीं पर भी है तो उस बैंकिंग चैनल में उस पैसे को फ्रीज कराना है। एक बार फ्रीज हो जाएगा अपने वापस आ जाएगा। हाँ, एक बार आपने 1930 पर या cybercrime.gov.in पर शिकायत कर दी, कोई दिक्कत की बात नहीं, उसके बाद आप बैंक जाइए, लिखित में शिकायत कर दीजिए और ये जो आपने ऑनलाइन शिकायत करी है उसका रेफरेंस नंबर भी आप जरूर दे दीजिए, सो दैट बैंक को पता लग जाए कि साहब आप हवाबाजी नहीं कर रहे। अक्सर क्या करते हैं, बैंक आपको डरा देते हैं, धमका देते हैं, दौड़ा देते हैं, भाग जाओ कि तुम्हारी गलती है, तुमने गलत काम किया था। भाई आज आपका पैसा आपकी गाड़ी कमाई है, अगर वो आपके अकाउंट से आपकी इजाजत के बगैर निकला है तो साइबर क्राइम है, 3 साल की सजा है, 5 लाख रुपए जुर्माना है, धारा 66 भारत की सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत। साथ ही साथ ये बैंक जो है ये इंटरमीडियरीज है, उनका दायित्व बनता है कि जब द मोमेंट आप बताएं कि साहब मेरा ये अनऑथराइज ट्रांजेक्शन गया है, तब दायित्व उनके ऊपर होता है कि वो देखें कि साहब ये ट्रांजेक्शन कैसे हुआ है।
1: बिल्कुल।
0: और वो ये नहीं कह सकते कि साहब आपने यूजर आईडी पासवर्ड इस्तेमाल किया है, ओटीपी इस्तेमाल किया, क्यों, क्योंकि वो ओटीपी का दुरुपयोग हुआ है। बहुत सारे बैंक आपको जलेबी की तरह घुमाते हैं, लेकिन आपको घूमने की आवश्यकता नहीं, वहां जाइए बैठ जाइए कि साहब आपका दायित्व बनता है, आपकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप ये पैसे दिलाइए, वरना इस पैसे की आपकी जो क्लेम होता है आप बैंक से मांग सकते हैं। क्योंकि देखिए बैंक की आवश्यकता कानून में होती है कि वो ड्यू डिलीजेंस सावधानी करे जब वो अपनी ऑब्लिगेशंस या ड्यूटियों का निर्वाह कर रहा है, यह है सेक्शन 79 भारत के आईटी एक्ट के तहत। और अगर वो नहीं करता है तो कानून कहता है जिम्मेवारी पैसा वापस दिलाने की बैंक की है। तो आप हताश ना होइए अगर बैंक आपको दाएं बाएं करे, आपको बैंक को कहना है कि साहब मेरा ट्रांजैक्शन नहीं है या अनावश्यक तरीके से इस्तेमाल किया गया है, ये मेरी ऑनलाइन कंप्लेंट है, आप मुझे पैसा दीजिए, अगर मेरा पैसा चला गया तो मेरे पैसे की भरपाई करने की जिम्मेवारी भी आपकी है।
1: बिल्कुल। एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, राम जी। राम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछें क्या सवाल है।
2: जी जी नमस्कार सर जी, बहुत अच्छा विशेषज्ञ लोग जानकारी दे रहे हैं, अभी कह रहे थे कि अगर आप सो गए तो बिल्ली दूध पी जाएगी तो बहुत अच्छा लग रहा था।
1: जी जी सवाल पूछिए।
2: जी प्रश्न कुछ इस तरह से है कि हमारा यूज करने वाला मोबाइल और सिम गुम हो गया है और उसके साथ साथ वो बैंक से जुड़ा हुआ है
0: जी,
2: तो उसमें भी ना पैसा निकल जाने की व्यवस्था हो सकती है, तो हम क्या करें क्या ना करें, अगर मोबाइल हमारा गुम गया तो कितना जल्दी हम क्या करें ना करें, यही जानकारी हम लेना चाह रहे हैं सर जी।
0: जिस वक्त पर आपको पता लगे कि आपको मोबाइल फोन गुम हुआ है या अवेलेबल नहीं है, तुरंत सबसे पहले आपने अपने मोबाइल कंपनी को कॉल करना है और उन्हें कहना है कि मेरा फोन नहीं मिल रहा है, मेरा सिम को ब्लॉक करिए, क्योंकि आपकी सिम के साथ आपके बैंक अकाउंट जुड़े हैं, ट्रांजैक्शंस जुड़े हुए हैं। तो द मोमेंट आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा उसका सीधा असर ये होगा कि कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शंस आपके साथ नहीं हो सकती। आजकल ना बहुत ये सिम स्वैप फ्रॉड्स होते हैं, आपका फ़ोन चुराते हैं, फिर आपके नाम पर आपकी झूठी आईडी बनाकर वो डुप्लीकेट सिम ले लेते हैं, और फिर डुप्लीकेट सिम का मतलब ये होता है कि जितने सारे ओटीपीज आपके अकाउंटों में जाने हैं, आपके फ़ोन पे आने हैं, वो उनके पास आने शुरू हो जाते हैं और आपका बैंक धीरे धीरे अकाउंट खाली हो जाता है। तो एक्शन तुरंत लेना है, एक बार आपने इन्फॉर्म कर दिया इस टेलीकॉम कंपनी को, उसके बाद तुरंत आप कॉल करिए 1930 पर, क्योंकि ये जो फ़ोन का चोरी करना ये भी एक दंडनीय अपराध है धारा 66 बी भारत के आईटी एक्ट में, और ऑफ कोर्स भारतीय न्याय संहिता के अंदर तो ये चोरी के अंदर आता ही है, तो आप इसे ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकते हैं। ब्लॉक करवाना ज़रूरी है और डुप्लीकेट सिम बाद में इंश्योर का ले लीजिए, इशू करा लीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि जो कुछ करना है जल्दी करें।
1: एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं शिमला से, राकेश। राकेश जी क्या सवाल है आपका?
3: जी नमस्कार, मैं राकेश बात कर रहा हूँ कोटखाई शिमला
1: जी,
3: और मेरा ये प्रश्न है जैसे कि दिव्यांग व्यक्ति है, अगर उनसे अगर साइबर क्राइम में अगर आप गए हैं किसी कारणवश तो वो किस तरह से जो है बच सकते हैं?
0: देखिए अगर आप इस श्रेणी में आते हैं तो बचने का तो एकमात्र तरीका यह है कि आपको सावधानी जो है ना अपने रोज़मर्रा के जीवन में हिस्सा बनानी पड़ेगी। दूसरा, हम लोगों की मानसिकता ऐसे होती है कि साहब मैं अपने फ़ोन पर कुछ भी

0: कुछ गड़बड़ होगी तो सरकार की जिम्मेवारी होगी। भाई सरकार तो काम कर ही रही है, लेकिन अब हमको नागरिक होने के नाते कहीं ना कहीं आवश्यकता होगी कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करें। बेसिकली सतर्क रहिए, सावधान रहिए, ये एकमात्र तरीका है जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन फ्रॉड्स और विभिन्न प्रकार के साइबर क्राइम के शिकार होने से बच सकते हैं।
1: बिल्कुल, और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हम इस चर्चा को यहीं पर विराम दें। तो दोस्तों आज हमने जाना कि डिजिटल दुनिया में सतर्क रहना कितना आवश्यक है। याद रखिए तीन बातें। पहला, कोई भी OTP CVV पिन फोन पर मत बताइए। दूसरा, कभी भी किसी लिंक पर बिना सोचे समझे क्लिक मत कीजिए। और तीसरा, धोखा हो जाए तो तुरंत डायल कीजिए 1930 साइबर हेल्पलाइन। सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए, क्योंकि डिजिटल नागरिक सुरक्षित नागरिक है। आज के पब्लिक स्पीक में इतना ही। हम अपने सभी श्रोताओं का जिन हमसे आज जुड़े हैं और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ पवन दुग्गल जी का आभार व्यक्त करते हैं। पवन जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत सारी जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: तो आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsgtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात 9:30 किसी और नए मुद्दे पर चर्चा के लिए उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए मुकेश कुमार को कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाले विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया से एक महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
1: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
0: राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं हो सका। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा में भाग न लेने का आरोप लगाया। उधर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के संबंध में सदन में सरकार से बयान की मांग की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एफआईआर बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर से जीत ली है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हराया। उधर जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट जीत ली है। ये सीट भाजपा का गढ़ रही है और 1995 से पार्टी कभी भी इस सीट से नहीं हारी है। श्री किशोर ने भाजपा के नीरज कुमार को 19,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराया। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा गुप्ता तीसरे स्थान पर रही। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक वोट

से हराया। कर्नाटक में आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बेंगलुरु के लोकभवन में एक समारोह में 19 विधायकों को पद की शपथ दिलाई। अब राज्य मंत्रिमंडल में 33 सदस्य हो गए हैं। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 3 जून को 13 अन्य मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया था। कांग्रेस द्वारा घोषित एकमात्र महिला विधायक गायत्री शांतिगोड़ा ने आज शपथ नहीं ली है। एक अन्य विधायक मनकला वैद्या की जगह अंतिम समय में एसएस मल्लिकार्जुन को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी अगले 3 से 4 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप, उत्तर आंतरिक कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, विदर्भ और पूर्वोत्तर क्षेत्र में कल तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ तूफान की आशंका है। युवा साइकिलिंग खिलाड़ी हर्षिता झाकड़ ने स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में भाग लिया। हर्षिता इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला हैं। उन्होंने प्रतियोगिता के दूसरे चरण की औपचारिक शुरुआत में विभिन्न देशों के 8 खिलाड़ियों के समूह का नेतृत्व किया। अब उनकी नज़र 2026 एशियाई खेलों में शीर्ष 10 पर अपनी जगह बनाने पर होगी। साथ ही वे 2030 राष्ट्रमंडल खेलों में भी पदक पक्का करना चाहेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Bengaluru, D.K. Shivkumar assumed office as Chief Minister on 3rd of June, along with 13 other ministers. His cabinet size has now reached 33. The only woman legislator announced by All India Congress Committee, Gayatri Shantigowda, was not sworn in today, and another legislator, Mankala Vaidya, was replaced by S.S. Mallikarjun at the last moment. Former Chief Minister Siddaramaiah was conspicuous with his absence at the swearing-in ceremony. The Tamil Nadu government has approached the Supreme Court seeking directions to the Karnataka government for immediate release of the share of Kaveri water to Tamil Nadu. Tamil Nadu government alleges that the quantum allocated to it by the Kaveri Water Regulation Committee, as well as that released by its neighbour Karnataka, was far less. A committee meeting held on the 28th of last month directed the Karnataka to release 3,500 cu6 for 15 days starting 29th of July, an order which was upheld by the Kaveri Water Management Authority later. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today held a meeting with Uzbekistan's Foreign Minister Bakhtiyor Saidov in Delhi. He highlighted that bilateral relations between India and Uzbekistan have expanded over the years and span a diverse range of domains today. Mr. Saidov also called on President Draupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan. The IMD has issued a red alert for heavy to very heavy rainfall over Assam, Meghalaya, sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till tomorrow. Heavy rainfall is also expected in Arunachal Pradesh, Nagaland and Bihar over the next 2 days and in Delhi, Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Ladakh, Uttar Pradesh during the next 3 to 4 days. And that is the end of this news bulletin.
1: Namaskar. आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं सरफिरोजी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हालात बिगड़े, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों ने फिर गोलीबारी की। ईरान ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्धारित वार्ता के दावे के विपरीत अमेरिका के साथ जारी किसी भी वार्ता से इनकार किया। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदोव बख्तियार ओडिलोविच ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने पर चर्चा की। और युवा साइकिल चालक हर्षिता जाखड़ स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला बनी। अब समाचार विस्तार से। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में सुरक्षा बलों के कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। पीओजेके से मिली रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा बलों ने आधी रात को प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करते हुए रावलकोट में गोलीबारी की। एक रिपोर्ट।
2: खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी उस समय हुई जब बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे प्रदर्शन में शामिल थे। कई महिलाएं और बच्चे पिछले 50 दिन से प्रदर्शन स्थल पर मौजूद हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों से लोग इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं और अब ये प्रदर्शन पूरे क्षेत्र में तेजी से फैल रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद द्वारा कल तक जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदर्शन में 80 लोग मारे गए हैं। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और राजनीतिक मिशनों से उपलब्ध फुटेज की जांच करने और हिंसा की तत्काल स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए दबाव डालने की अपील की है। ये प्रदर्शन क्षेत्र के लोगों द्वारा बेहतर सुविधाओं और अधिक विकास की मांग के साथ शुरू हुए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ उसकी कोई बातचीत नहीं चल रही है और न ही किसी बैठक की तैयारी है। ये बयान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान के साथ मध्यस्थों के जरिए बातचीत होने वाली है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर की कोशिशों से हुई बातचीत के बाद उन्होंने ईरान पर प्रस्तावित बड़े हमले को रोक दिया है, लेकिन ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने इस दावे को गलत बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ कोई वार्ता नहीं हो रही है और न ही कोई बैठक तय है। उन्होंने बताया कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची को छोड़कर बाकी सभी वार्ताकार ईरान में हैं। बघाई के अनुसार इस समय केवल ओमान के साथ हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जुड़े मुद्दों पर बातचीत जारी है। दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह।
1: रोम स्थित रूस के दूतावास ने मॉस्को के एक रेस्तरां में हुए बम विस्फोट के लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया है।

0: दूतावास ने इसे रूस में रह रहे इतालवी समुदाय को डराने का प्रयास बताया। दूतावास के अनुसार शनिवार रात हुए इस विस्फोट में 5 लोगों की मौत हो गई और 19 अन्य घायल हुए हैं। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने इस घटना को क्रूर आतंकवादी हमला बताया। हालांकि यूक्रेन की ओर से इस आरोप पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस बीच यूक्रेन ने रूस के कई क्षेत्रों में सैन्य, ऊर्जा और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर व्यापक ड्रोन हमले किए हैं, जिनमें 8 लोगों के मारे जाने की खबर है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनकी सेना ने एंगेल स्थित उस सैन्य हवाई अड्डे को निशाना बनाया जहां रूस के लंबी दूरी के बम वर्षक विमान तैनात हैं। इसके अलावा सारातोव के एक तेल शोधक संयंत्र पर भी हमला किया गया। यूक्रेन ने यह भी दावा किया है कि उसकी सेना ने रूस के पश्चिमी कलुगा क्षेत्र में तेल डिपो पर हमला किया, जिससे वहां आग लग गई। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। उज्बेकिस्तान गणराज्य के विदेश मंत्री सैदोव बख्तियार ओडिलोविच ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। श्री ओडिलोविच और उनके प्रतिनिधि मंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंध हैं। उन्होंने कहा कि वास्तुकला, भाषा, भोजन, संगीत और धार्मिक परंपराओं में साझा विरासत ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत किया है। दोनों देशों के हजारों अधिकारी, पेशेवर और छात्र एक दूसरे के देश में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जिससे दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंध वर्षों पुराने हैं और ये संबंध निर्माण, ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित विविध क्षेत्रों में फैले हुए हैं। दिल्ली में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव के साथ बैठक के दौरान अपने संबोधन में डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों, विशेष रूप से आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में समान विचार हैं। उन्होंने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान शंघाई सहयोग संगठन सहित कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग करते हैं। श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान सरकार और जनता द्वारा आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए उठाए गए दृढ़ रुख की सराहना करता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में उज्बेकिस्तान के निवेश, उद्योग एवं व्यापार मंत्री लजीज कुद्रतोव से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, निवेश, दवा उद्योग, संपर्क, डिजिटल प्रौद्योगिकी और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि इस बातचीत का उद्देश्य भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और नागरिक विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय नागरिक सेवा दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इससे सुरक्षा और तकनीकी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान होगा।
1: आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विस दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब उद्देश्य एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
0: ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक आज लखनऊ में शुरू हुई। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों के साथ नीति निर्माता, विशेषज्ञ, शिक्षाविद और अन्य क्षेत्र के लोग शामिल हुए। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता कल से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो रही है। तन्वी शर्मा और किदाम्बी श्रीकांत इस BWF सुपर 300 प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। तन्वी ने कल ही समाप्त हुए ताइपे ओपन का महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। एक रिपोर्ट।
2: ताइपे ओपन का महिला सिंगल्स का खिताब जीतने वाली तन्वी शर्मा अब कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगी। उनके अलावा अनमोल खरब, मालविका बंसोड, इशरानी बरुआ, श्रेयांशी वली शेट्टी, रक्षिता रामराज, अश्मिता चालिहा, तान्या हेमंत, आकर्षी कश्यप और मानसी सिंह भी

0: महिला सिंगल्स दल का हिस्सा हैं। वहीं पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत, किरण जॉर्ज, थारून मन्नेपल्ली, मिथुन मंजुनाथ, रौनक चौहान और सनी दयानंद पर नजरें होंगी, जबकि एस शंकर सुब्रमण्यन और तुषार सुवीर क्वालिफायर के रास्ते मुख्य ड्रॉ की राह तलाशेंगे। भारत ने पुरुष डबल्स में 3 और महिला डबल्स में 2 जोड़ियों को उतारा है, जबकि मिक्स डबल्स में भारत की 3 जोड़ियां मैदान में हैं। विश्व दर्पण के लिए मैं दिव्या तोमर।
1: युवा साइकिलिंग खिलाड़ी हर्षिता जाखड़ ने स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में भाग लिया। हर्षिता इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला हैं। उन्होंने प्रतियोगिता के दूसरे चरण की औपचारिक शुरुआत में विभिन्न देशों के 8 खिलाड़ियों के समूह का नेतृत्व किया। उनकी नज़र 2026 एशियाई खेलों में शीर्ष 10 में जगह पक्की करने और 2030 राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने पर होगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस फर्जी खबर का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि दूध में मिलावट को तेजी से नहीं रोका गया तो इससे भारत की 87% आबादी को कैंसर हो जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को गलत बताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हालात बिगड़े। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों ने फिर गोलीबारी की। ईरान ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्धारित वार्ता के दावे के विपरीत अमेरिका के साथ जारी किसी भी वार्ता से इनकार किया। और युवा साइकिल चालक हर्षिता जाखड़ स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला बनी। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am R.S. Raghu with the World News. The headlines. Situation in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir worsens as security forces again open fire on peaceful demonstrators. Iran denies any ongoing U.S. talks, contradicting President Donald Trump's claim of scheduled negotiations. Uzbekistan Foreign Affairs Minister Saidov Baxtiyor Uzilovich calls on President Draupadi Murmu in New Delhi to boost bilateral ties. And young cyclist Harshita Jakhar becomes first Indian woman to feature at Tour de France Femmes in Switzerland. The situation in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, POJK, worsened overnight as protesters refused to disperse and security forces allegedly opened fire on demonstrators. Reports from POJK said that the security forces launched a midnight crackdown on protesters with gunfire reported in Rawalkot. An intelligence bureau official said the reported gunfire came as scores of women and children joined the ongoing protest. Report.
3: Many women and children have remained at the protest site for the past 50 days, with dozens more joining them yesterday. People from across POJK have joined the agitation, which is now spreading rapidly across the region. According to data updated by the Human Rights Council of Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, as of yesterday, a total of 80 casualties have been documented. Joint Awami Action Committee, JAAC, has appealed to the international organizations and diplomatic missions to examine available footage and press for an immediate, independent and impartial investigation into the violence. The protest began with the people of the region asking for better amenities and more development. Protesters have now announced plans to march to Muzaffarabad to voice their opposition to what they describe as a heavily manipulated election. They allege that Pakistan's extensive interference in the administration of POJK has undermined the democratic process and left the region with little or no development. Swati Rakheja for World News.
2: Iran said today there were no talks under way with the United States and no plans for any meetings, contradicting US President Donald Trump, who had said that negotiations with Iran through intermediaries are scheduled to take place today. Speaking to reporters on board Air Force One, Mr. Trump had said that diplomatic engagements involving Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Qatar and Iran led him to halt what was originally planned as massive attack. However, Iran's foreign ministry spokesman Ismail Baghi rejected the claim, saying no

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
1: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
0: राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं हो सका। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग न लेने का आरोप लगाया। उधर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के संबंध में सदन में सरकार से बयान की मांग की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एफआईआर बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीत ली है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हरा दिया। उधर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की बाकीपुर विधानसभा सीट जीत ली है। ये सीट भाजपा का गढ़ रही है और 1995 से पार्टी कभी भी इस सीट से नहीं हारी थी। श्री किशोर ने भाजपा के नीरज कुमार को 19,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा गुप्ता तीसरे स्थान पर रही। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक मतों से हराया। कर्नाटक में आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बेंगलुरु के लोकभवन में एक सादे समारोह में 19 विधायकों को पद की शपथ दिलाई। अब राज्य मंत्रिमंडल में 33 सदस्य हो गए हैं। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 3 जून को 13 अन्य मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया था। कांग्रेस द्वारा

0: Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Monday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on your market-related queries. But do remember that we do not address stock or company-specific queries. You can call us on 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, listeners, do remember to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. I am Anubha Rohatki with my co-anchor Prachi Priya.
1: नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका अभिनंदन. हर सोमवार की तरह आज भी हम आपके प्रश्नों को सीधा कार्यक्रम में शामिल करेंगे. व्यापार, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी सवाल पूछने के लिए आप हमें डायल कीजिए 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106 पर. दिल्ली से जो बाहर के श्रोता हैं, वो इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. लेकिन याद रखें श्रोताओं कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे. चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं मार्केट विशेषज्ञ शरद कोहली. शरद जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
2: धन्यवाद प्राची, धन्यवाद अनुभव और सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन.
1: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां.
0: थैंक यू प्राची. Benchmark domestic indices rise. Sensex adds nearly 550 points. Nifty settles above 24,700. In Asian markets, South Korea's Kospi slips over 5%. And global crude oil prices tumble.
1: देश के प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में बढ़त. सेंसेक्स 550 अंक से अधिक बढ़ा. निफ्टी 24,700 पर बंद हुआ. एशियाई शेयर सूचकांकों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 5% से अधिक फिसला और दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई.
0: And before we begin the program, an important announcement. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. Prachi.
1: और श्रोताओं, आइए अब जानते हैं कि दिन के अंतराल में हमारे प्रमुख शेयर सूचकांकों ने किस तरीके का व्यवहार किया. घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख शेयर सूचकांक लगातार चौथे दिन बढ़त के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 544 अंक यानी 0.7% बढ़कर 78,639 पर बंद हुआ. निफ्टी 391 अंक यानी 1.6% की बढ़त के साथ 24,774 पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप सूचकांक 1.2% और स्मॉल कैप सूचकांक 1.3% बढ़ा.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस एंडेड इन पॉजिटिव जोन फॉर द फोर्थ

0: rate session today. The Sensex rose 544 points or 0.7% to close at 78,639. The Nifty surged 391 points or 1.6% to settle at 24,774. In the broader market at the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 Index jumped 1.2% and the Small-Cap 100 Index gained 1.3%.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 21 कंपनियों के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई. सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में इंडिगो 4.2%, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 3.5% से अधिक और इन्फोसिस में 3.5% की बढ़ोतरी हुई. वहीं खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में सनफार्मा 2%, भारती एयरटेल और मारुति 1% और टाटा स्टील में लगभग 0.5% की गिरावट आई.
0: In the sectoral indices on the BSE, 26 out of 28 sectors ended in positive zone. Among the top gainers, IT as well as focused IT advanced 2.7%, services rose 2% and industrials gained 1.3%. In contrast, hospitals lost 0.6% and healthcare dipped 0.2%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,837 companies advanced, shares of 1,552 companies declined and shares of 206 companies remained unchanged.
1: और अब जान लेते हैं रुपए का हाल. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज 5 पैसे मजबूत होकर 1 अमरीकी डॉलर के मुकाबले 95 रुपए 34 पैसे पर बंद हुआ. शरद जी, हमने हम अगर आगे की बात ना भी करें कि किस तरीके से आगे आने वाले समय में जो बाजार है उसकी चाल रहेगी, अगर हम तथापि आज की बात करें तो आज की परिदृश्य में आप किस तरीके से देखते हैं कि जो मार्केट है वो हमें क्या संदेश देना चाह रहा है, निवेशकों को खास करके जो नए तौर पर जुड़ना चाह रहे हैं?
2: देखिए, बहुत समय बाद मार्केट ने ये जो आज लेवल पे क्लोज हुआ है जिसका अभी आप जिक्र कर रही थी, तो वो लेवल बहुत समय से इंतजार था. 24,500 निफ्टी की बात करें तो 24,500 के आसपास घूम रहा था और उससे ऊपर जाने में स्ट्रगल कर रहा था जब जब वहां जाता था. तो मुझे लगता है मिडिल ईस्ट से जो संदेश आया है, वॉर से ये जो एक तरह से विराम लगा है
1: जी,
2: मैं इसको ऐसे कहूंगा कि विराम की एक उम्मीद बनी है, क्योंकि पिछले 5 महीनों में ना जाने कितनी बार हम ये लगता था कि अब समझौता हो गया, अब अटैक नहीं होगा, अब होगा फिर नहीं होगा, फिर इधर से कुछ थ्रेट आता था, उधर से कोई धमकी आती थी. तो मुझे लग रहा है कि उम्मीद ये करते हैं कि थोड़ी वॉर फटीग अब जैसे आ रही है, तो अगर वॉर फटीक आ रही है तो ये वहां पर थोड़ा सा मामला ठंडा पड़ेगा और मार्केट इसी का इंतजार कर रहा है. मार्केट को देखिए, मार्केट में एक जो अनिश्चितता का माहौल बना था, और मुझे लगता है सभी लोगों को इसको जानना चाहिए, मार्केट अच्छी खबर को सेलिब्रेट करता है, बुरी खबर को भी हजम कर जाता है, पर एक चीज जो नहीं हजम होती है वो है अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी. तो ये जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है, पता नहीं युद्ध कब तक चलेगा, रुकेगा कि नहीं रुकेगा और कहां तक फैलेगा, इसको लेके मार्केट अभी भी मैं कहूंगा कि थोड़ा सा सोच समझ के चलने की जरूरत है. इसमें बहुत ज्यादा इमोशनल हमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले भी पिछले 5 महीनों में ऐसा कई बार हुआ है कि युद्ध रुकने की घोषणा हुई, रुका भी रहा, पर फिर उसके बाद कुछ हो गया. तो आई थिंक अभी भी फूक फूक के पग धरने की जरूरत है, पर एक खुशखबरी जैसा आप कह रही हैं, आज बात करें तो जरूर है.
0: Of course, we will continue with this discussion, Sharad ji. But before that, let me repeat the numbers. Prachi, if you'll just repeat the numbers for our listeners, where they can call us with their queries.
1: बिल्कुल श्रोताओं, आप हमें कॉल करिए, कोई भी सवाल आपके मन में हो, व्यापार, अर्थव्यवस्था या शेयर बाजार से जुड़ा हुआ, तो आप हमें कॉल करिए इन नंबरों पर. ये नंबर्स हैं 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106 पर. मार्केट मंत्र है ये प्रोग्राम और हमारे समक्ष जो मार्केट विशेषज्ञ हैं शरद कोहली जी, वो विराजमान हैं. तो अपना कोई भी सवाल बेधड़क पूछिए.
0: शरद जी, लेट्स गेट बैक टू द मार्केट. इफ यू लुक एट द वे द सेंसेक्स एंड द निफ्टी टुडे बिहेव्ड, सेंसेक्स रोज अबाउट 0.7%. इन कॉन्ट्रास्ट वी सॉ निफ्टी सर्जिंग 1.6%. डू यू थिंक इट हैज, एंड इनफैक्ट इफ यू लुक एट इट, द निफ्टी 50 जंप्ड नियरली 200 पॉइंट्स इन जस्ट 2 मिनट्स टुडे. सो इज इट समथिंग टू डू विद द न्यू यू नो दैट रूल दैट हैज कम आउट रिगार्डिंग द क्लोजर ऑफ अवर बिजनेस? If you can just explain to our listeners.
2: Yes, I think the additional 10 minutes added to the derivatives market in NSE did contribute its bit. Because let us try and understand this. Yeah. So what happens is that there is a weighted average which is calculated for half an hour, the last half an hour on the cash section. So what used to happen is that the F&O traders, you know, had to ultimately close their deals on the basis of the price final determination which happened.

0: Now what happened was cash and FNO used to happen together. So that used to lead to a panic.
1: Hmm.
0: So FNO traders did not get any time, sometimes, they never used to get that time, to settle down the prices. Now these additional 10 minutes has allowed the FNO traders to allow the cash section to close down so they can know what the price discovery is and then take a call on whether they want to carry forward the deal or they want to square it up. Yes. So because this was the first day.
1: And it happened only on the NSE.
0: So because this was the first day, Anubha, so what has happened is that, the traders were excited. They wanted to test waters. I think with the flux of time, as the days progress, you will see normalcy will return. You will not see this last minute splurges which happened today.
2: Right. Delhi se hamare saath pehle caller jud rahe hain. Inka naam hai Idris. Ji, karikram.
3: Hello,
2: ji. इद्रीश जी कार्यक्रम में आपका अभिनंदन कृपया अपना सवाल पूछें
3: नमस्कार जी
2: नमस्कार
3: मैं बैंक में गया था वो नंबर लिंक करवाने खाते से
0: हां जी
3: तो मैडम का अंगूठा लगा हुआ है तो वो कह रहे हैं ये नहीं नंबर लिंक नहीं होगा
1: इद्रीश जी आप यहां पर मोबाइल नंबर की बात कर रहे हैं और एक आपसे हम एक रिक्वेस्ट करेंगे अपना रेडियो प्लीज आप पीछे से बंद कर दीजिए
3: अच्छा
1: जी हां हां अब आप बताएं आप किस नंबर की बात कर रहे हैं
3: खाते से नंबर लिंक करवाने गया था
1: अच्छा जी ओके
0: तो उन्होंने आपको कहा कि आपका मैडम का नंबर लिंक्ड है आपकी मतलब आपकी वाइफ
3: मैडम का खाता है उनका अंगूठा लगा हुआ है तो वो कह रहे हैं अंगूठे वालों का नंबर लिंक नहीं होगा
0: अंगूठे वालों का नंबर लिंक नहीं होगा इसका मतलब बैंक वाले ने सिग्नेचर्स के लिए शायद इंसिस्ट किया होगा
1: जी
3: हां जी हां
0: तो आप तो खाता आपकी वाइफ का शायद था शायद आपका नहीं होगा
3: वाइफ का है और उन्हीं का
0: नहीं नंबर तो उनको अगर थंब इंप्रेशन भी है तो नंबर तो उनको लिंक करना ही पड़ेगा क्योंकि ये तो मैंडेटरी आजकल तो इसमें इद्रिस जी मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप बैंक के किसी सीनियर ऑफिसर से मिलें आपकी हमारी आवाज वापस आ रही है फोन से तो आप प्लीज रेडियो सेट की आवाज कम करें तो उससे आपको किसी सीनियर मैनेजर से मिलना चाहिए क्योंकि खाली थंब इंप्रेशन होने का ये मतलब नहीं है कि मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा क्योंकि इवन यू नो आपको मैं अनुभा और प्राची को भी बताऊं कि जो बायोमेट्रिक तो आधार में भी होता है और बायोमेट्रिक आजकल फोन में भी चाहिए होता है तो इसलिए देयर इज नो रीजन मुझे लगता है बैंक वालों को पूरी जानकारी नहीं है इद्रिस जी आप किसी सीनियर मैनेजर से मिलिए और उनको नंबर लिंक करना ही पड़ेगा ये मैंडेटरी आज की जी
1: लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉल अगेन कमिंग इन फ्रॉम दिल्ली अनिल इज ऑनलाइन विद अस अनिल वेलकम टू मार्केट मंत्रा प्लीज आस्क योर क्वेश्चन
4: यस मैम
1: जी
4: कॉलीग सर आई हैव अ स्मॉल क्वेश्चन रिगार्डिंग द एफएनओ पीएनएल टू बी सबमिटेड इन अलोंग विद द रिटर्न
0: श्योर
4: When we submit, we take the net debits and net credits as sales.
0: Yeah.
4: And then take out the profit.
0: Yeah.
4: Isn't it?
0: Yeah, absolutely.
4: So, but the turnover is, you say, it is high, but we are not supposed to take the actual figures of the derivative.
0: Yeah.
4: Right?
0: Yeah.
4: Only loss and profit is to be taken.
0: Absolutely. Absolutely, Anandji. You are spot on. If you take the total, then it will be very, very high. So the net profits and losses or net debits and credits are to be taken. You need not take, I mean, if you, I mean, to make our other listeners understand with your permission, Anubha and Prachi, because what happens is when you take a lot, suppose you're taking it in futures, so the lot size turnover may be very, very high. So that way, you know, somebody who's made probably 30,000-40,000 rupees, he may end up showing a turnover of 60-70 crores. Yes, Anilji, your understanding is absolutely spot on and I don't need to elaborate any further because you're perfectly on track.
2: Jaipur se hamare saath Jitendra jud rahe hain. Jitendra ji, karikram mein aapka abhinandan.
5: Thank you. After this, I think that Nifty 50
1: जितेंद्र जी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है आपसे जी आपसे दोबारा हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप दोबारा अपना सवाल पूछें आराम से जी
2: लगता है हमारा संपर्क टूट गया है कोई बात नहीं अनुभव हम आगे बढ़ते हैं रुक करते हैं एशिया के शेयर सूचकांकों की तरफ एशियाई शेयर बाजार में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स 5% से अधिक और जापान का निकेई सूचकांक लगभग 1% नीचे आया जापान और अमेरिका ने जापानी मुद्रा को 40 वर्षों के निचले स्तर पर गिरने से रोकने के लिए एक समन्वित येन खरीद हस्तक्षेप की पुष्टि की है टोक्यो ने संकेत दिया है कि यदि आवश्यक हुआ तो वह आगे भी कार्रवाई करने को तैयार हैं जापान के वित्त मंत्री ने कहा कि मंत्रालय ने पिछले सप्ताह अमेरिका वित्त विभाग के समन्वय से जापानी येन की खरीद की वित्त मंत्री कातायामा यात्सुकी ने आज एक बयान जारी कर संयुक्त हस्तक्षेप की पुष्टि की

0: And it's a very interesting alliance, you know. I wish this kind of alliance could be there with the rupee as well. But because Japanese yen is amongst the dollar index currencies, so that is why US is intervening in it.
1: So is it the first time we're looking at something like this, or this is a practice, you know, which has been around?
0: No, it has happened earlier as well. Okay. Because there were a few years ago when Japanese yen, in fact, then Japan had deliberately devaluated it. We've seen China has yes. devaluated its yuan in the past. Hmm. So sometimes when you are export driven economy and your currency becomes weak, it becomes beneficial for exporters for that matter.
2: Mumbai se hamare saath is beech Ratnakar jud rahe hain. Ratnakar ji, karyakram mein aapka abhinandan. Kripya apna sawal poochiye.
3: Hello, good evening madam. Mera sawal hai ki pharma sector ke bare mein 100% duty lagane ki baat suni thi
0: ji,
3: to wo pharma sector mein investment karna kaisa uchit rahega kya? वैसा भी अभी आईटी सेक्टर स्ट्रांग हो रहा है, आईटी सेक्टर भी बढ़ रहा है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना कितना अच्छा रहेगा? और दूसरा एक छोटा सवाल है कि मैंने 2023 में एक मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट रखा था स्टेट बैंक में, वो 26 को 1 अगस्त को अभी ड्यू होने वाला था, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो 26 का डिपॉजिट और 29 तक उन्होंने रिन्यू कर दिया, जो मैंने दिया ही नहीं था, तो ऐसे हालत में वो ऑटोमेटिक कैसे रिन्यू हो गया, उसके लिए प्रीमैच्योर क्लोज भी कर सकते हैं?
0: रत्नाकर जी, पहले आपके पहले वाले सवाल पर आते हैं. देखिए, फार्मा सेक्टर पे जो 100% टैरिफ की प्रेसिडेंट ट्रंप ने बात करी है, वो 2 साल बात करी है पहले, तो अभी नहीं लगने वाले हैं. तो अभी मुझे कोई फार्मा सेक्टर में कोई खामी नहीं नजर आती, कोई कमी नहीं नजर आती. आप बहुत आराम से उसमें कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी प्रेसिडेंट ट्रंप की जब बात आती है तो दुनिया भर में अब ये चर्चा है कि वो अपने निर्णय बदल भी देते हैं, और अभी तो 2 साल बहुत दूर है. दूसरा ये भी देखना होगा कि 2028 में तो उनका टर्म ही पूरा हो रहा है, तो इसलिए उसमें फार्मा सेक्टर मुझे कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही. आप अच्छी कंपनीज का चयन करके, ऐसे ही आईटी सेक्टर में भी है जो कंपनीज अच्छी हैं, यहां हम कंपनीज का नाम नहीं लेते, पर जिन कंपनीज के नतीजे अभी अच्छे आए हैं, मुनाफा अच्छा आया है, मार्जिन्स अच्छे आए हैं, उनमें आप निवेश कर सकते हैं. आपका दूसरा सवाल मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट का, ये हुआ क्या होगा, जब आपने डिपॉजिट किया होगा तो उस समय इसमें ऑटोमेटिक रिन्यूअल की ऑप्शन उसमें टिक हो गई होगी, इसीलिए बैंक से वो रिन्यूअल हो गया है. अब आप इसमें से निकलना चाहते हैं तो आप कभी भी निकल सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है. आप जब बैंक को बोलेंगे कि मैंने तो नहीं कराया था, तो आप उसमें से एग्जिट कर सकते हैं. इसमें प्रीमेच्योर एनकैशमेंट पूरी तरह से अलाउड है. आपने को मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट बोला है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई लॉक इन पीरियड, बैंक का कोई भी जो प्रोडक्ट होता है उसमें लॉक इन नहीं होता. ये पोस्ट ऑफिस में देखा जाता है जहां लॉक इन होते हैं, जहां पर आपने एक बार कर दिया तो बहुत जल्दी आप निकल नहीं सकते. तो बिल्कुल रत्नाकर जी, बैंक जाइए, और अगर आप निकालना चाहते, नहीं रखना चाहते, आप इसको बिल्कुल निकाल सकते हैं. कोई दिक्कत हो तो आप मार्केट मंत्रा को बताइएगा, हम आपको इसको और स्पष्ट करेंगे.
1: और जो भी इनकी लास्ट डेट थी उससे जब ये निकालेंगे, तो शरद जी, जैसे कि एक कॉमन प्रैक्टिस है, उनको उतने दिन का इंटरेस्ट उनको और मिल जाएगा.
0: हाँ, पर उसमें कुछ कटौती होगी,
1: कटौती भी होगी, पर
0: उसमें थोड़ा सा पेनल्टी वो लगाते हैं, क्योंकि प्री मेच्योर माना जाता है. पर क्योंकि आप पैसा चाहते हैं, आप तो पैसा यूज करना चाहते होंगे, या कुछ और विकल्प आप ढूंढ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई परेशानी होनी चाहिए.
2: देखते हैं अगला सवाल क्या है. भोपाल से शंकर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं. शंकर जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन. कृपया अपना सवाल पूछिए.
4: नमस्ते शरद कॉलेज जी. सर, मेरा सवाल है कि थोड़ी सी मार्केट में रौनक आई है, क्योंकि ये एफआईआई का आने का सिलसिला शुरू हो गया है
0: जी.
4: तो ये अब डू यू थिंक कि अब ये ट्रंप की, और नवंबर आने वाला है, ट्रंप को थोड़ा सा वहां पे भी थोड़ा सा डर रहेगा उनके इलेक्शन का, तो थोड़ा स्टिमुलेट होगी हमारी मार्केट, and this will be the last time we will be seeing these levels, and we should see higher levels. Kya aapki Nifty ki bare mein guess hai for next say 2 years before Trump retires? Thank you sir.
0: नहीं, ट्रंप शंकर, पहले तो ट्रंप रिटायर नहीं हो रहे हैं. ये जो इलेक्शन होता है नवंबर में, ये मिड टर्म पोल्स कहलाते हैं. ये अमेरिका में दो, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा होता है, वहां पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और उसको सेनेट कहते हैं, और ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव 2 साल का होता है, उनका टर्म पूरा हो रहा है. सेनेट्स में भी कुछ सीट खाली हो रही है, तो वहां उसके बाद अगर मान लीजिए मेजोरिटी रिपब्लिकन्स की नहीं रहती है, तो फिर उसको लेम डक प्रेसिडेंट कहते हैं कि भाई वो अप्रूवल नहीं ले सकते. पर आपका मूल मुद्दा ये था, मैं यहां पर पॉलिटिकल साइंस में चला गया. आपका मूल मुद्दा था कि क्या ये रौनक रहेगी. देखिए, ये अभी हम थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे कि पिछले 5 महीने से ऐसा कई दफे मौका आया जब ऐसा लगा ये जो रौनक शब्द आपने इस्तेमाल किया कि रौनक आ रही है वापस, पर जब भी रौनक आने लगती है तो फिर अब रौनक का उल्टा कुछ होता होगा तो मैं शब्द नहीं बोलना चाहता, वो होने लग जाता है वहां पर। मैं बहुत निराशावादी बात करना नहीं चाहता हूं कि कुछ ना कुछ हमला हो जाता है, कहीं से कोई धमकी आ जाती है, क्रूड ऑयल की प्राइसेस बिगड़ जाती है। तो

0: शंकर, उम्मीद तो यही करते हैं कि अब ये जो रौनक है ये टिके। वाकई हमने शुरू में बात किया 24,700 आज छुआ है, बहुत दिनों बाद ये छुआ है, 25,000 की तरफ निफ्टी की हम उम्मीद करते हैं बढ़े, पर अभी बहुत फूंक फूंक कर पग रखने की जरूरत है, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि 5 महीने का अनुभव ये कहता है कि अनुभव कि ये जो है अभी इस पे पूरी तरह से यकीन करना सोच समझ के
1: थोड़ा जल्दी होगी, थोड़ी जल्दबाजी होगी।
2: बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और दिल्ली से हमारे साथ रवि जुड़ रहे हैं। रवि जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए। रवि जी, आप अगर हमें सुन पा रहे हैं तो कृपया अपने सवाल पूछिए।
3: मार्केट मंत्रा को नमस्कार, मैं जानना चाहूंगा जैसे ईरान और अमेरिका का
1: जी सवाल पूछिए प्लीज।
3: अमेरिका और ईरान का जो युद्ध ड्राम लग रहा है ये कब तक क्लियर होगा?
0: अमेरिका और ईरान का युद्ध विराम लग रहा है कब तक क्लियर होगा? क्लियर होगा मतलब चलता रहेगा, उम्मीद करता हूँ यही पूछ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं सर, उम्मीद पे रवि जी दुनिया कायम है, हम भी कायम है और सारी दुनिया ही ये कोशिश कर रही है, युद्ध किसी के हक में नहीं है, अभी इसी पे चर्चा चल रही है लगातार के उम्मीद करते हैं कि ये चलता रहे, हम तो यही कहेंगे। इस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ रवि जी ने अगर जवाब नहीं भी सुना तो बाद में मार्केट मंत्रा यूट्यूब पे भी डल जाता है, आप उस पे जवाब को कर सकते हैं, तो मैं उसको रिपीट करने से बच रहा हूँ।
1: लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉल। शहनाज इज ऑनलाइन with us from Mumbai. Shehnaz, welcome to Market Mantra. Please ask your question.
4: Hi, good evening to all of you.
1: Good evening. Please.
4: Sharan ji, मुझे ये पूछना है कि मैंने आप बहुत थोड़े दिन पहले आपको बताया था कि मेरे इनकम टैक्स के जो पैन कार्ड है उसमें 18 लाख की कार दिखा रही है 26 AS में, और उसका जो 18,000 भरा भी है वो लोग ने टैक्स, राइट? इफ यू रिमेम्बर, पता नहीं, एनीवेज, तो वो हिसाब से मैंने ये बार जो टैक्स किया भर दिया मैंने ऑलरेडी, तो क्या हुआ विद इन 24 आवर्स मेरे अकाउंट में 18,000 आ गए, विच इज ऑफ कोर्स आई एम नॉट एलिजिबल फॉर दैट, मैंने तो पैसे भरे भी नहीं है, तो क्या आगे चल के उसकी रिकवरी आ सकती है, तो मुझे क्या करना चाहिए आगे?
0: अगर मैं
4: मेरे
0: 24 AS
4: में दिखा रहा था इसलिए मैं वो तो कुछ भी नहीं हुआ, फाइनेंशियल लॉस तो मुझे है ही नहीं, लेकिन जब रिटर्न फाइल किया तो दूसरे ही दिन विद इन 24 आवर्स आई रियली अप्रिशिएट द एफिशिएंसी ऑफ द टैक्स डिपार्टमेंट, मुझे रिफंड आ गया। अभी दूसरी बात ये बतानी है, उसका जवाब आप देना मुझे।
0: शहनाज देखिए, ये ऐसा लगता है कि शहनाज यू डिड नॉट डू दैट ट्रांजैक्शन, आपने वो 18 लाख की गाड़ी नहीं खरीदी, तो ऐसा अक्सर हो जाता है कि गलती से पैन नंबर आपका कोट हो गया और गाड़ी आपके उसमें दिखने लगी, उसमें 1% TDS होता है 10 लाख से ऊपर की, TCS बोलते हैं उसको, टैक्स कलेक्टेबल एट सोर्स, तो 1% का वो जमा करा, आपने रिफंड भी ले लिया। अब मुझे लगता है शहनाज आपको इसको वापस करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि आपका ट्रांजैक्शन ही नहीं है अब, क्योंकि आपके उसमें आया और आपने रिफंड, वैसे आपको कायदे से क्या करना चाहिए था कि आपको अपने रिटर्न फाइल करते टाइम उसको क्लेम नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आपका था नहीं, तो अब हो गया है, तो अब इसको वापस देने के लिए आप तैयार रहिए। मुझे उम्मीद है कि आएगा, क्योंकि आजकल सब डिजिटल प्रोसेस है, वो कभी ना कभी जिसका असल में है वो व्यक्ति जब देखेगा कि मेरे में दिख नहीं रहे कहां चला गया, तो पता लग जाएगा कहीं ना कहीं गया। तो शहनाज, जब तक के लिए पैसे आपके पास हैं आप एंजॉय करिए, पर आप वापस देने के लिए तैयार हैं।
1: Yes, let's move on to the next story. India's manufacturing sector continued to expand in July, although the pace of growth slowed to its weakest level in nearly 5 years. According to the HSBC India Manufacturing Purchasing Managers Index PMI released today, the seasonally adjusted manufacturing PMI eased to 53.5 in July from 54.2 in June, its lowest reading since August 2021. Despite the slowdown, the index remained above the crucial 50-point threshold that separates expansion from contraction, indicating that manufacturing activity continued to improve. The report said manufacturers continued to benefit from resilient demand, although growth in new orders, input purchases, and employment moderated during the month. While domestic demand softened, export orders gained momentum, with firms reporting stronger sales to markets including Canada, Egypt, Indonesia, Kenya, Nepal, South Africa, Thailand, and the UAE. Sharanji, quick comment on... I will come to you for a comment on this PMI reading that has come in today. Yeah. But before that, let's take the next call coming in from Noida. Amit is online with us. Amit, welcome to the program. Please ask your question.
5: Yeah. Thank you, Market Mantra team. And my question is to Mr. Sharad Kohli ji.
0: Yeah.
5: Good evening, sir.
0: Good evening.
5: Sir, I am a regular investor in mutual fund. When I say regular, I have done the investment through an investment advisor.
0: Yeah.
5: However, after, you know, exploring the market, I am now planning to move to direct investment.
0: Okay. So,

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
1: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
0: राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल सोमवार को भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं हो सका। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग न लेने का आरोप लगाया। उधर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के संबंध में सदन में सरकार से बयान की मांग की। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीत ली है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक मतों से हराया। उधर जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की बाकीपुर विधानसभा सीट जीत ली है। ये सीट भाजपा का गढ़ रही है और 1995 से पार्टी कभी भी इस सीट से नहीं हारी थी। श्री किशोर ने भाजपा के नीरज कुमार को 19,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा गुप्ता तीसरे स्थान पर रहीं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक मतों से हराया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि पार्टी 3 विधानसभा उपचुनावों में मिले जनादेश को स्वीकार करती है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता का भाजपा पर विश्वास जताने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने इस जीत के लिए पार्टी के सभी समर्पित कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को बधाई दी। नवीन ने कहा कि बांकीपुर और दतिया में भाजपा को अपेक्षित जनादेश नहीं मिला। उन्होंने कहा कि पार्टी इन दोनों क्षेत्रों के चुनाव परिणामों का गहन विश्लेषण करेगी। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने नई दिल्ली में मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने के संबंध में मुलाकात की। भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने के लिए मेटा इंडिया की आलोचना की। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए श्री दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग से इसके लिए माफी मांगने की मांग की है और यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनसे 1979 के अंतर्गत दी गई सेफ हार्बर प्रोटेक्शन वापस लिया जाना चाहिए। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी अगले 3 से 4 दिन तक बारिश की संभावना है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को अंक तालिका में 4th स्थान पर लाकर देश के खिलाड़ियों ने गौरवशाली इतिहास रचा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि ये अभूतपूर्व सफलता और भी बड़ी हो गई है क्योंकि भारत अहमदाबाद में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी करने जा रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani.

0: நிறைய பற்றத்த நினைவில் என்றவை தொடர்வது இந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள்.
1: ஆகாஷவாணி சமாச்சார் கே சாத் மே சர் ஃபிரோசி. लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
2: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
1: राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि इस क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल सोमवार को भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं हो सका। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग न लेने का आरोप लगाया। उधर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के संबंध में सदन में सरकार से बयान की मांग की। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीत ली है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक मतों से हराया। उधर जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट जीत ली है। ये सीट भाजपा का गढ़ रही है और 1995 से पार्टी कभी भी इस सीट से नहीं हारी थी। श्री किशोर ने भाजपा के नीरज कुमार को 19,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा गुप्ता तीसरे स्थान पर रही। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की

दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक मतों से हराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और नागरिक विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री राजनाथ ने कल नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय नागरिक सेवा दिवस समारोह को संबोधित किया। श्री सिंह ने कहा कि इससे सुरक्षा और तकनीकी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान होगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि वर्दीधारी और नागरिक सेवाएं दोनों ही राष्ट्र सर्वोपरि के प्रति समान रूप से प्रतिबद्ध हैं। जब लक्ष्य एक ही होता है तो व्यवस्था का प्रत्येक तत्व राष्ट्रीय शक्ति में परिवर्तित हो जाता है। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। राज्य के 7 जिलों में 1,28,000 से अधिक लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सबसे अधिक प्रभावित शिवसागर जिले में कल बाढ़ से 2 लोगों की मौत हुई। बाढ़ की चपेट में आए 7 जिले चराईदेव, शिवसागर, धेमाजी, गोलाघाट, विश्वनाथ, जोरहाट और लखीमपुर हैं, जहाँ 380 गाँव और 14,000 हेक्टेयर फसल क्षेत्र जलमग्न है। प्रशासन 38 राहत शिविरों का संचालन कर रहा है, जहां 11,066 विस्थापितों को आश्रय दिया गया है। इसके अलावा 17 राहत वितरण केंद्र भी बनाए गए हैं। गोलाघाट जिले के नुमालीगढ़ में धनसिरी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इस बीच मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी अगले 3 से 4 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। डाक विभाग ने प्रसिद्ध कलाकार सतीश गुजराल के शताब्दी वर्ष पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। इस टिकट का विमोचन कल नई दिल्ली में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: அடுத்ததாக தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சு.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே சர்ஃபிரோசி. लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
2: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
1: राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि इस क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीत ली है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक मतों से हरा दिया। उधर जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट जीत ली है। ये सीट भाजपा का गढ़ रही है और 1995 से पार्टी कभी भी इस सीट से नहीं हारी थी। श्री किशोर ने भाजपा के नीरज कुमार को 19,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा गुप्ता तीसरे स्थान पर रही। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक मतों से हराया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल दिल्ली में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव से बातचीत की। दोनों मंत्रियों ने ऊर्जा, अवसंरचना, व्यापार, रक्षा, शिक्षा और संस्कृति पर विशेष ध्यान देते हुए रणनीतिक साझेदारी की विस्तृत समीक्षा की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि उन्होंने प्रमुख क्षेत्रीय चुनौतियों पर भी चर्चा की और भारत उज्बेकिस्तान बहुपक्षीय सहयोग के विस्तार पर विचार विमर्श किया। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। उन्होंने कहा, भारत उज्बेकिस्तान सरकार और वहां की जनता द्वारा आतंकवाद के हर रूप और अभिव्यक्ति से निपटने के लिए उठाए गए कड़े रुख की सराहना करता है। वैश्विक अनिश्चितताओं और मुद्रास्फीति के जोखिमों के बीच भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक कल शुरू हुई। बुधवार सुबह आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा द्वारा नीति वक्तव्य जारी किए जाने की संभावना है। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूती दिखाई है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताओं और मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं के चलते आरबीआई द्वारा सतर्क रुख अपनाते हुए ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने की संभावना है। रिजर्व बैंक ने जून में अपनी प्रमुख नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर अपरिवर्तित रखा था। भारतीय रिजर्व बैंक ने मोनिशा चक्रवर्ती को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। वे विदेशी मुद्रा विनिमय और वित्तीय बाजार

नियमन से जुड़े विभागों का दायित्व संभालेंगे। इससे पहले चक्रवर्ती पर्यवेक्षण विभाग में मुख्य महाप्रबंधक का प्रभार संभाल रही थी। केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में संशोधन किया है। सरकार ने अगले पखवाड़े के लिए नई दरें अधिसूचित करते हुए कहा कि डीजल पर निर्यात शुल्क अब 25 रुपये और 50 पैसे प्रति लीटर होगा, जबकि ATF पर निर्यात शुल्क बढ़ाकर 22 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। राज्य के 7 जिलों में 1,28,000 से अधिक लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सबसे अधिक प्रभावित शिवसागर जिले में कल बाढ़ से 2 लोगों की मौत हुई। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो रही है। ये 9 अगस्त तक चलेगी। तन्वी शर्मा और किदाम्बी श्रीकांत प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: இதுவரை இனிய ராகம் கேட்டோம். தொடர்வது டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே சர்ஃபிரோசி. लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है. विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था. उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा.
2: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है. वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है.
1: राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है. सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीत ली है. उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक मतों से हरा दिया. उधर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट जीत ली है. ये सीट भाजपा का गढ़ रही है और 1995 से पार्टी कभी भी इस सीट से नहीं हारी थी. कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है. उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक मतों से हराया. वैश्विक अनिश्चितताओं और मुद्रास्फीति के जोखिमों के बीच भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक कल शुरू हुई. बुधवार सुबह आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा द्वारा नीति वक्तव्य जारी किए जाने की संभावना है. हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूती दिखाई है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताओं और मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं के चलते आरबीआई द्वारा सतर्क रुख अपनाते हुए ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने की संभावना है. रिजर्व बैंक ने जून में अपनी प्रमुख नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर अपरिवर्तित रखा था. भारतीय रिजर्व बैंक ने मोनिशा चक्रवर्ती को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है. वो विदेशी मुद्रा विनिमय और वित्त बाजार नियमन से जुड़े विभागों का दायित्व संभालेंगी. इससे पहले चक्रवर्ती पर्यवेक्षण विभाग में मुख्य महाप्रबंधक का प्रभार संभाल रही थी. केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में संशोधन किया है. सरकार ने अगले पखवाड़े के लिए नई दरें अधिसूचित करते हुए कहा कि डीजल पर निर्यात शुल्क अब 25.50 रुपये प्रति लीटर होगा, जबकि एटीएफ पर निर्यात शुल्क बढ़ाकर 22 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है. पेट्रोल पर निर्यात शुल्क बढ़ाकर 3.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है. वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित शोधित दरें आज से प्रभावी हो गई हैं. असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है. राज्य के 7 जिलों में 1,28,000 से अधिक लोग बाढ़ से पीड़ित हैं. असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सबसे अधिक प्रभावित शिवसागर जिले में कल बाढ़ से 2 लोगों की मौत हुई. अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ नई वार्ता ईरान के लिए समझौता करने और उस पर अमरीकी हमलों को रोकने का अंतिम अवसर है. ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने और ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम के बारे में अमरीका की चिंताओं को दूर करने का मार्ग प्रशस्त करने वाली वार्ता अगले 1-2 दिनों में शुरू हो जाएगी. अमरीकी राष्ट्रपति ने कहा कि पहला चरण हॉर्मुज जल डमरू मध्य को खोलना है, जबकि दूसरा चरण परमाणु निरस्त्रीकरण का होगा और इसमें थोड़ा समय लगेगा. ट्रंप ने कहा कि उन्होंने खाड़ी सहयोगी कतर, सऊदी अरब और

0: அடுத்ததாக நாம் கேட்கவிருப்பது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ஜயா பாரதி. लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
2: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है।

0: परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्याय कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
1: राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजरपुर विधानसभा सीट फिर से जीत ली है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक मतों से हराया। उधर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट जीत ली है। यह सीट भाजपा का गढ़ रही है और 1995 से पार्टी कभी भी इस सीट से नहीं हारी थी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक मतों से हराया। वैश्विक अनिश्चितताओं और मुद्रा स्फीति के जोखिमों के बीच भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक कल शुरू हुई। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा कल नीति वक्तव्य जारी कर सकते हैं। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूती दिखाई है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताओं और मुद्रा स्फीति संबंधी चिंताओं के चलते आरबीआई द्वारा सतर्क रुख अपनाते हुए ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने की संभावना है। रिजर्व बैंक ने जून में अपनी प्रमुख नीतिगत रेपो को 5.25% पर अपरिवर्तित रखा था। रिजर्व बैंक ने मोनिशा चक्रवर्ती को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। वह विदेशी मुद्रा विनिमय में और वित्तीय बाजार नियमन से जुड़े विभागों का दायित्व संभालेंगी। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। राज्य की 7 जिलों में 1,28,000 से अधिक लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सबसे अधिक प्रभावित शिवसागर जिले में कल बाढ़ से 2 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ नई वार्ता ईरान के लिए समझौता करने और उस पर अमरीकी हमलों को रोकने का अंतिम अवसर है। श्री ट्रंप ने उम्मीद व्यक्त की कि होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम के बारे में अमरीका की चिंताओं को दूर करने का मार्ग प्रशस्त करने वाली वार्ता अगले 1-2 दिनों में शुरू हो जाएगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि पहला चरण होर्मुज जलडमरू मध्य को खोलना है, जबकि दूसरा चरण परमाणु निरस्तरीकरण होगा और इसमें थोड़ा समय लगेगा। गजा में युद्ध के बाद के बदलाव की देखरेख करने वाले बोर्ड ऑफ पीस के एक अधिकारी ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। बयान के अनुसार इस मुलाकात का एक मुख्य उद्देश्य हमास के साथ हुए नए निरस्तरीकरण समझौते पर चर्चा करना था। शांति बोर्ड ने एक बयान में कहा कि गजा के उच्च प्रतिनिधि निकोले म्लादेन्यू ने प्रधानमंत्री और उनकी टीम के साथ रचनात्मक और विस्तृत बातचीत की। बयान में कहा गया है कि लक्ष्य स्पष्ट है और इस पर कोई संदेह नहीं है कि गजा पट्टी में हथियारों का पूर्ण निरस्तरीकरण और बंदूक के शासन का अंत होगा। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो रही है। यह 9 अगस्त तक चलेगी। तन्वी शर्मा और किदाम्बी श्रीकांत प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. The Lok Sabha passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill. The bill aims to increase the number of judges of the Apex Court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. In May this year, President Draupadi Murmu had promulgated an ordinance in this regard. Union Minister of Law and Justice Arjun Ram Meghwal moved the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill. He said the bill is an